मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त वर्ष 2026 प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं

0: देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। मंदिर की घंटियों से लेकर मस्जिद की आजान तक, गुरुद्वारे के शब्द से लेकर गिरजाघर की प्रार्थना तक, हर जगह उठते हैं हाथ, हर जगह झुक जाते हैं सिर और होठों पर सबके बस यही प्रार्थना होती है, मेरे भगवान, मेरे रब, मेरे वाहे गुरु, मेरे ईश्वर, मेरे आज को सुख शांति दे और मेरे आने वाले जीवन को प्रकाशमय करें। आइए आज के इस भक्तिमय सफर की शुरुआत करते हैं शिव की वंदना से।

शिव का प्रताप केवल कैलाश की ऊंचाइयों में नहीं है, बल्कि हर उस हृदय में है जहां सच्ची आस्था बसती है। महादेव का नाम ले लें तो हर कष्ट दूर हो जाता है, हर मुश्किल आसान हो जाती है और मन को हर परिस्थिति में नई शक्ति का संचार होता है।

नाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम सब उसी का सिमरन करते हैं। कोई उसे राम कहकर पुकारता है तो कोई रहीम, कोई वाहेगुरु के नाम से उसकी आस्था करता है। हमारी प्रार्थना के रास्ते भले ही भिन्न भिन्न हो, मगर सच्ची भक्ति दिलों को बस एक ही रोशनी से जोड़ा करती है।

सुबह का ये सुकून का वक्त, इंसान जब इस वक्त इबादत से जुड़ता है तो दिल खुद ब खुद उसकी रहमत और मोहब्बत की तरफ झुक जाता है। और जब कोई सच्चे दिल से उस मालिक की इबादत करता है तो वो उस

हर धड़कन में भक्ति हो, हर सांस में विश्वास हो और मन में महादेव का नाम हो, तो जीवन में उजास हो ही जाता है। जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। इसी पावन भावना के साथ अपनी भक्ति यात्रा को बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं ये शिवार्थ।

इस प्रार्थना के साथ कि आपका आज का ये दिन सुखमय, शांतिमय और ईश्वर के विश्वास से भरा हो, वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे भक्तिमय कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।

प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। स्वर है अनुराधा पौडवाल का और संगीत निर्देशन किया है सतीश भाटिया ने।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और अनुराधा पौडवाल के स्वर में आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। प्रातः के 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिएगा आज का चिंतन।
1: जगत का मिथ्या तत्व यही है कि वो प्रतिक्षण परिणामी है, सत होते हुए भी विनाशी और क्षण भंगुर है। ये शरीर पत्ता है, ये पत्ता किस समय मुरझा जाएगा कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार शरीर किस समय क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वृक्ष हमें छाया और फल देता है, साथ ही उससे लकड़ियां निकालकर उपयोग में लाई जाती हैं। माया से भी जगत का नाना वस्तु समुदाय निर्मित होता है और यही जीवों को भोग रूपी फलों को परमेश्वर के नियंत्रण में रहकर उत्पन्न करती है। विषय वासना के भांति भांति के फल इसी में लगते हैं। वृक्ष बीज रूप में अपनी सत्ता को स्थित रखता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसी के भीतर आत्मा रूपी महाधन निहित है। वो इसे लेकर गतिमान है, इसके साथ काम क्रोध मद लोभ मोह ये 5 चोर उस महाधन को चुराने के लिए साथ चल रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां इस शरीर रूपी कारवां की स्थिति को विकृत करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मन को आकर्षणों से हटाने से, प्रभु भक्ति में शरीर की चिंता ना करने से भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, इसके भीतर किसी प्रकार की सांसारिकता का उदय होने पर भी उस अंशी में किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं हो सकती। जिस तरह जल में दूसरा पानी मिलने पर विकार नहीं आता, आत्मा सर्वव्यापी है, सब में है, जगत और ब्रह्म का संबंध अपरिहार्य है। जगत माया के ब्रह्मजाल में फंस रहा है, क्योंकि सद्विवेक के अभाव में जड़ जगत का ऐसा प्रवर्तन सहज है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसके लिए वो संसार को धोखा देने में भी कोई कसर नहीं रखता। इतने सब कुछ के बाद भी प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़ जाते हैं। इस माया विषयक मिथ्या दृष्टिकोण के परिहार हेतु ज्ञान की उदात्त विशाल और प्रखर धारा का प्रभावित होना आवश्यक है। सत्य के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर लेने पर चेतना पूर्ण आनंद देने वाली हो जाती है। अखंड आनंद के इस आकर्षण को मुक्त जीव की चेतना फिर कभी नहीं छोड़ती। ज्ञान का नाम विद्या और कर्म का नाम अविद्या है। ज्ञान से भिन्न कर्म है, इन दोनों का उपयोग साथ साथ करना है। इन्हें हम विज्ञान और कला भी कह सकते हैं। केवल ज्ञान और कर्म का कोई फल नहीं है, फल तो ज्ञान पूर्वक कर्म है। कर्तव्य परायण होकर मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। अमरता पाने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना होगा, समष्टि में अपने को मिटाना होगा। अमरता तो अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त हो सकती है और वही वास्तव में विद्या है।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री नानक चंद का काव्य पाठ।

मिले, जिसका है सब कुछ वो बेगाना बन के आया है, जिसका है

0: में दूसरी रचना प्रस्तुत है। सहस्त्र आंधियां आए फिर भी अखंड दीप सा जला रहूंगा, सहस्त्र आंधियां आए फिर भी अखंड दीप सा जला रहूंगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा। जन्म जन्मांतर हुए मुझको तेरा सृष्टि चक्र निभाने में, जन्म जन्मांतर हुए मुझको तेरा सृष्टि चक्र निभाने में, लाखों बार समिधा बना मैं तेरी निर्मल ज्योत समाने में, मेरे भीतर फिर भी प्यास रही, मेरे भीतर फिर भी प्यास रही, तेरी आस यूं ही तकता रहूंगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा। मेरे बाद के कितने संगी साथी चलते चलते तुझ तक जा पहुँचे, मेरे बाद के कितने संगी साथी चलते चलते तुझ तक जा पहुँचे, तेरे पथ से गिरते गिरते हम आज यहाँ तक आ पहुँचे, तेरे पथ से गिरते गिरते हम आज यहाँ तक आ पहुँचे। तू हाथ बढ़ा कर खींच मुझे अब, तू हाथ बढ़ा कर खींच मुझे अब, कब तक यूं ही खड़ा रहूँगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा। सहस्त्र आंधियां आए फिर भी अखंड दीप सा जला रहूंगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा। कुछ ऐसा योग बना मेरे साहिब हमको भी उजियारा मिल जाए, कुछ ऐसा योग बना मेरे साहिब हमको भी उजियारा मिल जाए, माना कश्ती में छेद बहुत हैं फिर भी किनारा मिल जाए, माना कश्ती में छेद बहुत हैं फिर भी किनारा मिल जाए, सबको शुद्ध बुद्ध करने वाले, सबको शुद्ध बुद्ध करने वाले, क्या मैं तृष्णा में सना रहूंगा, सबको शुद्ध बुद्ध करने वाले, क्या मैं तृष्णा में सना रहूंगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा। जीवन अब ज्यादा शेष नहीं है, पुण्य कर्म कुछ अवशेष नहीं है, नीरस आंखें तुझको तकती पर आंखों में प्रकाश नहीं है, नीरस आंखें तुझको तकती पर आंखों में प्रकाश नहीं है, याचक बनके जीवन गुजरा, याचक बनके जीवन गुजरा, कब तक मंगता बना रहूंगा, मैं अग्निपथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा। सहस्त्र आंधियां आए फिर भी अखंड दीप सा जला रहूंगा, मैं ज्योति पथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा, मैं ज्योति पथ का इकरा ही तेरी याद में यूं ही तपा रहूंगा।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यधारा, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आज की चर्चा के विषय रहेंगे जीवन में अनुभव का महत्व और अनियमित वर्षा और भूस्खलन का जिम्मेदार कौन। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी कलकत्ता स्थापना दिवस पर। प्रातः के 6:55 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज क्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम एफआईएच हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय प्रातः के 7:05। लीजिए सुनिएगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं काली मिर्च के गुणों की जानकारी।
3: मनुष्य के लिए ये प्रकृति का अनुपम उपहार।

0: पर है। काली मिर्च का उपयोग कफ, खांसी, उदर विकार, पाचन शक्ति, चर्म रोग, फोड़ी फुंसी आदि की चिकित्सा में किया जाता है। काली मिर्च चटपटी, तीक्ष्ण, जठराग्नि को तेज करने वाली, कफ तथा वातनाशक, गर्म, पित्तकारक तथा कृमि को मारने वाली है। घरेलू चिकित्सा की एक परम औषधि भी है। जुकाम होने पर काली मिर्च मिलाकर गर्म दूध का सेवन करें। यदि जुकाम बार बार होता हो, अक्सर छींकें आती हों, तो काली मिर्च की संख्या एक से शुरू करके रोज एक एक बढ़ाते हुए 15 तक ले जाएं। फिर प्रतिदिन एक एक घटाते हुए 15 से फिर एक पर आएं। इस तरह जुकाम एक माह में समाप्त हो जाएगा। जुकाम के साथ हल्का ज्वर भी हो तो 5-6 काली मिर्च, 7-8 तुलसी के पत्ते, लौंग, 1 इंच अदरक, 1 इलायची, इन सभी को पानी में पका लें तथा दूध डालकर चाय की तरह गर्मा गर्म दिन में 3 बार पिए। इससे पसीना आकर शरीर हल्का होता है और ज्वर उतर जाएगा। खांसी होने पर 1/2 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण और 1/2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटें। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। पाचन शक्ति कमजोर हो जाने पर आहार अच्छी तरह से नहीं पचता है और उसमें सड़न होने लगती है। पाचन शक्ति की वृद्धि के लिए जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, पिपरी, काली मिर्च सब समान मात्रा में लेकर एक चूर्ण सा बना लें। भोजन के बाद 1 चम्मच चूर्ण पानी से लें, भोजन शीघ्र पचने लगेगा। गैस की शिकायत होने पर 1 प्याले पानी में 1/2 नींबू का रस, 1/2 चम्मच काली मिर्च का चूर्ण तथा 1/2 चम्मच काला नमक मिलाकर नियमित कुछ दिनों तक सेवन करने से गैस की शिकायत भी दूर हो जाएगी। काली मिर्च को घी और मिश्री के साथ मिलाकर चाटने से बंद गला खुल जाता है और आवाज सुरीली होती है। 8-10 काली मिर्च पानी में उबालकर इस पानी से गरारे करें। इससे गले का संक्रमण शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाएगा। त्वचा रोग में काली मिर्च को घी में बारीक पीसकर लेप करें। दाद, खाज, फोड़े फुंसी आदि चर्म रोग दूर हो जाएंगे। छोटी फुंसियां दिन में 2 बार लेप करने से तुरंत बैठ जाती हैं। स्मरण शक्ति में मस्तिष्क में तरावट और ताजगी लाने तथा स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग ब्राह्मी की पत्तियों के साथ मिलाकर करें। थोड़े से घी में 3-4 ग्राम ब्राह्मी की पत्ती उबाल लें। इसमें पिसी काली मिर्च तथा शक्कर मिलाकर चाटें। 1/2 चम्मच घी, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 चम्मच मिश्री, तीनों को मिलाकर सुबह चाटें। इससे आंखों की कमजोरी दूर होगी तथा नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। बदहजमी की शिकायत होने पर 1 नींबू काटकर काली मिर्च और काला नमक लगाएं, उसे गर्म करके चूसें। बुखार की अवस्था में 3 ग्राम से 6 ग्राम काली मिर्च पीसकर 1/2 लीटर पानी में पकाइए। उसका अष्टमाश काढ़ा बनाकर उसमें 20 ग्राम शक्कर मिलाकर पिए। इससे बुखार तुरंत उतर जाएगा। मसूड़ों की सूजन होने पर काली मिर्च को उबालकर उसके पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन कम हो जाती है तथा मसूड़े भी स्वस्थ तथा मजबूत होंगे। पाचन क्रिया ठीक करने के लिए काली मिर्च और सेंधा नमक पीसकर भुनी हुई अदरक के बारीक टुकड़ों के साथ मिलाकर खाएं, बहुत आराम मिलेगा। हैजा होने पर काली मिर्च 10 ग्राम, 10 ग्राम हींग और कपूर 2 ग्राम लीजिए। पहले कपूर और हींग को मिलाइए, फिर उसमें काली मिर्च मिलाकर उसकी 16 गोलियां बना लीजिए। आधे आधे घंटे पर एक एक गोली देने से उल्टी और दस्त बंद हो जाते हैं तथा 4-6 घंटे में हैजा मिट जाता है। अदरक और नींबू के रस में 10 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से पेट दर्द दूर होता है। इतने सारे गुणों से भरपूर है काली मिर्च, इसका सेवन कीजिए और लाभ उठाइए।
1: काली मिर्च के गुणों की जानकारी ले रहे थे, कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। किसान भाई, अब सुनेंगे खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में आप जानकारी लेंगे गाभिन पशुओं के गर्भाशय बाहर आने की समस्या और समाधान के बारे में।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं गाभिन पशुओं का गर्भाशय बाहर आने की समस्या व समाधान के संबंध में। किसान भाइयों हम सभी खेती

0: करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन करते हैं और अच्छे दुधारू पशु हमारे किसान भाई रखते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को खेती के साथ साथ पशुपालन से भी दूध उत्पादन से अच्छी आमदनी हो सके। तो भाइयों, कभी कभी हमारे देखने में आता है कि हमारा जो पशु है वो गाभिन तो हो जाता है, लेकिन हमारा पशु का परेशान रहता है उस समय के दौरान। किसान भाइयों, जो गाभिन पशु हमारे होते हैं उनका गर्भाशय बाहर आ जाता है कभी कभी, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे पशुओं में हो जाती है। और साथ ही भाई, ये समस्या हमारे पशुओं में ब्याने के बाद भी बनी रहती है। किसान भाइयों, इस समस्या का मुख्य कारण है गर्भाशय का कमजोर होना, या हमारे पशु का अधिक जोर लगाना, या कैल्शियम की कमी, हमारा पशु अत्यधिक मोटापा या अत्यधिक भारी हो वजन में, और भाई प्रसव के दौरान गर्भाशय ढीला पड़ना, ये भी एक समस्या होती है। किसान भाइयों, बाहर निकला हुआ गर्भाशय लाल सूजा हुआ और रक्त से भरा दिखाई देता है। यदि भैया गाभिन पशु है हमारा, तो भाई जब भी हमारे पशु का गर्भाशय बाहर दिखाई दे, तो आपको भैया उसको जमीन से रगड़ने से बचाना है, साथ ही साथ उसको संक्रमण से बचाना है, ताकि भाई हमारे पशु को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। किसान भाइयों, गर्भाशय बाहर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए, स्वयं खींचकर गर्भाशय को अंदर डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पशु को शांत और स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ जहां हमारा पशु बंधता है वहां पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि भैया हमारे पशु को किसी तरह का संक्रमण ना हो। किसान भाइयों, बाहर निकले गर्भाशय को धूल और चोट से बचाना चाहिए, उसे साफ गीले और स्वच्छ कपड़े से ढककर रखना उपयोगी है। किसान भाइयों, पशु चिकित्सक आवश्यकता से अनुसार गर्भाशय की सफाई, सूजन कम करने, उसे सही स्थिति में अंदर स्थापित करने और आवश्यक दवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पशु को आराम और पर्याप्त पानी और संतुलित आहार देना चाहिए। किसान भाइयों, रोकथाम के लिए यदि हम बात करें रोकथाम की, कि किस तरह से हमारे किसान भाई इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और इस समस्या की तो बात हो गई कि भाई क्या समस्या होती है। भाई रोकथाम में गर्भावस्था के दौरान पशु को पौष्टिक और संतुलित आहार देना चाहिए, खनिज मिश्रण तथा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही कैल्शियम अपने पशु को पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, प्रसव के समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और कठिन प्रसव होने पर प्रशिक्षित व्यक्ति या अपने नजदीकी अच्छे पशु चिकित्सक को आपको बुलाना चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए। किसान भाइयों, प्रसव के बाद पशु की नियमित निगरानी भी हमें करती रहनी चाहिए। भाई देखो, हम अपने पशु को, यदि हमारे पशु का गर्भाशय बाहर आता है, तो भाई हम अपने पशु को, जब हमारा पशु गाभिन हो, तो उसकी 3 साढ़े 3 महीने के बाद जब पशु का समय बीत जाए, तो भाई उसके बाद ही हमें जो है अपने पशु की निगरानी बनाए रखनी चाहिए। अगर गांव की बात हम करें, तो भैया अपने पशु के जो पिछले पांव होते हैं उसके नीचे थोड़ा सा ऊंचा कर दें, पीछे से ऊंचा कर दें, ताकि जब हमारा पशु बैठे जमीन पर, तो भाई उसका जो भार है वो पीछे की तरफ ना आए, आगे की तरफ ही हमारे पशु का रहे। ये भी एक छोटा सा हमारे किसान भाई समाधान अपने पशुओं का पशुशाला में कर सकते हैं। साथ ही भाई, किसी भी अन्य किसी दवाई को देने के लिए घर का डॉक्टर हमें कभी नहीं बनना चाहिए, हमें अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को ही अपने पशु को दिखाना चाहिए, उसी से सलाह लेनी चाहिए, ताकि हम समय से अपने पशु से अच्छा दूध उत्पादन ले सकें और हमारा पशु जो है सही प्रसव कर सके। किसान भाइयों, गाय भैंस में गर्भाशय का बाहर आना एक गंभीर समस्या है, लेकिन भाई यदि समय से उपचार किया जाए, तो भैया इस बीमारी से हमारे किसान भाई अपने पशु को बचा सकते हैं, और भाई सही पोषण और स्वच्छता का उचित देखभाल करके और नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह पर गर्भाशय के बाहर आने के गंभीर नुकसानों से अपने पशु को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह की 7:15 हो रहे हैं। आइए डाल लेते हैं एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों पर।

पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर। आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम जिले की हलचल सुनिएगा सुबह 9:30 पर। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज सुनिएगा सुनील मुखर्जी के स्वर में कुछ भजन। विविधा कार्यक्रम में वार्ताकार अंजू बंसल की समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका पर पूर्व प्रसारित वार्ता सुनवाई जाएगी आज शाम 6:45 पर।

कृषि जगत कार्यक्रम में बुलंदशहर के युवा किसान सुनील कुमार सिंह से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता सुनिएगा। भेंटवार्ता का विषय रहेगा गोबर की सॉलिड व लिक्विड खाद का महत्व, साथ ही सुनिएगा पशुशाला प्रबंधन और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना पर चर्चा। कार्यक्रम का समय वही संध्या 6:05 पर। शाम 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में आपके लिए आज की सौगातें होंगी। बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार और बूस्टर्स। सुबह 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा। नयन तारा शर्मा के स्वर में कुछ रुहेलखंडी सावन के लोकगीतों का। वहीं दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वीरेंद्र सिंह बिष्ट के स्वर में कुछ चौनसारी लोकगीत। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सवेरे के 7:18 होने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री

0: बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और इस क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तराशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने इस क्षेत्र में युवाओं के काम की सराहना भी की। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 3,54,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अब उन्हें हर साल 5,00,000 रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम एकत्र हुए हैं।
0: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के झंडे वाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री योगी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
3: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों के छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
0: जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने कल काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, यामानाशी प्रांत और जापान के बीच संबंधों को लंबे समय तक और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के विकास को बढ़ावा देना है। इससे पहले जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, साथ ही बीएलओ से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादा

0: बाद अमरोहा के ब्रज घाट तक करीब 60 किलोमीटर सड़क को आज तक के लिए जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि वहां हाईवे पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
1: सावन के आखिरी सोमवार के परिपेक्ष में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डायवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन है वो अभी के लिए चल रहे हैं।
0: वाराणसी में वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
2: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबीउल अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबीउल अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है, ये मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में इस बात का ख्याल रखें कि जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं रास्तों से जुलूस निकालें और जुलूस में कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हों। इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट मुकर्रर किया गया है उसी पर सिर्फ जुलूस निकाला जाए।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिषद के मुताबिक वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये पिछले वर्ष से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 सहित मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान भी जताया है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। संत कबीरनगर जिले में घाघरा और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर, बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्श

0: इच्छों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी, मनोरंजन और रोचकता का संगम कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: एक नए दिन ने फिर से हमारे लिए दरवाजा खोल दिया है। उम्मीदों ने आज फिर जिंदगी में उजाला घोल दिया है। बीती रात की खामोशी पीछे छोड़कर सुबह की रोशनी ने फिर हमें आवाज दी है और इस नई सुबह का हाथ थाम कर आ गए हैं हम कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियां और मनोरंजन की सौगात लेकर आपके अपने कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं फरीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद खास विषय पर, यानी जीवन में अनुभव के महत्व पर। श्रोताओ, जिंदगी भी अजीब है ना, हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी मुस्कुराकर तो कभी थोड़ा थोड़ा रुलाकर। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ हमें खुद से मिलवाते हैं, और इन्हीं रास्तों पर मिले हर सबक का, हर सीख का नाम है अनुभव, जो हमें किताबों से नहीं जिंदगी के हर पन्ने से मिलता है, हर दिन से मिलता है। जिंदगी का हर पन्ना सुख दुख, छोटी बड़ी ठोकरें, हार जीत के साथ कोई ना कोई सीख हमारे लिए छोड़ जाता है, और यही सीख अनुभव की वो पाठशाला होती है जो हमें हमारे अंदर छिपी हिम्मत से मिलवाती है, परिचय करवाती है हमारे सब्र से, हौसले से। और श्रोताओं, अनुभव की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमें केवल ये नहीं सिखाता कि हमें क्या करना है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें चलना है और क्या काम हमें दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करना है। तो श्रोताओं, आज की इस सुबह में बीते लम्हों को एक बार फिर से याद कीजिएगा। जो अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रगुजार बने रहिएगा, और जो बुरा हुआ उससे मिली सीख को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में साथ रखिए, क्योंकि बीते समय का अनुभव ही आपके आने वाले समय को सवार सकता है। तो चलिए कार्यक्रम को और संवारते हैं और देते हैं आपको जानकारी कलकत्ता स्थापना दिवस के विषय में। श्रोता, हम सबका किसी न किसी शहर से ताल्लुक जरूर होता है, और आप जानते हैं कि हर शहर सिर्फ और सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि अपने इतिहास से पहचाना जाता है, कुछ अपनी संस्कृति से तो कुछ अपनी खास रवायत से, जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। ऐसा ही एक मशहूर शहर है कलकत्ता, जिसे आज हम सब कोलकाता के नाम से जानते हैं। आज इसी शहर का स्थापना दिवस है। 24 अगस्त 1690 में जॉब चार्नो के कलकत्ता आने की स्मृति को इस शहर की स्थापना से देखकर जोड़ा जाता है। हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर काफी समय तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है। देश की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहे कलकत्ता को रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य, सत्यजीत रे के सिनेमा, दुर्गा पूजा की भव्यता, ट्रॉम कॉलेज स्ट्रीट और बंगाल की विरासत, इन सब ने मिलकर इस शहर को इस सांस्कृतिक और अद्भुत पहचान दी। तो आइए कलकत्ता स्थापना दिवस पर इस शहर की पहचान को इस गीत के आईने में जरा करीब से महसूस करते हैं।
1: भैया

श्रोताओं, गीत के बाद अब एक खास विषय पर चर्चा करते हैं आपसे। ये तो आप जानते हैं कि बारिश तो पहले भी आती थी, पहाड़ों पर बादल पहले भी छाते थे, मगर सवाल ये है कि नदियां आज इतना क्यों उफनती हैं, क्यों पहाड़ इतना खिसक जाते हैं। तो इसलिए आज हम एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो है अनियमित वर्षा और भूस्खलन का जिम्मेदार कौन। श्रोताओं, बारिश प्रकृति का वरदान है, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल रहा है। कहीं कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा और पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश और भूस्खलन की समस्या। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलता मौसम ही इसके लिए जिम्मेदार है या हमारी लापरवाहियां ही इसमें शामिल है। शायद जवाब में हम सबके चेहरे पर खामोशी छा जाएगी, क्योंकि ये बात 16 आने सच है कि प्रकृति के बदले मिजाज के काफी हद तक हम ही जिम्मेदार हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों का कटान, सड़कों का निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी रास्तों का बदलाव और प्रकृति से अनियमित छेड़छाड़ खतरों को लगातार बढ़ा रही है। माना कि विकास जरूरी है, सड़कें और इमारतें भी आवश्यक हैं, लेकिन विकास और प्रकृति के बीच संतुलन तो उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो सोचना होगा कि पहाड़ों को सिर्फ पत्थर समझोगे तो खिसकते रहेंगे, पहाड़ों को सिर्फ पत्थर समझोगे तो खिसकते रहेंगे, जंगलों को सिर्फ पेड़ समझोगे तो उजड़ते रहेंगे, नदियों को अगर पानी समझोगे तो सैलाब बन जाएगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो मुश्किलें बढ़कर आएंगी, क्योंकि मौसम का बदलना तो कुदरत का दस्तूर है, मगर उसकी तबाही में

0: हमारा भी कसूर है, अब भी संभल जाएं। अब भी संभल जाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है। प्रकृति का साथ देंगे तो आज ही नहीं, हमारा कल भी संवर सकता है। तो इसके साथ सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
4: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं जानकारी, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो श्रोताओं, आप चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी तिथि विशेष की तरफ।

श्रोताओं, ये तो आप जानते हैं कि हर तारीख अपने दामन में कुछ ना कुछ किस्से समेटे होती है। कहीं इतिहास करवट लेता है तो कहीं नई रोशनियां जम लेकर दुनिया की दिशाएं बदलती हैं, तो कहीं कोई अपने पीछे छोड़ जाता है यादों की अनमोल विरासत। तो आइए जान लेते हैं 24 अगस्त के दामन में क्या क्या है। 24 अगस्त साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह पहुंचा था। उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। कहने को तो ये एक सामान्य सी घटना थी, पर इसी एक घटना ने भारत के मस्तक पर गुलामी की काली रेखा खींची थी। श्रोताओं, यही वो तिथि है जब साल 1966 में सोवियत संघ ने मानव रहित चंद्र मिशन लूना 11 प्रक्षेपित किया था। इस मिशन के द्वारा ही मानव ने आसमान को निहारना नहीं बल्कि उसको समझना भी शुरू कर दिया था। तकनीकी की दुनिया में 24 अगस्त 1995 का दिन एक बेहद खास महत्व रखता है। कंप्यूटर के इस्तेमाल को आम लोगों के लिए और अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 24 अगस्त 1995 को ही विंडोज 95 जारी किया। ये कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसा कदम था जिसने तकनीक को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के और करीब कर दिया था। बचपन से ही हम सभी प्लूटो को सौर मंडल के 9वें ग्रह कहते हुए पड़े हुए, लेकिन आज सौर मंडल में आधिकारिक ग्रहों की संख्या 8 है। 24 अगस्त 2006 को ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को वौने ग्रह की श्रेणी में रखकर ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 कर दी थी। अब बात करते हैं आज ही के दिन जन्म लेने वाली रोशनियों को की। 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ में जन्मे शिवराम हरि राजगुरु देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले एक महान क्रांतिकारक थे। भगत सिंह, सुखदेव के साथ उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है और उनका बलिदान आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक और लोकमान्य तिलक के घनिष्ठ सहयोगी नरसिंह चीतामणि केलकर का जन्म 24 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र में हुआ था। लोकमान्य तिलक के निधन के बाद आपने ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर सारा कार्यभार

वाला था। अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने वाली वीरांगना बीना दास का जन्म आज ही की तिथि को साल 1911 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप अपने अदम्य साहस के कारण भारतीय आंदोलन की साहसी महिला क्रांतिकारियों में से एक मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहने वाली हस्ती के बारे में। श्रोताओं, आज ही की तिथि को साल 2000 में हिंदी सिनेमा के सुरीले फनकार कल्याण जी वीर जी शाह हमारे बीच नहीं रहे थे। आप जानते हैं कि कल्याण जी आनंद जी की मशहूर जोड़ी ने हिंदी फिल्म सिनेमा को कई सुरीले तोहफे दिए हैं, लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने अपनी धुनों की खूबसूरत शुरुआत की थी फिल्म नागिन से। अपनी अनगिनत फिल्मों की धुनों के खूबसूरत मेल, जिसमें उनमें शास्त्रीयता भी दिखाई देती है, लोक संगीत की झलक भी और आधुनिकता का रस भी। उनके साथ हमारे बीच जो गीत रह गए हैं, और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम अपने लिए अपने सुरीले गीतों की एक खूबसूरत सौगात जो हमारे लिए वो छोड़ गए हैं, सुनते हैं उनकी खूबसूरत धुन में रचा वो गीत जो उनकी संगीत विरासत की पहली पेशकश थी।

श्रोताओं, गीत के बाद डाल लेते हैं नजर आज की ताजा खबरों पर।

ही नजर डालते हैं दैनिक जागरण पर। दैनिक जागरण लिखता है कि 3.54 लाख रसोइयों को अब 3,000 रुपए मानदेय, 5 लाख तक का कैशलेस इलाज। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों के लिए खाना पकाने वाले रसोइयों के मानदेय में योगी सरकार ने 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें 2,000 की जगह 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। आगे दैनिक जागरण लिखता है, प्याज भी चला चीनी की चाल। चीनी की तरह प्याज की कीमतों में भी तेजी से उछाल आ रहा है। नासिक मंडी में एक महीने में ही प्याज की कीमत में लगभग 76% की बढ़ोतरी देखी गई है। H1N1 का नया स्वरूप सामने नहीं आया, ICEMR। देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेट यानी नया स्वरूप सामने नहीं आया है। लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अमर उजाला की तरफ नजर डालते हैं, वो लिखता है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने बताया कि भारत 2035 तक अंतरिक्ष में पहला स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। भारत का ये कदम देश को दुनिया की उन चुनिंदा अंतरिक्ष महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन है। आगे अमर उजाला लिखता है कि आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा रूट डायवर्जन। कांवड़ यात्रा के कारण जिले में लागू रूट डायवर्जन आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। डायवर्जन खत्म होने के बाद भारी वाहनों और रोडवेज बसों को निर्धारित मार्गों से आगे जाने की अनुमति मिल जाएगी। अब जान लेते हैं हिंदुस्तान की खास खबरें। हिंदुस्तान ने अपने प्रमुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया है, डोभाल आज बीजिंग जाएंगे, भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज 2 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले NSA की ये भारत चीन के संबंधों को नया मोड़ देने के लिहाज से महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। दुनिया को दोस्ती सहयोग का संदेश दे रहा सुदर्शन। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचा। ये दुनिया को दोस्ती और सहयोग का नया संदेश दे रहा है। हिंदुस्तान की खबर खेल जगत की, गायत्री त्रिसा ने पदक से जवाब दिया। महिला युगल में लंबे समय से विश्व पदक नहीं मिलने पर हो रही आलोचनाओं का जवाब गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जौली की जोड़ी ने कांस्य पदक से दिया। और ये अंतिम खबर अमर उजाला से, पडिक्कल का रिकॉर्ड शतक। गोल्ड टेस्ट की जीत के हीरो देवदत्त पडिक्कल ने रविवार को कोलंबो में दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 117 रन की पारी खेली। पडिक्कल लगातार दूसरे टेस्ट में शतक ठोकने वाले नंबर 3 पोजीशन पर 30 साल में पहले और कुल तीसरे बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। श्रोताओं, कोई भी जीत होती है वो ये साबित करती है कि कोशिश सच्ची हो तो कामयाबी जरूर दस्तक देती है, और जो इंसान अपने हौसलों से मुश्किलों को मात देकर आगे बढ़ता है वही अपनी अलग पहचान बनता है। तो आइए उनकी इस जीत और जज्बे और मुस्कुराती कामयाबी के नाम सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

श्रोताओ, जिंदगी में मुश्किलें आए तो हौसला रखिए और हर सुबह को एक नई उम्मीद के साथ अपनाइए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई बात और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे जानकारी मनोरंजन रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार प्रभात।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय

0: कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल

0: आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में पांचवें स्थान के लिए प्ले ऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: हर हर महादेव।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenidza Open title in Hungary. And now the news in detail.

0: vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson, Ibrahim Rezai, stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions, according to state broadcaster. This comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. The spokesperson further stated that the payment structures have been designed with flexible financial terms. On to sports. In chess, India's 19-year-old Grandmaster Pranesh M emerged as the champion in the prestigious Kanizsa Open 2026 in Hungary, securing the Group A title with a superb performance. In a ninth and final round of the tournament, Pranesh defeated Vadim Pretorsky of Germany with white pieces. Pranesh has a rating of 2,673 and is ranked 44th in the latest FIDE rankings of August 2026. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Anuja. All dailies have widely covered Prime Minister Modi pitching India as a global hub for space startups and talent on National Science Day yesterday. The Tribune writes NSA Doval heads to China for talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi for a dialogue on boundary issue ahead of the Chinese President's India visit. Fiscal deficit on course despite West Asia crisis, headlines Financial Express. Hindustan Times refers to the enumeration exercise noting through forests and across streams, census set to reach Bastar's former red strongholds. As Bengal gets 3,500 crore rupees of defense push, the Asian Age, quoting the defense minister, writes, India capable of becoming global shipbuilding hub. In a significant milestone, DMRC becomes India's first metro organization to achieve ISO certification to the latest international standard for asset management, reports the statesman. The Times of India mentions about a report which projects India to surpass China in affluent consumers by 2036. And finally, the Indian Express cites railways roll out waterless urinals for pilots of India's most powerful locomotives. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kanizsa Open title in Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निज़ाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे के स्टार्टअप पर जोर दिया है कि वो अपनी कोशिशों में इस्तेक़लाल को बरकरार रखें और खलाई शोबे का एक मजबूत इको निज़ाम तश्कील दें जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखता हो। जनाब मोदी ने ये बात हाल ही में 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs

0: ऐसा किया जा सकेगा। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन आज आंध्र प्रदेश के इलूरू जिले में वाकई गांव मुसनूरू का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया मुसनूरू में भारत के पहले गैर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा आला तोसी मकई के हाइब्रिड बीज का इफ्तिताह करेंगे। वो किसानों की हौसला अफजाई करेंगे और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद और दीगर शुरका से खिताब भी करेंगे। बिहार सरकार ने रियासत के इम्तिहान के निजाम में जामे इस्लाहात के लिए 5 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। ये कमेटी 3 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात रियासती हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी पेपर लीक, पेपर की नकल, इम्तिहानी मराकज पर बदउनवानी, जवाबी कापियों में छेड़छाड़ और नतीजे में गैर मजाज मुदाखलत को रोकने के लिए इकदाम की सिफारिश करेगी। ये कमेटी इम्तिहान के निजाम अवकात, सवाल नामे की हिफाजत, जवाबी कापियों की जांच और नतीज के ऐलान के अमल को मजीद शफाफ और मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल करने पर भी तवज्जो मरकूज करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र और जनूबी कर्नाटक में कहीं कहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, मगरबी मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरक के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। शुमाली खलीज बंगाल और मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के मुलहिका साहली इलाकों के ऊपर बनने वाला हवा के दबाव का हल्का शुमाल मगरब की जानी बढ़ रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इसके गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए शिमाली उड़ीसा की जानब बढ़ने का इम्कान है। इसके नतीजे में आज झारग्राम और पुरुलिया जिलों में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। मशरकी मिदनापुर और जनूबी 24 परगना जिलों में गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। माहीगीरों को आज समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले मजाज मुल्कों के जहाजों को अब तेहरान को सर्विस फीस अदा करना होगी। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये फीस बहरी माहौलियाती और लॉजिस्टिक शिकों का इहाता करेगी। सरकारी नशरे के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि अदायगी का तरीक़ेकार नर्म माली शर्तों के साथ डिजाइन किया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने बताया कि आबनाए हुरमुज बंद है और उस वक्त तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के अपने वादों को पूरा नहीं करता। और ईरान और वॉशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर देते हुए कि आबनाए हुरमुज अमरीका का नया इलाका है, इस अहम आबी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल का दावा दोहराया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से इस माह की 27वीं तारीख तक जापान के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो टोक्यो, नागोया और ओकासा जाएंगे। जापान जाने वाला भारत का यह सबसे बड़ा कारोबारी वफद होगा। इस वफद में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, साफ तवानाई, माली खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप्स, स्टील और ऑटोमेटिव शोबों के 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदे शामिल होंगे। आज पवित्र सावन महीने के आखिरी सोमवार के मौके पर झारखंड में बड़े पैमाने पर मजहबी तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंद बड़े शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, जहां वो बोलबम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा नदी का पानी लेकर जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने खसूस इंतजाम किए हैं, जिनमें ड्रोन के जरिए निगरानी, AI कैमरों और एक डिजिटल हेल्पलाइन का इंतजाम शामिल है। दुमका के बाबा बसुकीनाथ मंदिर में भी सावन के मेले के आखिरी सोमवार के दिन वसी सिक्योरिटी और भीड़ पर काबू पाने के इंतजाम किए गए हैं। रांची में अकीदतमंद दरमियानी शब से तारीखी पहाड़ी मंदिर का रुख कर रहे हैं। ग्रीटी के झारखंड धाम और रियासत भर के दिगर शिव मंदिरों में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जल अभिषेक को पुरमन और महफूज तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। रांची से महफिश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: तिब्बी तहकीक के भारतीय कौंसिल

0: आईसीएमआर ने वजाहत की है कि H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, कि किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काउंसिल ने यकीन दिलाया है कि मौजूदा वैक्सीन अभी मौसर है। आईसीएमआर के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस साल 2025 से गर्दिश में है। आईसीएमआर के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। कबायली उमूर की वजारत कर्नाटक के मैसूरू में आज से बुध के रोज तक कबायली जुबानों और म्यूजियम से मुतालिक एक 3 रोजा कौमी कॉन्क्लेव का एहतमाम करेगी। ये कॉन्क्लेव कबायली जुबान की हिफाजत और महफूज रखने के साथ साथ उनके दस्तावेजी सबूत बरकरार रखने से मुतालिक कौमी मुजाकरात को यकजा करेगी। शतरंज में भारत के 19 साल ग्रैंड मास्टर परनेश एम हंगरी के नाग कांजिसा शहर में पुरवकार कांजिसा ओपन 2026 में चैंपियन के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के नतीजे में ग्रुप ए का खिताब हासिल किया है। परनेश ने सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में जर्मनी के वेदिम पेत्रोविस्की को शिकस्त दी। हंगरी में भारत के सफारतखाने ने परनेश की शानदार कामयाबी पर उनकी सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई स्टार्टअप्स के बानियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सफाई अव्वल पर शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि भारत का खला से मुतालिक शोबा नुमाया तौर पर वसी हुआ है और ये सेक्टर जामे ई को निजाम तश्कील देने का अहल है। रोजनामा प्रताप ने भारत में अमरीका के सफीर सर्गियो गौर के इस बयान को नुमाया किया कि भारत अमरीका आजाद तजारती मुहिदा FTA हतमी मरहले में, भारत हमारे लिए इंतहाई अहम मुल्क है। इसी अखबार की एक और खबर है, तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल 200 अरकान पर मुश्तमिल तजारती वफद के साथ जापान जाएंगे। ये दो दौरा तिजारत और सनत, मैनुफैक्चरिंग और सेहत खिदमात के लिहाज से इंतहाई अहम होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंगी जहाजों, बहरी कश्तियों और उससे मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की जरूरत पर जोर देते हुए मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निजाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर परनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, सावन का ये आखिरी सोमवार है और इस सोमवार की सुबह में गोल्डन हिट्स कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी। श्रोताओं, आज हर तरफ बम बम बोले की गूंज गूंज रही है। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे इस पावन महीने की ये आखिरी सुबह मन में सबके बस एक ही आस कि महादेव के दर्शन हो और होठों पर उन्हीं के भक्ति के गीत। तो क्यों ना आज गोल्डन हिट्स का आगाज भी उसी की पुकार से करें।

महादेव की भक्ति से सजे इस गीत को आपने सुना फिल्म बैराग से। आवाज थी महेंद्र कपूर साथियों की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: चंदन का एहसास।
1: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं गोल्डन हिट्स का आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। तो चलिए अब चलते हैं फिल्मी गीतों की तरफ और सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत आपको फिल्म उजाला से, जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर ने। शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए इस गीत को गीत रूप दिया है हसरत जयपुरी ने। श्रोताओ, पुराने गीतों की खूबसूरती ही कुछ ऐसी होती है कि सादगी से कही बात भी दिल में उतर जाती है और बरसों बाद भी उनकी धुने आपको तरोताजा कर देती हैं। उनका जलवा जो भी देखता है बस दिल उसी का हो जाता है।

श्रोताओ, कभी कभी किसी का बार बार यूं सामने आना, हर जगह उसकी मौजूदगी का एहसास होना, दिल में एक सवाल जगा देता है, आखिर ये रिश्ता कैसा है। और शायद इसी सवाल को बड़े ही प्यारे अंदाज में ये गीत कह रहा है कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र के लेखनीबद्ध किए गीत को लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी का ये गीत। श्रोताओं, आपने कभी कभी सोचा है कि जैसे अभी आपने ये गीत सुना, इस गीत में एक सवाल था कि जिसकी मौजूदगी का हमें हर पल एहसास होता है वो हमारा कौन होता है, और कुछ गीत कभी कभी अगले गीत में उसका जवाब होते हैं। आपको यकीन नहीं आता, सुन लीजिएगा ये अगला गीत, जो सुनकर लगेगा कि ये हमारे पहले गीत का जवाब है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फर्स्ट फिल्म का ये गीत आपने सुना। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का और गीतकार थे आनंद बख्शी। आइए अब आपको सुनवाते हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। फिल्म का नाम है नीला आकाश। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। श्रोताओं, कभी कभी सामने वाला अपने दिल की बात कहने की बजाय उसे छिपा कर रखता है। हालांकि आंखों से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जबां पर कभी इकरार नहीं आता। फिर ऐसे हालात में शिकवा करना तो बिल्कुल जायज़ है।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बारी है आज के अंतिम गीत की, और आज के गोल्डन हिट्स की आखिरी पेशकश हमने ली है फिल्म संगम से, जिसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत रचना है शंकर जयकिशन की। तो आज की संगीत भरी महफिल में आपने हमारे साथ कई गीतों का आनंद लिया, तो आखिरी गीत आपसे जुड़ा बिना अधूरा ही रहेगा। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती और ना ही इसका एहसास किसी एक दिल तक रहता है। तो आइए सुनते हैं हर दिल में प्यार की एक कहानी को बयां करता आज के

श्रोताओं, इसी गीत के साथ गोल्डन हिट्स का आज का ये सफर अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को है, कुछ ही देर में सुनिएगा जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11 और 12 अगस्त को अंतिम दौर के साक्षात्कार हुए। कुल 5,585 आवेदन मिले थे, जिनमें से कई चरणों की स्क्रीनिंग के बाद 16 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया। अब चयन समिति 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम नाम पर फैसला ट्रस्ट की 2 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 15 अगस्त से अर्चकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास के मुताबिक सभी अर्चकों ने पीत वस्त्र धारण किया। गर्मी में नीचे धोती और जबकि सर्दी में मौसम के अनुसार उन्हीं वस्त्र होंगे, लेकिन रंग पीत ही रहेगा। बिना सिले रेशमी वस्त्रों की व्यवस्था से रामलला की सेवा में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। श्रावण शुक्ल तृतीया पर अयोध्या में झूलनोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। रामलला के चल विग्रह को पालकी में विराजमान कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया, जिसके बाद रामलला तीनों भाइयों के साथ कुबेटिला पहुंचे, जहां झूलनोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। अयोध्या में झूलनोत्सव सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है, जिसमें सावन के दौरान भगवान को

0: झूले पर विराजमान कर भजन कीर्तन और झूलन के पदों से उन्हें रिझाया जाता है। मणि पर्वत मेले में भी अयोध्या के अलग अलग मंदिरों से भगवान के विग्रह शोभा यात्रा के साथ पहुंचे और झूलनोत्सव में शामिल हुए। धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी रामानंद दास कहते हैं,
1: जैसे अयोध्या अनादि है वैसे ही भगवान का गोलमोत्सव जिसको झूला कहते हैं यह अनादि है और पद्म पुराण में इसका विशेषता से वर्णन है। हमारे यहाँ ये भाव रहता है कि भगवान झूले में पधारते हैं और श्रावण में उनको गीत गवनई के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है।
0: विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। रामचंद्र दास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि ट्रस्ट की सिफारिश पर SIT जांच हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वही गौ संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि गाय सनातन धर्म और भारत की धरोहर है तथा प्रदेश में करीब 16,00,000 गायों के संरक्षण का काम गौशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
2: श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
0: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। 166,055 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं और 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसमें 86 छात्राओं और 34 छात्रों ने बाजी मारी। इस बार स्वर्ण पदक विजेताओं के माता पिता और अभिभावकों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा को शोध नवाचार कौशल और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने अयोध्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया और रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और कई महिलाएं 25,000 से 30,000 रुपए प्रतिमाह कमा भी रही हैं। सिविल लाइन स्थित ऐतिहासिक राजकीय पुस्तकालय के उच्चीकरण और नई गैलरी के निर्माण का काम शुरू हो गया है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भूमि पूजन कर परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 3,23,00,000 रुपए की लागत से होने वाला काम लगभग 9 महीने में पूरा होने का लक्ष्य है। पुस्तकालय में करीब 60,000 किताबें मौजूद हैं जिनमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं। मिल्कीपुर के रामपुरवा गांव स्थित विघ्नेश्वर महादेव मंदिर में 60 फीट लंबा और 8 कुंतल वजनी विशाल त्रिशूल स्थापित किया गया। सावन के पहले सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 12 जिलों के रास्ते अयोध्या लाया गया यह त्रिशूल अब मंदिर की नई पहचान और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर रामनगरी शिव में नजर आई। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहीं और हर हर महादेव के जयकारे से अयोध्या गूंजती रही। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए।
3: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
4: बलिया जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जनपद में मेरा युवा भारत के समन्वय में अभियान का व्यापक आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालदेवपुर में आयोजित हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री के संदेश का सजीव प्रसारण किया गया और 200 से अधिक युवाओं ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न विकास खंडों में कार्यरत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों द्वारा स्थानीय युवा मंडलों, स्वयं सेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से भी प्रधानमंत्री के संदेश के सामूहिक श्रवण का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। कुलपति ने अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती बल्कि अपने कर्तव्यों

0: सामूहिक गायन को विशेष महत्व दिया जाना निश्चित रूप से देश की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रीय एकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: बलिया जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थित सभागार में गोद लिए गए 6 रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण CMO अभय नारायण राय द्वारा एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर CMO ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना टीबी मुक्त भारत हो, अपना टीबी को हराने के लिए पोषण पोटली का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। बलिया प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु तहसील बांसडी क्षेत्र के ग्राम महाराजपुर के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कटान और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार को निर्देश दिया कि कोई भी बाढ़ पीड़ित मुआवजे से वंचित न रहे। जिन ग्रामीणों के मकान और खेत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी नियमानुसार पूरी सहायता सुनिश्चित की जाए। बलिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्रभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से शहीद पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों समेत करीब 2000 से अधिक लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों के कदम बढ़े तो पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। वहीं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा नशा मुक्ति, स्वच्छता और तिरंगा यात्रा का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लाल विजय सिंह ने बताया कि
2: बलिया में विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता, नशा मुक्ति एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। विद्यार्थियों ने मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाते हुए नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, एकता एवं देशभक्ति का संदेश दिया गया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है धरती गाती है कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नयनतारा शर्मा के स्वर में कुछ रुहेलकंडी सावन गीत। हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं भीम सिंह, ढोलक पर है अनिल उर्फ गुड्डू और बेंचो पर साथ निभा रहे हैं परवेज। श्रोताओ, सावन सिर्फ मौसम नहीं, हमारे लोक जीवन का वो रंग है जिसमें भक्ति भी है, उमंग भी है और आस्था की महक भी है। गांव की गलियों से लेकर मंदिरों की चौखट तक सावन आते ही लोक गीतों में जैसे एक नई आस्था की मिठास घुल जाती है। तो आज धरती गाती में हम आपको सुनवाएंगे वो शिव भक्ति के लोकगीत जिसमें कांवड़ यात्रा, सावन की रिमझिम का रंग भी घुला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोक धुनों के इस सफर की।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
0: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
1: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
0: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर हैं
1: 0134123015
0: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
1: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
0: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो बासमती।

धरती गाती है कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नयन तारा शर्मा के स्वर में कुछ रुहेलखंडी सावन लोकगीत। श्रोताओं, सावन में भोलेनाथ के घर पर पहुंचने की आस हो तो हर कदम अपने आप भक्ति की राह पर बढ़ने लगता है। कांवड़ियों के साथ गूंजते जयकारे और लोक धुने इस पूरे माहौल को और ज्यादा भक्तिमय बना देती हैं। तो आइए इसी सावन या रंग को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

श्रोताओं, सावन की फुहारे हों या मंदिर में झूले पड़े हों और चारों ओर हो लोग दिनों की मिठास, तो लगता है कि हर तरफ हर शय सावन के रंग में रंग गई है। तो आइए इसी सुहाने मौसम की बात करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: श्रोताओं, सावन के इन गीतों में हमने महसूस किया ईश्वर की भक्ति की आस्था को, कांवड़ की उमंग को और गांव की मिट्टी से जुड़ी उस लोक संस्कृति की मिठास को जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चली आ रही है। तो आज की लोक दिनों का सफर बस यहीं तक, दीजिएगा अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10 बज रहे हैं। वक्त है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे का। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो साथी फरीना, और मेरे साथ हैं,
1: और श्रोताओं मैं भी आपके साथ हूँ, और हम इस कार्यक्रम को अगर आगे लेके चलेंगे, मैं रहूँगा आपके साथ फरीना जी के भी साथ, जसवंत सिंह। तो फरीना जी, आगाज करते हैं कार्यक्रम का।
0: जी हाँ, आगाज करते हैं और अपने श्रोताओं को बता भी देते हैं कि कार्यक्रम में जुड़ने के लिए वो किस तरह हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क के लिए हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिएगा, 9457078288। और श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में पत्रों के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और कई श्रोता हमारे कार्यक्रम का पता भी जानते हैं, लेकिन जो नए श्रोता हैं उनके लिए हमारा पता है।
1: श्रोताओं, पत्र भेजने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम गीत तुम्हारे, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो देखिए, पत्र हमारे पास बहुत श्रोताओं ने भेजे हैं, तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत हम पत्रों के माध्यम से ही करते हैं। ये पत्र हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। लिखने वाले हैं बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। ये पत्र हमारे पास पहुंचा है नहटौर, मेन बाजार नहटौर से, एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अल शबा गुल फिशा, मोहम्मद अयान फरीदी, मोहम्मद कैफ फरीदी, और आप सब के दोस्त भी इस पत्र में शामिल आपने किए हैं। और ये पत्र हमारे पास आया है शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी।
0: कार्यक्रम का अगला पत्र जो हम ले रहे हैं वो हमें भेजा है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी।

0: ये अगला पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, रेलवे कॉलोनी भटिंडा, पंजाब से आप ये पत्र हमें भेज रहे हैं। अगला पत्र जो हम ले रहे हैं वो है ग्राम जहानाबाद नजीबाबाद जिला बिजनौर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जैद, अक्सरानी, ईशा, अरीबा, अनाविया, आयरा, ये फरमाइशी पत्र भेजा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, चांदनी रानी ने। ये पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा से ग्राम लाहौरी से आपने ये पत्र भेजा है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, उनके साथ हैं खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद।
1: और फरीना जी कुछ मैसेज भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोता मैसेज भेज चुके हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है हर्षित, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी, ये मैसेज भेज रहे हैं हमें पिकर लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। और ये मैसेज हमारे पास सब्जी मंडी झज्जर से भेज रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और आपका पूरा परिवार।
0: अच्छा जसवंत जी आप देख रहे हैं ये सब कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: इन्होंने फरमाइश की है कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनाइए और उसी से आगाज कीजिए।
0: तो इनका अरमान पूरा कर देते हैं हम अरमान फिल्म का गीत सुनवा कर जिसको आवाज दी है सोनू निगम, सुनिधि चौहान ने, गीत रचना है जावेद अख्तर की और संगीत रचना शंकर महादेवन की।

0: श्रोता हूँ, देखिए मैसेज का सिलसिला बिल्कुल अभी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और फरीना जी, देखिए ये मैसेज हमारे पास राखी का गीत सुनने के लिए भी हमारे श्रोता भेज रहे हैं। ये मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी कर गैना बरेली उत्तर प्रदेश से मैसेज हमारे पास पहुंचा है। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश कुमार उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती और श्रीमती ओमवती भारती। आपके साथ हैं खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथक सिंह। सुनना चाह रहे हैं अनजाना फिल्म का गीत, जो राखी के ऊपर ये गीत है। लता मंगेशकर की आवाज़ का गीत इन्होंने सुनने की फरमाइश की है। और ये मैसेज हमारे पास आया है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी का, सेक्टर 18, जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। ये मैसेज भेज रहे हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और आपका पूरा परिवार, और नासिर शेख, नाजिया, साजिद, शाहिद, गोविंदपुरा, अहमदनगर से हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज आया है एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का। इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। पश्चिम अपने शहर का इन्होंने पता पुराने लिखा। बहरहाल एक और मैसेज इसी गीत को सुनने के लिए आया है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। लिखने वाले हैं विनोद पुरी, वीपी, रंजू, अशोक, सुशील, बीके पुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पाली पुरी और सुनील पाठक।
1: इसी गीत को सुनने के फरमाइश करता हमारे श्रोता हैं फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से, आप हैं सुरेश चौरासिया, सरोज चौरासिया, सरिता चौरासिया, सुजाता, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा शिवानी, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कास गंजवी। ये मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से आपने ये मैसेज भेजा है। इसी गीत सुनने की हसरत रखते हैं परी महल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, जाहिद अली, मीर सराय बदायूं से उनके साथ मैसेज कर रहे हैं आफरीन खान और जमीर खान। ये मैसेज भेजा है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने।
0: और लता मंगेशकर की ही आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

0: इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है एकता कॉलोनी रोहतक से। देखिए दोबारा ये नंबर बदल बदल कर हमारे श्रोता कर देते हैं, तो आपकी फरमाइश तो शामिल हो गई है। उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। ये मैसेज रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर का आया है गांधी बागाव अकोला से। सरोज चौक अमरावती से इसी गीत को सुनने की फरमाइश आई है कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम की।
1: तो आप सबको इस गीत के माध्यम से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लीजिए आनंद लीजिएगा राखी के इस खास गीत का।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम की अगली पेशकश जो आपको हम सुनवाएंगे वो है फिल्म दिल परदेसी हो गया से, जिसको आवाज़ दी है सुनिधि चौहान, उषा खन्ना ने। संगीत उषा खन्ना का है और गीत के बोल लिखे हैं सावन कुमार ने। इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं।
1: इस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम और बेगम शबनम अनवर। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी है हमारे पास व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और उनके साथ है कुलदीप कंवल। इसी गीत को सुनने की फरमाइश तहसील रोड गंज डुंडवारा से फिर से आ गई है, लेकिन इस बार श्रोता हमारे अलग हैं। के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील साहब ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। और ये मैसेज हमारे पास नाज पैलेस अजमेर शरीफ से पहुंचा है और ये भी फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत की। लिखने वाले हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। इसी गीत को सुनने की फरमाइश नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा और एम खलील कुरैशी साहब कर रहे हैं पटियाला रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। और ये गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है भोपालगढ़ राजस्थान से। लिखने वाले हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। गंज डुंडवारा से ही और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी और जहीरा बेगम अंसारी ने भी इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। ये मैसेज फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण और जोहानुल खुदा ने भेजा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से।
0: इसी गीत को पसंद किया है हमारे श्रोता हैं गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, इन्होंने दोबारा मैसेज कर दिया है। ये मैसेज हमें भेजा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, पाकुड़ झारखंड से आप ये मैसेज कर रहे हैं। उनके साथ हैं बोहना गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कार्ड गोदाम से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अनीता राज, सुनीता राज, भानु राज, अमित खन्ना और उनकी माता श्री।
1: और ये मैसेज हमारे पास आया है अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव और आपका पूरा परिवार। ये मैसेज जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने भेजा है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतनाम मध्य प्रदेश से।
0: और ये पत्र हमें भेजा है ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से भी राजेश धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे इसी गीत की फरमाइश करते हैं। उनके साथ ही फरमाइश कर रहे हैं खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं सुनिधि चौहान और उषा खन्ना को फिल्म दिल परदेसी हो गया में।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत, चाहे पत्रों के द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो नंबर याद रखिए 9457078288। और पता क्या है फरीना जी?
2: पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। तो लिख भेजिएगा अपनी पसंद के गीत पत्रों के या व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से।
1: और ये देखिए, मैसेज का सिलसिला जारी है। और ये मैसेज गायक रूप कुमार राठौर और लता मंगेशकर की आवाज का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। लिखने वाले हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ये मैसेज हमारे पास भेजा है धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से। और मैसेज भेजने वाले हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। इसी गीत को सुनने की फरमाइश मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह कर रहे हैं, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं कोल सिटी बरका काना से। लिखने वाले हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मल्लिक।
2: इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद हसलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान और मदीहा। यह गीत सुनना चाहा है हल्फिशा अंसारी, वारिस अंसारी, समीर अंसारी, साहिबा महबूब, महबूब दुकानदार, जसपुर रोड, दुल्हापुर, ज़िला मुरादाबाद से इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, उनके साथ हैं सिंदौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी। ये मैसेज भेजा है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली, ज़िला मुरादाबाद से।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं ग्राम नगला उबहन, नजीबाबाद, जिला बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत और पूनम देवी। इसी गीत को सुनने की फरमाइश डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी और डॉक्टर प्रियंका मोदी ने भेजी है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से। और बरका काना से इसी मैसेज के माध्यम से फरमाइश भेज रहे हैं इफ्तिखार इब्राहिम, नाजनी तबस्सुम और अफजल इब्राहिम।
2: तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर को फिल्म वीरजारा में, जिसकी शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत रचना मदन मोहन की।

और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब जो मैसेज हमारे पास भेज रहे हैं, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू और आपका पूरा परिवार सुनना चाहते हैं अंधा कानून फिल्म का गीत चर डोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। ये मैसेज हमारे पास भेजा है आपने, किशोर कुमार की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, खेमू मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बेड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। ये मैसेज आया है जिला खरगोन सनावत।

0: मध्य प्रदेश से, और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने, दादरी गेट भिवानी से। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत और मिथिला नाचानी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से। इसी गीत को सुनने की फरमाइश किशोर कुमार की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन और आशीष राजा, चंडीगढ़ SE राहुल खुराना, चंडीगढ़ SE मतलब वहाँ से इन्होंने सेक्टर शायद ये लिखा है, रचिता खुराना, केशो रिधाना खुराना भी इस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। और ये मैसेज हमें भेजा है करणवीर हाउस भूचो कैचिया से, बठिंडा पंजाब से है ये मैसेज भेजने वाले। लिखने वाले हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरजिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम और आपका पूरा परिवार। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा, मुस्कान और असलम ने भी मैसेज भेजा है मौला बारादरी महमूद खान रामपुर से।
1: और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बड़ापुर जिला बिजनौर से, मोहम्मद ताहिर इदरीस हिलाल जैन प्लांट देहरादून से उनके साथ मैसेज कर रहे हैं। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, उनके साथ हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ये मैसेज भेजा है वीरेंद्र भियाड़, सुरेंद्र भियाड़, शमशेर भियाड़, मनोज भियाड़ ने जेवरा हिसार से, पदमपुर जिला श्री गंगानहर राजस्थान से आप हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्यों मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता ने इसी गीत को सुनने की हसरत लिख भेजी है। और ये मैसेज भेजा है पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान अनस सरोज चौक अमरावती से उनके साथ मैसेज कर रहे हैं करमूला ठेकेदार, नसीमा बेगम, आयशा खान और हादिया खान। इसी गीत को सुनने के फरमाइश करता है फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
0: गांव और पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान और राघव चौहान ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। और ये मैसेज 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से भेज रही हैं पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना, मराठा देविका चौधरी, लड्डू चौधरी और स्वाति।
1: तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म अंधा कानून में किशोर कुमार को।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आप लोगों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं वो है कुमार सानू की आवाज में। धुन तैयार की है बप्पी लाहिरी ने और गीत के बोल लिखे हैं प्रयागराज ने। फिल्म का नाम है ब्रह्मा। इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीति शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। इसी गीत को सुनने के फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। और ये अगला मैसेज जो हम ले रहे हैं वो भेजा है हमें कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, कल्पित चौहान, मोहिनी चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्षु ने। ये मैसेज भेजने वाले हमारे

0: लगता है।
1: देखिए, मैसेज और पत्र दोनों एक साथ बनाकर भेज रहे हैं हमारे बॉस श्रोता हैं।
0: इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ गीत की
1: जी
0: फरमाइश लिख भेजी है ना।
1: हाँ जी, उसमें फिल्म का नाम और वो एक दो और चीज़ें इन्होंने लिखी है। बहरहाल, एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है ग्राम गद्दा रोना से, मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी और मधु गिरी का। आपके साथ है सोनिया, गोविंद, सिमरन और वंशिका। आपने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है और ये मैसेज जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रगिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक का आया है। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज देखिए कितना सजा कर कुछ लोग मैसेज भेजते हैं।
0: हाँ
1: ये मैसेज पप्पू श्रोता क्लब, मेन रोड, फारबिसगंज, बिहार से हमें भेज रहे हैं प्रकाश कुमार उर्फ पप्पू, नैतिक, पीहू कुमार, बिमल। और इसी पत्र में नवरतन हाता, बारीहाट, पूर्णिया, बिहार से मैसेज लिखा है ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी ने।
0: और इसी गीत को सुनने के फरमाइश करता हमारे श्रोता हैं, आप हैं कृष्ण की नगरी मथुरा से, सबा अंसारी, शकील अंसारी, हीना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। ये मैसेज भेजा है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन, मोहम्मद यासीन, मूसा करीम, शेख सलीम और उनके परिवार के सदस्यों ने। ये मैसेज भेजा है सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सैयद आलम हाशमी, नाज पैलेस, अजमेर शरीफ से। ये मैसेज भेजा है हमारे श्रोता चंदन नगर सहारनपुर से हैं। दोबारा मैसेज इन्होंने कर दिया
1: जी
0: है
1: जी नंबर
0: ना।
1: बदल बदल के कर देते हैं। ये चौटाला हरियाणा से मैसेज भेज रहे हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा।
0: और ये मैसेज भेजा है बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी ने। आप ये मैसेज कर रहे हैं फतेह खालसा अमरोहा नई बस्ती से। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू को फिल्म ब्रह्मा में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में अब जो आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो उसे हमने लिया है फिल्म उम्मीद से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है रवि ने। और इस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं लाल कुर्ती रोड की कैंट उत्तराखंड से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिक वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर जे राजा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा अदीब, नाजिया आफिया इब्राहिम और सद्दाम ने कुम्हर हेड़ा सहारनपुर से। और ये मैसेज हमारे पास आया है कासिम पेंटर, मोहम्मद अवेश, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद हादी और डॉक्टर बीजे का, ग्राम मीरामपुर बेगा, पोस्ट मंडावली, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर से। ये मैसेज लिखकर भेज रहे हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबैर अली खान और सबीहा अंजुम खान। इसी गीत को सुनने की फरमाइश डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी और फातमा राज अंसारी ने की है। और इसी मैसेज में शहर दिल्ली से भी प्रभा रानी, मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी ने भी मैसेज किया है। देखिए क्या किस तरह के नाम है, जेल रोड पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और आपका पूरा परिवार भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। और ये मैसेज है मोहम्मद सईद का, देखिए दोबारा आ गया है मैसेज, नंबर बदल बदल कर हमारे श्रोता भेजते रहते हैं। और ये एक और मैसेज हम ले रहे हैं हमारे इन श्रोता का, इस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, श्रोता रघुवीर नगर से हैं आप हमारे। और ये मैसेज भेज रहे हैं मोहम्मद परवेज अहमद, रतिनाथ त्रिपाठी, सोनू गौतम, सतीश शर्मा जी। मैसेज आपने भेजा है हमें शुकुलपुरा बनारस से।
1: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिश करता है नांगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। यही गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है आबाद खान, जाहिद सैफी, सोना सैफी, सद्दाम सैफी, जैबुनिशा बेगम, मोहम्मद असलम सैफी ने दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट काजगंज से। और यही गीत सुनना चाहते हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से
0: जी।
1: और यही गीत सुनने की फरमाइश लिख भेजी है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा ही खुशदिल परिवार। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म उम्मीद से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज के गीत तुम्हारे को संपन्न करने की अपनी दोस्त फरीना को दीजिएगा इजाजत, लेकिन आपको एक उम्मीद जरूर जगाएंगे। जिन श्रोताओं के मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके पास एक और मौका है आज ही के कार्यक्रम जिसको आप सुनेंगे रात 10:30 पर। तो लिख भेजिएगा अपनी फरमाइश और बने रहिएगा यूं ही आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फना फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं शान और कैलाश खेर की। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत के अंतर्गत आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म सड़क से। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंग फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू को, और आइए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहरा फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं पंकज उधास और साधना सरगम की, गीत

मोहरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे पंकज उधास और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं दुश्मन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी और उत्तम सिंह ने, और इस गीत के लिए संगीत भी दिया है उत्तम सिंह ने।

दुश्मन फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को। और श्रोताओं, लीजिए अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की, गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
1: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
1: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला

0: कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द

0: आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: खाकी शब्द

0: किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी

0: विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की

0: रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय

0: का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
1: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
0: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
1: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
0: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
2: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ऐसी मूर्ति तो मैंने
5: वाओ वंडरफुल।
1: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
0: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
1: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
0: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
1: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
2: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
3: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
0: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
1: उस मूर्तिकार ने बताया,
6: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
0: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
7: ग्रेट, मार्वेलस।
3: हाँ, अफसर ऐसा ही होता है।
7: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
6: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
1: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीरदास जी का एक

0: बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि
1: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को है। अब सुनिए जानकारी आज के शेष और उन कार्यक्रमों के विषय में जानकारी जो आज आप सुनेंगे। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पंडित मनीराम द्वारा गाया राग पट्टदीप की, विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर साथ देंगे उस्ताद सुल्तान खान।

दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत में आज चर्चा का विषय रहेगा, पूरे परिवार के लिए कितना आवश्यक है व्यायाम। कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा, मच्छरों से बचाव ही सावधानी है। साथ ही आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु नाटिका एक और परीक्षा। लघु नाटिका में आलेख रहेगा दीप्ति माहेश्वरी का, प्रतिभागी कलाकार होंगे मोहित, दीप्ति माहेश्वरी, हिमांशु रंजन और मरियम जैदी, प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। दोपहर 1:45 पर कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे वीरेंद्र सिंह बिष्ट की आवाज में जौनसारी लोकगीत।

शाम 5 बजे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से चलाई जा रही जिन दो योजनाओं की जानकारी दी जाएगी वे होंगी ENAM और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। हमारे दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5:15 पर क्रम रहेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल और कहानी के उस पार।

शाम 6:05 पर किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज चर्चा का विषय होगा पशुपालन प्रबंधन, और साथ ही जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। किसान श्रोता सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवा किसान सुनील कुमार सिंह से सुरेंद्र सिंह की बातचीत। इस भेंटवार्ता का विषय होगा गोबर की सॉलिड और लिक्विड खाद का महत्व। शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अंजू बंसल की वार्ता। इस वार्ता का विषय होगा समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे सुनील मुखर्जी की आवाज में भजन। इसके साथ ही फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से के अंतर्गत। शाम 6:55 पर छाया गीत में। रात 8:00 गीत संध्या में। और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत। फिल्म संगीत का आनंद रात 10:00 भूले बिसरे गीतों और रात 10:30 पर आपकी फरमाइश के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित मनीराम द्वारा गाया राग पट्टदीप की। विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल। तबले पर साथ दे रहे हैं उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर संगत कर रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे पंडित मनीराम के द्वारा गाया राग पट्टदीप की। विलंबित एक ताल और दुरुत तीन ताल। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर साथ दे रहे थे उस्ताद सुल्तान खान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और आइए, इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फकीरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत भी दिया है रविंद्र जैन ने।

0: श्रोताओं, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं निकाह फिल्म का ये गीत। आवाज़ है सलमा आगा की। गीत के बोल लिखे हैं हसन कमाल ने और संगीत दिया है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे निकाह फिल्म से सलमा आगा को। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पड़ोसन फिल्म से किशोर कुमार को। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है R.D. बर्मन ने।

श्रोताओं, मिड डे मेलोडी में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में। गीत लिखा है मनोज कुमार ने और संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पेंटर बाबू फिल्म से महेंद्र कपूर को। और लीजिए, अब इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की, गीत लिखा है SH बिहारी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतोरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे

स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इंसानियत पहले के उसूल पर मबनी अवाम पर मबनी नुक्ते नजर से रहनुमाई करती है। लखनऊ में 18वीं ब्रिक्स एकेडमिक फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए एसएस शीदलेरा ने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी ब्रिक्स चेयरशिप के दौरान लचक, इख्तरा, ताउन और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तकरीबन 30 शहरों में 400 से ज्यादा मीटिंग्स का इनेकाद किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जयप्रकाश सैनी ने कहा कि इल्म को अवामी पॉलिसी से जोड़ने में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियां ख्यालात को जांचने, शवाहिद का जायजा लेने और नए इम्कान तलाश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं। ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन के सदर सुमेर सरन ने भी प्रोग्राम से खिताब किया। 18वीं ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का इनेकाद 23 से 25 अगस्त तक लखनऊ में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जरिए किया जा रहा है। सावन के महीने के चौथे और आखिरी पीर को मुकद्दस शहर काशी में सुबह सवेरे से मंगल आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। बाबा विश्वनाथ के दीदार के लिए पहुंचने वाले यात्रियों अकीदतमंदों को फूलों की बारिश के साथ शानदार और जज्बाती इस्तकबाल किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर हर हर महादेव और जय बाबा विश्वनाथ के नारों से गूंज उठा। मिलादुन्नबी 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले मजालिस और जुलूसों के बारे में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अवाम से अपील की कि वो मरकज की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महली लखनऊ की तारीफ से 12 रबी अव्वल की एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें मुसलमानों पर जोर दिया गया है कि मिलादुन्नबी को बड़े पैमाने पर इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे और जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूसों के दौरान इस बात को यकीनी बनाएं कि जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर चले और ऐसे नारे लगाने से गुरेज करें जिससे किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हों। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम परिवार जगत। और कार्यक्रम में ढेरों जानकारी और मनोरंजन लेकर मैं आई हूँ आपकी साथी ज्योति। श्रोताओं, रिमझिम पड़ती फुहारें किसे नहीं अच्छी लगती। ये गर्मी से राहत और मन को सुकून देने वाली होती हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, भीषण गर्मी से राहत तो मिली। परंतु ये मौसम जितना सुहावना होता है, उतना ही अगर हम ध्यान न रखें तो बीमारियों का भी होता है। श्रोताओं, वो कैसे, आइए जानते हैं। श्रोताओं, बरसात के मौसम में जगह जगह पानी का भराव हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि मच्छरों, मक्खियों आदि की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है और ये हमें काटकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारी फैलाते हैं। हमारा मच्छरों से बचाव हो, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि घर में कहीं पर भी पानी रुका हुआ ना हो जिसमें मच्छर पनपे, जैसे कूलर, टायर ट्यूब, खाली पड़े गमले, बोतलें या फिर डिब्बे, इन सब में पानी रुक जाता है और जो मच्छरों को जन्म देता है। इस समय वायरल बुखार और सर्दी खांसी भी अधिकतर देखने को मिलता है, जिसका कारण है हमारी अनियमित जीवन शैली। श्रोताओं, हमें अपनी दिनचर्या में समय पर खाना और समय पर सोना अवश्य चाहिए। बाहर का तला भुना और बिना ढका हुआ पानी भोजन बिल्कुल ना खाएं, ये हमें अस्वस्थ करता है। श्रोताओं, इसके साथ ही इस मौसम में हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत नुकसानदायक।

होता है। यदि करना ही पड़े तो नमक के पानी में भिगोकर धोकर ही हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग में लाएं। सूती और पूरी बांह की वस्त्री पहने जिससे मच्छरों से बचाव हो सके। किसी भी बुखार को सामान्य मानकर मेडिकल से दवा लेकर सेवन नहीं करनी चाहिए, यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और तभी दवाओं का सेवन करें। बस इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो मच्छरों से बचाव करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो हमने बात की मच्छरों से बचाव और सावधानी की। श्रोताओं, एक बात और, मच्छरों के बचाव के लिए हमें अत्यधिक दवाओं का या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है और घर में छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। इसके लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग सबसे अच्छा विकल्प है। और मच्छर जनित रोग और बरसात के मौसम में होने वाली अन्य बीमारियों से बचे रहें, इस मौसम का आनंद उठाएं, स्वस्थ रहें, हम तो ऐसे ही कामना करते हैं। और श्रोताओं, जानकारी अभी और भी हैं, परंतु सुन लेते हैं उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: श्रोताओं, संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की। हम स्वस्थ रहें इसके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। श्रोताओं, दिनचर्या में बदलाव के साथ साथ बहुत जरूरी है थोड़े समय के लिए व्यायाम जरूर करना। पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट का व्यायाम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और छोटी छोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि को दूर भगाता है। व्यायाम हर वर्ग के लिए अति आवश्यक है। बचपन से ही अगर बच्चों को व्यायाम की आदत डाल दी जाए तो वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और श्रोताओं, आज की व्यस्तम जिंदगी में व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल तकनीकी युग है और इस युग में सभी तनावग्रस्त हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा। ऐसे में मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। शोध से मिली जानकारी के अनुसार हम व्यायाम करके असाध्य रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसमें व्यायाम के साथ साथ खान पान का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। श्रोताओं, व्यायाम को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों की तो आज के बच्चों को पढ़ाई का बहुत दबाव है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हर कोई आगे निकलना चाहता है और यही तनाव का प्रमुख कारण है। लेकिन तनाव से बचने के लिए बच्चों को शारीरिक गतिविधि अवश्य कराएं और उनके उसके साथ साथ व्यायाम के लिए उन्हें प्रेरित करें। आज मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम के कारण बच्चे लंबे समय तक बैठे रहते हैं जिससे उनकी सक्रियता कम हो सकती है। इसके लिए उन्हें तैराकी, साइकिलिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ना जैसे खेलों में जरूर शामिल करें जिससे उनकी सक्रियता कम ना हो। श्रोताओं, बहुत आवश्यक है बच्चों में अनुशासन और टीम की भावना विकसित करने की। अब बात करें युवाओं की तो युवाओं का अधिकतर समय मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने गुजरता है। लगातार बैठे रहने की आदत शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। नियमित शारीरिक गतिविधियां, वजन को नियंत्रित रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। श्रोताओं, अगर रोज जिम नहीं जा सकते तो नियमित रूप से पैदल चलना, स्ट्रेचिंग या योग जैसी गतिविधियों को दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। और अब बात करें महिलाओं की तो अक्सर परिवार की देखभाल में वो अपनी सेहत को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती हैं। घर के काम करने के बावजूद अलग से शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालना उपयोगी हो सकता है। योग करना, पैदल चलना, नृत्य या हल्की कसरत शरीर को सक्रिय रखने के लिए के साथ साथ मानसिक तनाव

कम करने में भी बहुत मदद करती है। श्रोताओं, परिवार में सबसे अहम होते हैं हमारे बुजुर्ग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बच्चों की तरह होती है और उनका खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यायाम को भी जरूर महत्व दें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, योग या चिकित्सक की सलाह के अनुसार व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है। बुजुर्गों के लिए व्यायाम शुरू करने से पहले, विशेषकर तब जब उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या हो, डॉक्टर या योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। श्रोताओं, कोशिश करें पूरा परिवार साथ में व्यायाम करे, इसके बहुत अधिक लाभ हैं। सुबह शाम परिवार के साथ टहलें,

0: बात छोटे कदमों से की जा सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने के बीच थोड़ा चलना, रोज कुछ समय सक्रिय रहना और अपनी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, स्वस्थ परिवार के केवल अच्छा भोजन करने से नहीं बल्कि अच्छी जीवन शैली अपनाने से बनता है। इसमें संकल्प लें, व्यायाम अकेले नहीं परिवार के साथ करेंगे। स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि जब परिवार स्वस्थ होगा तभी परिवार खुशहाल होगा। व्यायाम शरीर को ऊर्जा देता है, मन को प्रसन्न रखता है और परिवार को स्वस्थ भविष्य की ओर लेकर जाता है। तो श्रोताओं, योग अपनाएं और बीमारी को दूर भगाएं, क्योंकि वैसे ही जीवन में हर कदम पर हमारी परीक्षा होती रहती है। हम हर मुकाबले का सामना तभी कर सकते हैं जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। श्रोताओं, व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। मनोरंजन के साथ के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कोई नृत्य करके, कोई संगीत से, तो कोई लेखनी से, और कोई कागज पर सुंदर आकृति बनाकर अपने जीवन में रंग भरते हैं। ये सभी हमारे जीवन में नए उमंग, नए उत्साह भर देते हैं। तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर। आप सभी का मनोरंजन हो, आपके अंदर उत्साह बढ़े, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक लघु नाटिका जिसका नाम है एक और परीक्षा। आलेख दीप्ति माहेश्वरी का है, प्रतिभागी कलाकार हैं मोहित, हिमांशु रंजन और मरियम। आइए सुनते हैं लघु नाटिका।
1: आरव बेटा, रात के 2 बज गए हैं, अब तो किताब से नजर हटा ले, आंखें लाल हो गई हैं तेरी। चल सो जा, नहीं तो सुबह परीक्षा हॉल में नींद आएगी।
2: नींद कहाँ है माँ इन आंखों में, पिछले 6 महीने से सिर्फ आज की सुबह का इंतजार किया है। बस ये आखिरी चैप्टर रिवाइज कर लूँ, इस बार बस मेरी नौकरी लग जाए माँ, और इस परीक्षा से मुझे बहुत उम्मीद है।
1: तूने बहुत तपस्या की है बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बेटा तू फिक्र मत कर, भगवान कभी पसीने की कमाई व्यर्थ नहीं जाने देता।
2: बस ये नौकरी मिल जाए माँ, फिर बाबूजी के जाने के बाद जो बोझ आपने अकेले उठाया है ना, वो मैं सब संभाल लूंगा, और आपकी दवा, घर का खर्च, अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं माँ, बस मेरी नौकरी लग जाए।

0: हाँ भाई, ऑटो खाली है? अरे अरे जल्दी चलो, कॉलेज जाना है जो गांधी मूर्ति के पास है। चलो जल्दी।
1: बैठो भैया बैठो।
2: आरव आरव जल्दी फोन उठाओ।
0: हाँ नेहा, बोलो। बस सेंटर के लिए निकल गया हूँ और ऑटो में हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ इतनी कांप क्यों रही है?
2: मत निकलो आरव, कोई फायदा नहीं, टूट गया सब, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई।

0: क्या कह रही हो तुम? मजाक मत करो यार।
1: ये मजाक नहीं है आरव, अभी ऑफिशियल नोटिस आया है। जो पेपर हम आज देने वाले थे वो रात को ही लाखों में बिक चुका है।
0: नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ का सपना, मेरा सपना, नहीं नेहा,

0: क्या हुआ बेटा, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? परीक्षा कैसी हुई?
1: परीक्षा? अरे परीक्षा तो उनकी हुई माँ, जिनके पास पैसे थे। हमारी तो बस किस्मत नीलामी हुई है, पेपर लीक हो गया माँ।
0: हे भगवान, अब क्या होगा बेटा?
1: अब फिर से इंतजार, फिर से वही परीक्षा की तैयारी, फिर से वही डर कि अगली बार पेपर लीक तो नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी?

0: हौसला रख मेरे लाल, तेरी मेहनत कहीं नहीं गई ना, विद्या तो तेरे पास ही है।
1: मेहनत तो नहीं गई माँ, लेकिन लेकिन मेरा इस देश के सिस्टम से तो भरोसा उठ गया ना। जो कुर्सी मुझे अपनी रातें जलाकर मिलनी थी, वो कोई चंद रुपयों में खरीद कर ले गया माँ।
0: कौन है?
2: मैं हूँ नेहा। आंटी नमस्ते।
0: नमस्ते। आओ बेटा, इसे समझाओ थोड़ा। सुबह से आरव ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है।
2: आरव, मैं भी बहुत रोई हूँ। हमने बहुत पढ़ाई करी थी इस एग्जाम की, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे लाखों छात्र इसी दर्द से गुजर रहे हैं।
1: यही तो सबसे बड़ा दुख है नेहा। जिसने ईमानदारी से मेहनत की वही तो सजा भुगत रहा है। जिसने पेपर खरीदा होगा वो तो आज अपने घर पर चैन से सो रहा होगा ना।
2: आज सोशल मीडिया पर लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं छात्र फिर से पढ़ाई करें। किसी को नहीं पता कि एक परीक्षा के पीछे कितनी रातें, कितने सपने और कितने गरीब परिवारों के त्याग जुड़े होते हैं।
1: तुम जानती हो नेहा, मैंने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। त्योहारों पर घर से बाहर नहीं निकला, मोबाइल महीनों तक बंद रखा। बाबूजी के जाने के बाद माँ की हर उम्मीद सिर्फ मुझ पर टिकी है, और आज आज लग रहा है कि जैसे जैसे किसी ने मेरी मेहनत की कॉपी सरेआम फाड़ दी हो।
2: कल रात मैं भी यही सोच रही थी कि इस परीक्षा के बाद थोड़ा चैन मिलेगा, सुकून से सो सकूंगी। लेकिन अब तो किताब की तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा।
1: मुझे खुद से डर लग रहा है नेहा। मुझे डर है कि कहीं मैं इस भ्रष्ट व्यवस्था के आगे हार ना मान लूं।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
0: आइए सर, आइए। अच्छा हुआ आप आ गए, इन्हें कुछ समझाइए।
3: आरव, नेहा, मुझे पता है तुम दोनों पर क्या बीत रही होगी। सच कहूं, आज एक शिक्षक होने के नाते मुझे खुद पर शर्म आ रही है। हम तुम्हें किताबें पढ़ाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, लेकिन बाहर की इस दीमक लगी व्यवस्था से लड़ना नहीं सिखा पाते।
1: सर, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है इस देश में?
3: कीमत है बेटा आरव, और बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन जब व्यवस्था में ही छेद होता है तो सबसे पहले तुम्हारे जैसे ईमानदार छात्र ही घायल होते हैं।
2: सर, बाहर लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो। क्या ये इतना आसान है सर?
3: बिल्कुल भी नहीं। दोबारा किताब उठाना मुश्किल नहीं होता बच्चों, मुश्किल होता है उस टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ना।

0: सर, दोबारा फॉर्म भरने की फीस, दूसरे शहर तक जाने का खर्च, कोचिंग की फीस, ये सब हम कहाँ से लाएंगे? और जो छात्र दाल चावल खाकर गुजारा करते हैं, उनके मकान मालिक किराया माफ नहीं करते, घर वाले भी उनका कर्ज उठाते उठाते थक जाते हैं।
1: और वो रिश्तेदार जो हर दिन ताने मारते हैं कि 4 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक नौकरी नहीं लगी। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि पिछले 4 साल से परीक्षा हुई भी थी या नहीं।
0: रात को नींद नहीं आती सर, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि कहीं मेरी पूरी जवानी, मेरी उम्र इस तैयारी के चक्रव्यूह में ना निकल जाए।
2: मेरे बच्चों, यही मानसिक दबाव सबसे खतरनाक होता है। पेपर लीक सिर्फ परीक्षा की तारीख नहीं बदलता, वो बच्चों की सोच बदल देता है। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो कोई गुस्सैल हो जाता है, और कई स्टूडेंट्स तो खुद को असफल समझने लगते हैं।

0: सर, अगर दिन रात एक करने वाला छात्र हर बार पीछे रह जाए और पैसे वाला नौकरी ले जाए तो क्या हमारी ये ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है?
1: नहीं आरव, ईमानदारी मूर्खता नहीं है, बल्कि वो इस खोखले हो चुके समाज की आखिरी रीढ़ है। अगर तुम जैसे मेहनती बच्चों ने हार मान ली,

0: तो ये भ्रष्ट लोग सिर्फ एक परीक्षा नहीं, इस देश का पूरा भविष्य हाईजैक कर लेंगे। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई इस सिस्टम को जिंदा रखने की है।
1: लेकिन सर, हम कब तक सहते रहेंगे?
0: सहन मत करो, आवाज उठाओ, पारदर्शिता मांगो, निष्पक्ष व्यवस्था मांगो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि लीक हुआ प्रश्न पत्र ज्ञान नहीं होता। असली ज्ञान, असली काबिलियत तुम्हारे भीतर है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता।

0: सर ठीक कह रहे हैं बेटा, ठोकर खाकर गिर जाना हार नहीं है, पर गिरकर बैठे रह जाना सबसे बड़ी हार है।
1: आयव, चलो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कल सुबह से दोबारा पढ़ाई में जुट जाएंगे। इस बार सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को वापस जीतने के लिए पढ़ेंगे।
2: शायद यही हमारी असली परीक्षा है सर। ये परीक्षा प्रश्न पत्र की नहीं, हमारी हिम्मत की है।
3: यही एक छात्र की सच्ची ताकत है। और हमेशा याद रखना, वो कागज के पन्ने लीक कर सकते हैं, तुम्हारे फौलादी सपने नहीं।

0: मैं फिर पढ़ूंगा, दोगुनी ताकत से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी बरसों की मेहनत किसी दलाल की बेईमानी से छोटी नहीं हो सकती।
1: मैं भी, ताकि कल किसी छात्र को ये ना कहना पड़े कि इस देश में मेहनत का कोई मोल नहीं।
2: जब तक तुम जैसे छात्र उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस व्यवस्था को बदलने की संभावना भी जिंदा रहती है।
3: भगवान करे आगे से इस देश की हर परीक्षा निष्पक्ष हो और हर मेहनती बच्चे को उसके पसीने का हक मिले।

एक और परीक्षा, हम सब ने ये लघु नाटिका सुनी। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। श्रोताओं देखिए ना, जब हम दिल से मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट ये निकलता है जैसे पेपर लीक, तो वास्तव में सपने टूटते हैं। पर हम उम्मीद करेंगे कि इस व्यवस्था में जरूर सुधार हो, बच्चों की आवाज जरूर पहुंचे और सख्ती से नियम बने और आगे कोई भी पेपर लीक ना हो, जिससे स्टूडेंट्स अपनी मेहनत का पूरा रिजल्ट पा सकें। और हम तैयारी करने वाले बच्चों से यही कहेंगे कि कोई भी सफलता यूं ही नहीं मिलती, ये छोटी छोटी रुकावटें होती हैं जो हमें जीवन जीने में और भी सफल बनाती हैं। तो आप अपनी मेहनत करनी बिल्कुल ना छोड़ें, अपना बेस्ट दें और सफल हों। देखिए ना, गीता में भी कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। ये सत्य है कि की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हमारी ओर से परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को आगामी परीक्षा की अनंत शुभकामनाएं। और आइए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

कर हर मैदान फतेह, ये उन मेहनत करने वाले बच्चों के लिए जो अपनी मेहनत से हर मैदान को फतेह करें। तो श्रोताओं, आप घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि हम आपसे विदा लें, लेकिन आप हमें बताएं कि आपको आज का कार्यक्रम हमारा कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव आप हमें अवश्य भेजें। पत्र लिखने का पता है कार्यक्रम परिवार जगत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। आप हमें अवश्य पत्र लिखें अपनी शिकायतें और सुझाव के साथ, और कार्यक्रम को संपन्न करने की अपने साथी ज्योति को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम परिवार जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट की आवाज में जौनसारी लोकगीत।

0: श्रोताओं, वीरेंद्र सिंह बिष्ट की आवाज में आप सुन रहे हैं जौनसारी लोकगीत कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
1: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
2: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
1: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
2: 0134123015
1: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457082888।
2: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
1: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
2: सजीव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो बासमती।

श्रोताओं, आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा, और हम आपको सुनवा रहे हैं जौनसारी लोकगीत।

0: is to rise in Bihar, causing flooding in low-lying areas of the state. We have more from our correspondent.
1: Bihar, which is facing a shortage of rainfall, is seeing the water level of Ganga River continue to rise in Patna, Vaishali, Bhojpur, Buxar, Bhagalpur, Munger, Samastipur and Begusarai districts. Crops standing on hundreds of acres of farmland have been damaged. According to the Central Water Commission, the water level of the river has risen above the danger mark at all major ghats in Patna. In view of the worsening flood situation, Chief Minister Samrat Chaudhary spoke to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari over the phone and apprised him of the gravity of the situation. West Bengal Chief Minister has assured prompt action in this regard. Sabita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day one, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता

0: दर्शाती है।
1: ओनली टू रिफ्लेक्ट दैट अ वाइड डाइवर्सिटी जॉइन दिस डेलीगेशन।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आर्गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management and farm mechanization assistance.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
6: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
2: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए।

0: नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
1: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू एड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अबीरा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा,

0: दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, नई फिल्मों से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आकाश

वाणी हर वर्ग के श्रोताओं के लिए मनोरंजन परोसती है, तो इसीलिए कुछ नई उम्र के श्रोताओं के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं नई फिल्मों से। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल ट्रू के इस गीत के साथ। आवाज है सुनिधि चौहान और दानिश साबरी की। गीत लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत दिया है मीत ब्रदर्स ने।

श्रोताओं, ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और दानिश साबरी की आवाज में। और आइए, अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं

वॉर 2 फिल्म का गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, संगीत दिया है प्रीतम ने और गीत लिखा है अमित भट्टाचार्य ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम नई फिल्मों से।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए।

0: स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, नई फिल्मों के गीत अब आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से के अंतर्गत, और इस क्रम में आइए अब आपको सुनवा रहे हैं मातृभूमि फिल्म का गीत निहाल तौरो और अंकोना मुखर्जी की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर अंजान ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं नई फिल्मों के गीतों का कार्यक्रम नई फिल्मों से। आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं धड़क 2 फिल्म का ये गीत, दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाज में। गीत लिखा है गुरप्रीत सैनी ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने।

धड़क 2 फिल्म का गीत अभी आपने सुना, दर्शन रावल और जॉनिता गांधी की आवाज़ में। बोलिए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं टाइगर 3 फिल्म से ये गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह की। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: टाइगर 3 फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। श्रोताओं, अब हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं बागी 4 फिल्म का ये गीत, जॉश ब्राट और परंपरा टंडन की आवाज़ में। गीत लिखा है सलामत अली, कुमार जगदीप और जॉश ब्रार ने। संगीत दिया है आगाज़ और जॉश ब्रार के साथ सलामत अली साहब ने।
1: सुनो, दिमाग ना हिला हुआ है तुम्हारा।
2: दिमाग नहीं,

बागी फोर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। और आइए अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। फिल्म का नाम है धुरंधर द रेवेंज़।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजे हैं, अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं अलका सिंह। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं किसानों की आय दोगुनी करने हेतु ईनाम योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के विषय में। पहले बात करते हैं ईनाम योजना की। श्रोताओं, ईनाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसे 14 अप्रैल वर्ष 2016 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सभी कृषि मंडियों को आपस में ऑनलाइन जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार यानी वन नेशन वन मार्केट बनाना है। श्रोताओं, इसके जरिए किसान अपनी फसल का सही और पारदर्शी मूल्य पा सकते हैं। तो श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, यानी किसान घर बैठे या मंडी से मोबाइल ऐप व पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेच सकते हैं।

पारदर्शी बोली लगती है, यानी मंडियों में फसल की गुणवत्ता के आधार पर ऑनलाइन और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बोलियां लगाई जाती हैं। इसमें सीधा भुगतान होता है, अर्थात श्रोतों बिक्री का जो भी पैसा मिलता है वह सीधा किसान के बैंक खाते में आता है। क्रियान्वयन, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी SFAC द्वारा लागू किया गया है। तो श्रोता, अब आपको बता देते हैं ईनाम योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ के विषय में। इसके माध्यम से किसानों को बिचौलियों या दलालों से मुक्ति मिल जाती है। श्रोता, ईनाम योजना के माध्यम से किसान को देश की किसी भी एकीकृत मंडी से खरीदार की से सही कीमत मिल जाती है और बाजार के भाव की सही जानकारी मोबाइल पर तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो श्रोताओं, आपको बता देते हैं कि ईनाम पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा ईनाम की आधिकारिक वेबसाइट पर। होम पेज के ऊपरी हिस्से में दिख रहे रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। इसमें आपको पंजीकरण का प्रकार किसान या व्यापारी चुनना है और इसके बाद आपको अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और पूरा पता भरना होगा और फिर बैंक विवरण में अपनी बैंक पासबुक के अनुसार बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड बिल्कुल सही सही भरना होगा और सारे दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, उसे डालकर आप सबमिट कर दें। इस प्रकार आप ईनाम योजना से जुड़ सकते हैं और इस योजना के लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। श्रोताओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। श्रोताओं, इसका मुख्य उद्देश्य खेत से लेकर बाजार तक आधुनिक बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और खाद्य बर्बादी को रोकना है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के मुख्य उद्देश्यों के विषय में। इस योजना से कटाई के बाद होने वाले कृषि नुकसान और खाद्य बर्बादी को कम किया गया है। इसके द्वारा ही किसानों की आय को बढ़ावा मिला है और उनकी उपज का सही रिटर्न सुनिश्चित किया गया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। श्रोताओं, यह एक तरह की भोजन की आधुनिक मंडियां या औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पानी, बिजली, सड़क और गोदाम जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह सरकार देती है ताकि कई छोटी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों एक ही जगह लगाकर किसानों से सीधे फसल खरीद सके। श्रोताओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खेत से लेकर बाजार तक फसल सुनिश्चित रखने और उसकी कीमत बढ़ाने की एक सरकारी योजना है। सरकार इस योजना के जरिए किसानों की फसल को सड़ने से बचाती है और उसे नए नए प्रोडक्ट जैसे टमाटर से सॉस, आलू से चिप्स में बदलने वाली फैक्ट्रियों की मदद करती है जिससे किसानों की सब्जियों के दाम भी अधिक मिलते हैं और फसल भी बर्बाद नहीं होती। तो चलिए, अब आपको इसके आवेदन की प्रक्रिया भी बता देते हैं। श्रोताओं, चूंकि यह एक अम्ब्रेला स्कीम है यानी इसके अंदर अलग अलग घटक जैसे कोल्ड चैन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि आते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं इसमें चाहने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। इसमें आपको पहचान पत्र के लिए चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड। बिजनेस से जुड़े दस्तावेजों के लिए आपको चाहिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड या संस्था के दस्तावेज, जमीन के कागजात और यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो लोन के दस्तावेज। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको जाना होगा संपदा पोर्टल पर। इसमें आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन पर। वहां आपको भरना होगा अपना नाम, कंपनी का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको योजना का चयन करना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है और सबमिट कर देना है। श्रोताओं, इस प्रकार हमारे किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से जुड़ सकते हैं और अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए श्रोताओं, पेश है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले विवरण आज के शेष कार्यक्रमों का। आज रात 9:30 पर सुनिएगा पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत सुनेंगे आप आज शाम 7:32 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे सुनील मुखर्जी के गाए भजन।

कार्यक्रम विविधा में आज सुनिएगा अंजू बंसल की वार्ता, जिसका विषय रहेगा समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका। समय रहेगा आज शाम 6:45 पर। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज शाम 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे सुनील कुमार सिंह से सुवेंद्र सिंह की बातचीत।

जिसका विषय होगा गोबर की सॉलिड व लिक्विड खाद का महत्व। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर, जिसमें आज के क्रम होंगे बुझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार, और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी।

आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनेंगे आप आज रात 10:30 पर। आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। एक ही फिल्म से सुनेंगे आप आज रात 8:30 पर। गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8 बजे। और छाया गीत सुनेंगे आप आज शाम 6:55 पर। तो यदि जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब आपको जानकारी दे दें हमारे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात 10 बजे सुनिएगा राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण, प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी मथुरा की, और प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे आप कल शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

परी चर्चा ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। इसका विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृ शक्ति वंदन अधिनियम। इसके प्रतिभागी कलाकार होंगे डॉक्टर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और डॉक्टर मृदुला त्यागी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे एजाज अहमद। 7:32 पर सुगम संगीत में कल आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। कल शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। कल संध्या 5:15 पर युववाणी में आप सुनेंगे बुझो तो जाने कुछ खास है आज दिल से दिल तक कहानी के उस पार बूस्टर और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। और कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना और दुकानदारों व्यवसायिकों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के विषय में जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:15 हो रहे हैं। लीजिए श्रोताओं प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो आदाब, खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो पार्टनर मोहम्मद तौहीद।
1: नमस्कार, मैं हूँ सुपा जैदी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी।
0: क्या बात है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और अगस्त के महीने की एक और खूबसूरत शाम ढलती हुई, और एक नज़र डाल लेते हैं हमने आज आखिर इस महीने में क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले यूसुफा 15 अगस्त मनाया, शिव रात्रि मनाई, और खूब सारी मिठाई भी तो खाई ना।
1: मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी, क्या फिल्म है! काश ऐसे ही मैं भी डॉक्टर बन जाती।
0: अरे अरे, इसे फरीब कहते हैं, समझी?
1: हाँ, फैज का शेर है, दुनिया ने तेरी याद में

0: गाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के।
1: वाह वाह, क्या बात है। देखो यूसुफा, मुन्ना भाई ने क्या किया था, गलत चीज में दिमाग लगाकर धोखा खाया था। उसको फरेब कहते हैं, समझी यूसुफा जी।
0: ओ उप्स,
1: और पता है कल मेरे साथ क्या हुआ इस रोजगार के चक्कर में?
0: दिल फरेब।
1: सिर्फ फरेब, मैं इतने दिन से जॉब के लिए मेल पर मेल लिखे जा रहा हूं और अगला बंदा जवाब भी दे रहा है, इंटरव्यू सेट भी हो गया, और जब मैं इंटरव्यू की प्लेस पर पहुंचा तो वहां पर मुझे खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं मिला। पता है क्यों?
0: क्यों?
1: क्योंकि वो रिप्लाईज मुझे एक एआई की तरफ से आ रहे थे।
0: ओहो, ये तो बड़ा बुरा हो गया, इसे कह सकते हैं एक अच्छा खासा हादसा।
1: तभी तो आजकल पता नहीं चलता कि असली इंसान कौन है और एआई कौन, और इसीलिए जरूरी है साइबर सिक्योरिटी फॉर यूथ।
0: और इसके लिए आपको अपनी लोकेशन जो है वो किसी से शेयर नहीं करनी, पासवर्ड जो है वो ऐसे बंटवारे की तरह बांटने नहीं है, और अपनी आईडी किसी और के फोन में बिल्कुल भी लॉगिन नहीं करनी। अपना आप पर ध्यान रखने और ज्यादा ये शेयर का चक्कर थोड़ा कम कीजिए।
1: और फोटो भी, वरना वन क्लिक बन जाएगा बहुत ज्यादा रिस्की।
0: अब देखिए, बैंक में रखा हुआ कैश जितना इम्पोर्टेंट है, मेरा मतलब है आपके लिए कैश जितना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आप भी अपने आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी सुरक्षा भी आपकी ही जिम्मेदारी है।
1: हाँ, वरना काम कोई और कर जाएगा और नाम आपका हो जाएगा।
0: याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या हुआ था? वो तो आपको पता होगा क्योंकि आपने तो देखी है ना फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस।
1: तो जिन लोगों ने देखी है, आइए उन लोगों की एक छोटी सी नॉलेज अबाउट द मूवी चेक करते हैं और पूछते हैं हमारे आज का भूतो जाने का सवाल। हमारा सवाल है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था?
0: जवाब आपको देना है अभी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर, तो आप कमेंट सेक्शन भर दीजिए।
1: अपने सही जवाब से, गलत नहीं चाहिए, हमें सही जवाब चाहिए, और उम्मीद है कि आप सभी को जवाब पता होगा। तो जल्दी से दीजिए हमारे इस सवाल का सही जवाब, और तब तक आइए सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
4: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
0: ओए चुनमुन, रिजल्ट आया आज तुम्हारा, पता भी है कुछ?
1: जी पापा, आ गया है।
0: कैसा रहा रिजल्ट?
1: पापा रिजल्ट तो अच्छा था, मास्टर साहब कह रहे थे 1 साल और लग जाएगा तुम्हें इस क्लास में।
0: देख बेटा, चाहे साल लग जाए 2 या 3, मगर फेल नहीं होना है ना?
4: जी हाँ, मजा आ गया।
0: तो प्रोग्राम में आपको आ रहा होगा खूब मजा, है ना? तो चलिए इस मजे को और दुगना कर दूं, क्या कहते हैं आप? आपका जवाब है हाँ हाँ हाँ, दुगना कर ही दीजिए। तो सोचो, एक बड़ा सा मैदान है, वहां दो भाई खड़े हैं और वो लड़ रहे हैं, और फिर उनको एक दूसरे की आंखों में दिखती है मोहब्बत। अमूमन ये लव स्टोरी में दिखता है, लेकिन आज हमारी सेगमेंट जो है कहानी के उस पार, उसमें आपको एक ऐसी ही कहानी नजर आएगी जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब पर आधारित है, और जिसे पेश किया है मोहम्मद तौहीद ने। तो सुनिए हमारा सेगमेंट कहानी के उस पार, जो कि आपके दिल के उस पार जरूर जाएगा।

आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें दो भाई हैं। एक भाई बहुत समझदार है, बहुत गंभीर है, हर समय पढ़ाई की चिंता करता है, और दूसरा, अरे दूसरा तो बिल्कुल आपके जैसा है। उसे खेलना पसंद है, घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है। लेकिन कहानी में मज़ा तब आता है

0: जब ये दोनों भाई एक ही कमरे में रहते हैं। और जानते हो, इन दोनों में सिर्फ 5 साल का अंतर है, लेकिन बड़े भाई साहब को लगता है कि ये 5 साल उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा और समझदार बना देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था, वह अपने बड़े भाई के साथ पढ़ने के लिए घर से दूर रहता था। दोनों भाई एक हॉस्टल में रहते थे। अब हॉस्टल क्या होता है? हॉस्टल ऐसी जगह होती है जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए रहते हैं। वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका अपना कमरा या जगह होती है। सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, खाना खाना और फिर पढ़ाई करना। लेकिन हमारे छोटे भाई को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। उसे पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा आता था खेल कूद में। कभी मैदान में दौड़ना, कभी दोस्तों के साथ मस्ती करना और कभी आसमान में उड़ती पतंग को देखना। लेकिन उसके बड़े भाई साहब बिल्कुल अलग थे। वे छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और उन्हें लगता था कि छोटा भाई अभी बहुत स्टुपिड और नादान है, इसलिए वे उसे हमेशा समझाते रहते थे,
1: देखो पढ़ाई में मन लगाओ, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी।
0: छोटा भाई चुपचाप सिर हिला देता और कहता, जी भैया। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता था? वह सोचता था,
2: भैया पढ़ाई के अलावा कुछ सोचते भी हैं क्या?
0: बड़े भाई साहब किताब लेकर बैठते, इतिहास की किताब, अंग्रेजी की किताब, गणित की किताब और ना जाने कितनी किताबें। वे घंटों पढ़ते रहते। छोटा भाई भी किताब खोलकर उनके सामने बैठ जाता, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नजर खिड़की से बाहर चली जाती। बाहर बच्चे खेल रहे थे, कहीं गेंद खेली जा रही थी, कहीं कोई भाग रहा था और कभी कभी तो आसमान में रंग बिरंगी पतंगे भी दिखाई देती थी। छोटे भाई का मन करता था, बस एक बार बाहर चला जाऊं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती,
1: छोटे।
0: छोटा भाई तुरंत किताब देखने लगता और कहता,
2: जी भैया।
1: पढ़ रहे हो?
2: जी।
1: क्या पढ़ रहे हो?
0: छोटा भाई किताब को देखता, फिर बड़े भाई साहब को और धीरे से बोलता,
2: इतिहास।
0: बड़े भाई साहब कहते,
1: क्या याद किया?
0: छोटा भाई चुपचाप बस किताब को ही देखता रहता। और ऐसे ही दिन बीतते गए। परीक्षा का समय आ गया। बड़े भाई साहब ने खूब मेहनत की, छोटे भाई ने भी पढ़ाई करी, लेकिन खेलना उसने पूरी तरह नहीं छोड़ा। फिर परीक्षा हुई और कुछ दिन बाद नतीजा आया। छोटा भाई पास हो गया था, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब छोटे भाई को खुशी तो हुई, लेकिन वह डर भी गया। उसे लगा,
2: अब भैया मुझे डांटेंगे।
0: लेकिन बड़े भाई साहब ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा,
1: देखो तुम पास हो गए हो, लेकिन इस बात पर बहुत ज्यादा खुश मत होना।
0: छोटा भाई चुप रहा। बड़े भाई साहब ने उसे समझाया कि जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नाम नहीं है, आगे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स आएंगे और सिर्फ किताब पढ़ना ही काफी नहीं होगा, समझदारी भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। छोटा भाई सब सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके मन में पहली बार एक बात आई,
2: भैया मुझे इतना डांटते जरूर हैं, लेकिन शायद वो मेरा बुरा नहीं चाहते।
0: पहली परीक्षा में छोटा भाई पास हो गया, बड़े भाई साहब फेल हो गए। लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब बड़े भाई साहब ने तय कर लिया था, अगली बार वो और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और छोटे भाई को भी खूब पढ़ाएंगे। लेकिन क्या छोटा भाई पढ़ाई करेगा या फिर उसकी नज़र फिर से पतंगों पर चली जाएगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मुस्कुराना भी जरूरी है। सो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित हमारी ये आज की कहानी के उस पार सेगमेंट में कहानी बड़े भाई साहब, जिसका आपने सुना आज एपिसोड 1। और इसी तरह आप सुनते रहेंगे हमारे

है पेट्रोल की, तो E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का जिक्र तो जरूर होना चाहिए, है ना? तो यही तो होगा आज। नमस्कार, मैं हूँ सुपर जैदी और आप सुन रहे हैं सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है E20 एथेनॉल, जो आजकल हम सबकी जबान पर है बस जहन में नहीं है। अब फिलहाल के लिए E20 में से 20 एक साइड कर देते हैं और ई एक साइड कर देते हैं, है ना? तो ई यानी कि एथेनॉल एक तरह का ईंधन है जो पौधों से मिलने वाली चीजों से बनाया जा सकता है, लाइक गन्ना, मक्का। अब एथेनॉल बनता कैसे है, रेसिपी क्या है? गन्ना या मक्का जैसे चीजों से स्टार्च लिया जाता है, इसमें यीस्ट मिलाया जाता है, उसकी हेल्प से फर्मेंटेशन कराया जाता है और इससे एथेनॉल वाला लिक्विड बनकर तैयार हो जाता है, ठीक। फिर एथेनॉल को साफ और क्लीन किया जाता है और लास्ट में इसमें पेट्रोल मिला दिया जाता है, जहां पर एथेनॉल तो होता है 20% और पेट्रोल होता है 80%। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाता है, E20 एथेनॉल। तो आपका सवाल कि इसका गाड़ी पर क्या असर होगा, कहीं डब्बा तो गुल नहीं होने वाला हमारा? तो ऐसा है जी कि गाड़ी E20 पेट्रोल से चल सकती है, मगर इसका असर गाड़ी के मॉडल और उसके इंजन के टर्निंग पर निर्भर करता है। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, इसीलिए इंजन में नॉकिंग कम करने की चांसेस होते हैं और ये फुल मदद करता है। बकायदा टेस्ट होता है, गाड़ी खराब तो नहीं होगी और इससे कुछ होगा नहीं, ऐसे ही इसे थोप नहीं दिया जाता। ये सब ज्ञान हमें जब प्राप्त हुआ, जब उन्हें पढ़ा और हमें पता लगा कि E20 में पेट्रोल के हिसाब से थोड़ी सी ऊर्जा कम होती है। अब जब कदम उठाया तो फायदा भी जरूर होगा। फायदा नंबर एक, भारत को विदेश से कम ऑयल खरीदने में हेल्प मिलेगी। नंबर दो, किसानों को फायदा होगा क्योंकि उनका गन्ना, मक्का जैसी चीजें यूज की जाएंगी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा नुकसान भी होगा कि माइलेज थोड़ा सा कम हो सकता है। और जब गन्ना, मक्का जैसी चीजें यूज हो रही हैं, यानी कि जमीनी चीज यूज हो रही है, तो जमीन भी यूज होगी और उसके साथ साथ पानी भी यूज होगा, तो थोड़ा सा एनवायरमेंट के लिए भी फायदा कम ही है, है ना? अब मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए बारीकी से बात करते हैं फिर इस बात पर। जब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो वो कहलाता है हमारा फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक के पास लगा होता है फ्यूल पंप जो पेट्रोल को आगे भेजता है, यानी इंजन की तरफ। वहां लगा हुआ होता है फ्यूल फिल्टर। अब फ्यूल फिल्टर में क्या होता है, जो भी वेस्ट चीजें पेट्रोल में आई है वो उनको फिल्टर करता है, जो भी गंदगी आई है उसको वो वहीं रोक देता है। फिर आगे की कहानी ये है कि फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर को साफ फ्यूल मिलता है, साफ पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचता है, पेट्रोल को स्प्रे की तरह इंजन में भेजता है, यानी कि एक बड़ी सी धारा सी आ रही थी पेट्रोल की, उसे स्प्रे की तरह बना दिया, मतलब उसको ऐसा काम किया कि वो स्प्रे की तरह यूज हो रहा है हमारा जो पेट्रोल था। जब वो हवा के साथ मिलता है, यानी कि जब पेट्रोल और हवा एक साथ एक जगह आते हैं, तो चिंगारी बनती है और उससे क्या होता है, इंजन चलने लगता है। अब जैसे इंजन चलेगा फौरन से गैस बन जाएगी। अब जैसे गैस फैल जाती है, ये गैस जो है वो पिस्टन को ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाने लगती है, बस जी चल पड़ती है गाड़ी ड्राइवर की। कितना आसान था, तो समझिए आप 80% पेट्रोल 20% एथेनॉल मिलाया तो बना E20 एथेनॉल, और एथेनॉल बना गन्ने, पानी और खमीर से, है ना? तो फायदा बाहर के देशों से ज्यादा मांगे तांगी खत्म हो जाएगी। थोड़ा नुकसान ये है कि प्योर पेट्रोल की जगह जब हम E20 वाला पेट्रोल यूज करते हैं तो थोड़ा सा इंजन पर जो फ्यूल फिल्टर का काम है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और थोड़ा माइलेज का प्रॉब्लम आ जाता है। हालांकि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि चलना ही है, जिंदगी चलती ही जा रही। किशोर कुमार का गाना याद है? याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये तो था हमारा क्रैश कोर्स पैसा वसूल, जिसमें हमने आज बात की E20 एथेनॉल की, कि कैसे बनता है, क्या काम करता है, हमारे इंजन पर क्या असर होगा, एनवायरमेंट के लिए कैसा है, क्यों यूज किया गया है, किसी और चीज को क्यों यूज नहीं किया गया एथेनॉल की जगह, और हमने फिर इसे पेट्रोल में मिलाया तो हमारी गाड़ी कैसे चली। अगले क्रैश कोर्स में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही क्रैश कोर्स के साथ। तब तक आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम युववाणी।

0: सो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल, और उसके अंदर का हमारा आज का टॉपिक था वन ऑफ द मोस्ट वायरल थिंग जो इस वक्त चल रही है, E20 एथेनॉल। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको उसकी सामग्री हमारे यूसुफा ने आपको बहुत अच्छे से समझाई है कि उसको कैसे बन सकता है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप उसको घर पे भी बना सकते हैं है ना यूसुफा?
1: हाँ, ये तो काफी अच्छी बात कही तो तुमने। और एक और अच्छी बात मैं कह दूँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए हमारा फोन नंबर है 9457078288, और आज है सोमवार यानी आपका दिन, और आप करेंगे हमें कॉल क्योंकि सेगमेंट है गपशप अड्डा।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आइए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट गपशप अड्डा।
2: हेलो 9457078288,
3: कौन बोल रहा है?
4: ये है गपशप अड्डा,
3: ये है गपशप अड्डा।
0: सो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे पहले एक लिसनर हमसे कौन जुड़े हैं, तो आइए आप सबको भी उनसे मिलवाते हैं और करते हैं उनसे बातचीत।
1: हेलो,
5: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
5: बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
1: जी जी हम तो बहुत अच्छे हैं, और आपकी दुआ लग गई तो मेरे ख्याल से फिर तो और भी अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो ये जुकाम का असर है वो कम हो जाएगा।
5: कम हो जाएगा, सही है बहन जी।
1: जी जी,
5: है।
1: तो आप अपना शुभ नाम तो बताइए।
5: है, ग्राम है मेरा सनोतिया, जिला है गुना, और मध्य प्रदेश में पड़ता है गुना जिला, और वहां से मैं मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
1: जी मांगेलाल चंदेल जी, तो आपने हमारा प्रोग्राम जरूर सुना होगा जो कि हमने आज बात की कि साइबर सेफ्टी कितनी जरूरी है हमारे लिए, है ना?
5: हाँ, मैंने अभी क्या है, अभी रेडियो चालू किया है बहन जी, तो मैंने नहीं सुना।
1: ओहो, तो आपने मिस कर दिया। चलिए तो अब मैं सुना देती हूँ आपको कि हमें अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना है, और अपनी इंस्टाग्राम और कोई सी भी आईडी जो है वो किसी और के फोन में यूज नहीं करनी है।
5: नहीं का, तो बढ़िया बात कही है आपने बहन जी, सही है ये बात, बहुत
1: तो
5: बढ़िया।
1: इसी बात पर बता दीजिए कि आपको क्या गीत सुनना है।
5: तो इसी बात पे गीत, तो बहन जी सावन का महीना चल रहा है और सावन आने वाला है, नजदीकी है, तो फिल्म का नाम रहेगा बहू बेगम, और गाने के बोल रहेंगे पड़ गए झूले सावन रित आई दे।
1: तो आपने झूले डाले हैं अपने घर में?
5: हाँ बहन जी, गाँव में तो अभी भी झूले डालते हैं।
1: तो झूले में कौन कौन झूलता है आपके घर आकर के? भीड़ लगती है या फिर आप अकेले ही मजे लेते हैं?
5: देखो नहीं नहीं नहीं बहन जी, शाम के टाइम अपने आसपास के मोहल्ले वाले जो बहनें होती हैं ना, लड़कियां बच्ची, वो आती हैं, और वो ससुराल से आना चालू हो गया उनका, तो सावन तक आ जाएंगी वो झूलेंगी, और आ गई वो झूल रही हैं, मतलब शाम के टाइम सब इकट्ठी होती हैं और सावन के गीत गाती हैं, झूले पे झूलती हैं, अच्छा लगता। पुरानी रूढ़िवादी है बहन जी, गाँव में अब भी चल रही।
1: चलिए, जानकर बहुत खुशी हुई कि पुरानी रीति रिवाज हमने आज भी अपनी चरपाई से बांध के रखे, उन्हें कहीं फेंका नहीं है।
5: नहीं नहीं बहन जी, नहीं फेंका, नहीं।
1: तो
5: फेंका।
1: बस फिर आप सभी को सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये खूबसूरत
5: तो
1: संगीत।
5: बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: जी जी बिल्कुल।
5: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, और सतीश जी हैं फरुखाबाद से, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, मोहम्मद वक्कार फरीदी जी हैं, मकसूद हुसैन भाई साहब हैं, और विष्णु अग्रवाल जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए
0: तो आइए दोस्तों, फिर हमारे चंदेल जी के इन सभी मित्रों को सुनवाते हैं गीत, और आप सभी को भी सुनवाएंगे। और यूसुफा, जैसे हमारे लिसनर ने ये कहा कि इस फेस्टिव सीजन में और इस खूबसूरत महीने में उनके जो रिलेटिव्स और उनके जो बच्चे हैं वो घर पर आते हैं और झूले को झूलते हैं, और यूसुफा तुम्हें यही लगता है ना कि एक वन ऑफ द खूबसूरत मोमेंट होता है जब आपके अपने इस फेस्टिवल को जब साथ में सेलिब्रेट करने आते हैं, तो बहुत अच्छा ही लगता है, ऑफ कोर्स, है ना?
1: हाँ, ये सबसे खूबसूरत शाम होती है मेरे ख्याल से, और सबसे खूबसूरत बात होती है।
0: बिल्कुल, तो आइए फिर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये

0: सो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अगले लिसनर हमसे कौन जुड़े हैं।
1: हेलो
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
1: हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है मंडे एज यूजुअल। तो आपका शुभ नाम?
2: सेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
1: जी, तो आपने प्रोग्राम सुना है स्टार्टिंग से हमारा आज?
2: हाँ, मोबाइल ऐप पे हम कार्यक्रम सुनते हैं और अभी मांगीलाल जी का कॉल आया, उनसे बात हुई, वो भी सुन रहा था मैं।
1: जी, तो आपने ये भी जरूर सुना होगा फिर तो कि हम आज कुछ खास है। आज मैं किस बात पे बात कर रहे हैं? बात है साइबर सेफ्टी फॉर यूथ, यानी कि हमारे लिए साइबर सेफ्टी कितनी जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई अनोन कॉल वगैरह कुछ भी आया हो या आपका फोन हैक हो गया हो?
2: जी ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ, और लेकिन मैं जानता हूँ साइबर अपराध होते हैं, कई बार होते हैं। ऐसे अनलॉक कॉल आते हैं जिनको हमें रिसीव होने पर वो हमसे कुछ ओटीपी पूछते हैं, या फिर ऐसे बताते हैं कि आपका कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, या उनके किसी समस्या में पड़ा हुआ तो आपको इस नंबर पे इतना पेमेंट करना है। इस तरह से कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं ऐसे तौर का कभी शिकार नहीं हुआ हूँ। मैं जागरूक हूँ, समझदार हूँ और अपनी बात को वो बताता हूँ अपने दोस्तों को भी, और साइबर
1: क्या?
2: से जुड़ी हुई बातों को मैं जानता हूँ।
1: जी, तो आप अपने दोस्तों को क्या बताते हैं?
2: यही कि अगर हमें कोई कॉल आता है किसी भी अननोन नंबर से, तो उसे रिसीव करने के बाद में अगर वो ओटीपी पूछते हैं या ऐसे बोलते हैं कि आपका आधार लिंक करवाना है, किसी भी प्रकार का अगर कॉल आता है तो ओटीपी कभी भी ना बताया जाए। अगर
0: जी हाँ, बिल्कुल
2: सामने
0: सही
2: से
0: कहा
2: बैंक
1: आपने।
2: वाले भी
0: जी,
2: किसी भी बैंक से ब्रांच से कोई भी कॉल नहीं आता है ओटीपी के लिए, अगर आता भी है तो आपको सीधा ब्रांच में ही बुलाया जाता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बैंक

0: भी आपको ये कॉल कर कर नहीं कहेगा कि मैंने हमने आपको एक ओटीपी शेयर करा है वो हमें बता दीजिए, या फिर कभी आपको ये कॉल नहीं आएगा कि हेलो मैं प्रिया बात कर रही हूँ और आपने जीता है 1.5 करोड़ का इनाम और आपको पेमेंट लेने के लिए हमें इस QR पर 1,000 रुपये भेजने पड़ेंगे। तो ऐसा अगर आपके पास
1: जी
0: कभी कॉल आए या हमारे जितने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके पास अगर ऐसा कोई कॉल आए या फिर उनको कोई मैसेज में कोई लिंक आए कि इस लिंक को ओपन करें और पाएं अपनी लॉटरी का इनाम, तो दोस्तों वो बिल्कुल नहीं कर रहा है।
1: बिल्कुल, सावधान रहे, सतर्क रहे और जागरूक रहे।
0: बिल्कुल बेहतरीन कहा आपने। और इसी के साथ ये तो बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सुनवा दीजिएगा, इश्क वाला लव।
0: क्या बात है, इस ढलती खूबसूरत हसीन हसीन शाम में आपने क्या खूबसूरत गाना सुना है। तो एक बात तो बताइए, आप किसके लिए सुनवा रहे हैं ये गाना?
1: ये एक हमारे बहुत खास दोस्त है, उनके लिए डेडिकेट है, और बट हम उनका नाम कभी भी आकाशवाणी पे शेयर नहीं करते हैं।
0: ओह अच्छा, कोई बात नहीं, होती हैं कुछ पर्सनल
1: लेकिन
0: स्टोरीज
1: मैं है
0: भी।
1: ना, वो जब मुझे कॉल लगाता हूँ वो समझ जाते हैं, और हम एक दूसरे को जानते भी अच्छी तरह से हैं, और जब भी मैं कॉल मतलब गाना डेडिकेट करता हूँ ना तो बिल्कुल समझ जाते हैं।
0: अरे वाह, तो आइए फिर सुनवाते हैं आपके उस खास शख्स को ये गीत और पढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत की ओर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: जी, थैंक यू सो मच।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंद

0: पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया
5: यार। सुरेश, जिंदगी में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
3: ऐसा भी क्या कहती थी तेरी माँ?
4: जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता क्या कहती थी। जी हाँ, मजा आ गया।
5: बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट लिसनर हमसे कौन जुड़े हैं।
3: हेलो।
6: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
3: नमस्ते, कैसे हैं आप?
6: मैं बढ़िया हूँ। मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
3: जी सतीश जी, तो क्या कर रहे हैं आप अभी?
6: अभी तो मैं रेडियो सुन रहे थे, मांगी लाए लगी, प्रेम से सदिया लगी।
3: जी
6: तो फिर
3: जी,
6: मेरी कॉल है।
3: जी जी, तो फिर तो आपने ये भी समझ लिया कि साइबर सिक्योरिटी यूथ के लिए कितनी जरूरी है ना?
6: जी, मैं रेडियो खूब साफ नहीं पड़ जाता, मैं कॉल लगाने पर रहे थे इसलिए।
3: ओहो ओहो, आप कॉल लगा रहे थे, यानी आप इतने शिद्दत से कॉल लगा रहे थे और कॉल लग भी गई।
6: हाँ, कॉल लग भी गई। और मैं तो मैडम जी, मैं तो अपने जैसे अपने काम करता हूँ, जैसे चूड़ियाँ हैं और ये चीज, जैसे बरसात खाने वाला काम करता हूँ, बेचता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बरसात सावन के मौसम में मेरी चूड़ियाँ उड़ियाँ जो बेचता हूँ बरसात खाने वाले, तो बहुत बिक्री हो जाती है। और हरी हरी चूड़ियाँ पहनाता हूँ घर घर जाके, तो बहुत अच्छा लगता है।
3: वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी सी आपकी बात है। मतलब चूड़ी बेचने पर एक वो होता है ना कि आपकी, आप घर घर हरियाली देकर आ रहे हैं। जैसे मेहंदी वाले को बहुत कहते हैं ना कि उस पर वो रहमत होती है कि वो मेहंदी बिकती है, हाथों में रचती है, वैसे चूड़ी भी, हरी हरी चूड़ी जो है आप घर घर ट्रांसफर कर रही है। तो बड़ा अच्छा काम है आपका कि आप घर घर रौनक भेज के आ रहे हैं बाकायदा, कि लीजिए आपके दर पे ला के रख दिए।
6: ऐसा है, मैं तो चूड़ी बेचता हूँ, तो मैडम जी तो मेरा नाम है चूड़ी बाबा, चूड़ी बाबा। तो मैं घर में गांव में घुसता हूँ तो कहते हैं चूड़ी बाबा, चूड़ी बाबा आ गया, तो फिर मुझे पहनानी पड़ती है।
3: जैसे एक गाना भी है कि आया खेल खिलाने वाला आया रहे ना, ऐसे ही कुछ।
6: हाँ, हाँ,
3: तो वही फील आती है फिर आपको
6: है?
3: वही फील आती है, मतलब वही चीज महसूस करते हैं आप?
6: हाँ हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं, तो खेले महसूस करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो मेरा नाम भी होता है, अरे चूड़ी बाबा आ गए, चूड़ी बाबा आ गए, तो चूड़ी पहने, फिर कहते दिखाओ, फिर चूड़ी कछो पहनते नहीं, फिर भी कछो पहनानी पड़ती है, टूट नुकसान भी हो जाता है, तो सब कुछ झेलना पड़ता है। बताओ, और बिसात खाने में जैसे किंग कंगी है, लिपस्टिक है, बिंदी है, सारी चीजें बिसात खाने में, क्लेचर वगैरह सारी चीज रखते हैं।
3: तो कह सकते हैं कि आप हर घर के सबसे पसंदीदा इंसान है, क्योंकि ये सब तो ज्यादातर फीमेल्स को बहुत ज्यादा चीजें पसंद होती हैं, तो फिर तो वो आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार करती होंगी।
6: हाँ, बहुत इंतजार करती हैं। और जैसे फोन भी, जैसे भी उनने फोन किया तो उनने की चूड़ी बाबा वाले कब आओगे, तो हम तो दिन बता देते हैं, आज आज दिन को आएंगे।
3: क्या मजे हैं आपके जनाब। तो फिर आप बताइए कि आप सावन में के मौके पर कौन सा खूबसूरत गीत सुनना चाहते हैं?
6: तो एक गांव और रेडियो भी साथ रेडियो ऐसा है, रेडियो मैं कहीं भी चूड़ी बेचने जाता हूँ तो रेडियो बजता रहता है मेरा, रेडियो एक थैली में रख लेता हूँ, तो उसमें भी जैसे प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। और जैसे चूड़ी पहनान पे रेडियो नहीं चलाते हैं, लेकिन जाए कहीं भी फिर साइकिल जाते हैं बेचने, तो रास्ते में रेडियो बजा लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
3: खुशियाँ रख कर जेब में आप खुशियाँ बांटते हैं?
6: हाँ हाँ हाँ, मोबाइल पे नहीं, रेडियो खुद रहता।
3: जी जी, मोबाइल पर नहीं, लेकिन आपके थैले में तो होता है ना रेडियो?
6: हाँ हाँ, थैले में जो बड़ा रेडियो होता है, तीन सेल वाला, वही रेडियो है कंपनी का, फिलिप्स कंपनी का।
3: ओहो, क्या बात है। तो इसी बात पर बता दीजिए खूबसूरत सा कोई गीत।
6: आवाज गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम चांदनी, गाने वो लगी है सावन को फिर वो जड़ी है, क्यों झड़ी लगने वाली है। और रक्षाबंधन की आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, की आकाशवाणी 90 पर वर्ष पूरी कर चुकी है, तो आकाशवाणी 90 वर्ष की ढेर शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्यों रक्षाबंधन की लास्ट सोमवार है, लास्ट सोमवार तो नहीं है लेकिन जो है, और प्रोग्राम के लास्ट प्रोग्राम है वो रक्षाबंधन के लिए।
5: जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और

0: सुनते हैं आपकी ये पसंद का गीत।
1: दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ
0: जी
1: पहले
0: हाँ
1: आपके लिए
0: बिल्कुल
1: भी,
0: बिल्कुल
1: पहले सबसे पहले मैम के लिए, फिर आप सर आपके लिए, और उसके बाद आएंगे मांगीलाल चंदेल, हैंगे इनकी कॉल लगी था, और दिव्यांशु हैंगे बिजनौर, खेड़की बिजनौर से, बक्कार फरीदी हैं, और अनुप कुमार भट्टाचार्य जी हैं, और राकेश शिमला से हैं, बसंती लाल सूर्यवंशी हैं, और शबनम उबासी हैं, शमा परवीन हैं, और जितने तमाम सुनने वाले हैं, विजय पांडे जी और हैं बलरामपुर से हैं, और सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ सर जी।
0: ऑल राइट देन, तो आइए सुनवाते हैं इन सभी को ये खूबसूरत गीत।

0: तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट लिसनर हमसे कौन जुड़े हैं।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कैसी हैं आप?
2: तारीफ कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
1: वाह वाह, क्या बात है, आपने तो समा ही बांध दिया। तो फिर क्या नाम है आपका?
2: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालवाना का इंदौर से। अच्छे
1: जी, हसीना जी, तो आप कैसी हैं और क्या कर रही हैं अभी?
2: मैडम, और आप कैसे हो?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे
2: हाँ
1: कि
2: बहुत अच्छे।
1: सावन का महीना चल रहा है, तो आपने हरी चूड़ी पहनी है?
2: नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ मैडम।
1: अरे क्या बात कर दी आपने, तो चूड़ी पर शादी की मोहर थोड़ी होती है, तो कोई भी पहन सकता है।
2: हाँ मगर मैं चूड़ी पहनती नहीं, मैं तो कंगन पहनती हूँ।
1: ओहो, तो कंगन ही पहन लीजिए ना, ग्रीन कलर के।
2: हाँ, वो तो हमेशा पहनते रहते हैं मैडम।
1: तो बता दीजिए आप अपनी फरमाइश का गीत, कि क्या है वो गीत जो आप सुनना चाहती हैं आज।
2: हम हमारी पसंद के तो हमेशा ही सुनते हैं, मगर आपकी पसंद का गाना सुनेंगे आज।
1: चलिए, तो आज आपको हम अपनी पसंद का खूबसूरत सा गीत सुना देते हैं।
2: जी
1: आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया।

0: सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे आज के बूझो तो जाने एक सही जवाब देने वाले कौन हैं। और हमारा सवाल था, मुन्ना भाई MBBS फिल्म में सर्किट का किरदार किसने निभाया, और इसका सही जवाब है अरशद वारसी जी। हाँ दोस्तों, अरशद वारसी जी ने इस किरदार को निभाया था। और हमारे सवाल का सही जवाब देने वाले के वालों के नाम हैं ननक खन्ना, विष्णु टेलर, फनीश कुमार चंदन, बरेलाल प्रजापति, धर्मेंद्र छिपा, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, हेमकेश्वर साहू, सुदर्शन शाह, जॉन डी कैस्ट्रो, बी आई धाकर, जगदीश धाकर। और दोस्तों थोड़ा वक्त की तंगी होने के कारण हम सभी लिसनर्स के नाम तो शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने लेटर्स के जरिए। लेटर भेजने के लिए नोट करें हमारा पता, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 2467633।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, जहां पर आपको हमारी कहानियां, प्ले स्टोरीज, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप जाकर कमेंट सेक्शन भर दीजिए, लिख दीजिए कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। और इसी के साथ यानी कि यूसुफ अजैदी को
0: और मोहम्मद तौहीद को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।

0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेले नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे किसान बंधुओं का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया शुभेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। तो प्रमोद भाई।
1: हाँ झुमरू भैया। अरे भैया सब ठीक ठाक?
0: बिल्कुल भाई, देखो सब ठीक ठाक है, सब राजी खुशी हैं। भाई तुम यो बताओ कि खेती बाड़ी कैसी चल रही है?
1: यह खेती बाड़ी तो बहुत बढ़िया चल रही, देखो मौसम भी ठीक ठाक ही हो रहा, तो खेती तो ठीक है भैया।
0: भाई देखो मौसम की जहां तक बात है भाई, देखो बादल बदली वाला मौसम और भैया बरसात भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है।
1: जी जी जी
0: भाई, कहने का मतलब यू कि भाई चाहे धान की फसल हो चाहे भैया गन्ने की फसल हो, भैया बढ़िया तरीके से बढ़वार कर रही हैं।
1: सही कह रहे हो भैया, देखो इस टाइम पे फसलें तो बहुत बढ़िया खड़ी
0: हैं,
1: उनकी देखभाल करने का भी टाइम ठीक ठाक मिल रहा है भैया। तो देखो ये सारे काम तो हो ही रहे हैं, और भैया बस अपना घर गृहस्थी का काम अंदर बाहर का काम सारा ठीक ठाक चल रहा है भैया।
0: भाई देखो सारा काम ठीक ठाक चलता रहे वो भाई, यही तुम्हारी कोशिश रहे।
1: हाँ।
0: और भी बात यो की देखो भैया, हम अपनी फसलों की देखभाल कर नहीं रहे हैं।
1: हाँ
0: भाई कोई रोग कीट उनमें ना लग जा, भाई किसी तरीके कोई दिक्कत हमारी फसल में ना हो जा।
1: जी जी जी
0: तो भाई यो तो हम सारे काम देख रही है,
1: बिल्कुल
0: भैया हम अपने पशुओं की भी देखभाल करनी है।
1: और भैया वो तो बहुत जरूरी हो कर रहा है। देखो अगर हम पशुओं की देखभाल ठीक तरीके से कर लेंगे तो यूं समझो कि हमारी जो एक परेशानी रहे ना, एक टेंशन हमारे घूमती रहे कि यार कैसे होगा, वो खत्म हो जाएगी।
0: और भाई देखो हम पशुओं की देखभाल के साथ साथ भाई जो हमारी पशुशाला है भैया, उसका भी सही तरीके से रख रखाव करना है, सही तरीके से

0: शाला प्रबंधन करना।
1: हाँ भैया, अब यो बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में भाई साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूरी हुए करे।
0: भाई देखो, हमारी जो पशुशाला भैया वो स्वच्छ रहे, वो साफ रहे, वो और भाई उसमें नमी ना रहे, वो गिल्ली ना रहे, वो भाई
1: जी
0: इस बात
1: जी
0: का हमें ध्यान रखना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भैया हम ये देखते हैं कि भैया कहीं कहीं से भैया जो हमारे पशुशाला का फर्श है भैया, वो पशुओं के चाहे तो पेशाब की वजह से कह लो
1: हाँ
0: या भैया पानी की वजह से कह लो, भैया कई बार हम देखें भैया वो फर्श बैठ जा
1: हाँ हाँ
0: और पशुशाला के फर्श में भैया गड्ढे हो जा
1: जी।
0: और भैया उसमें पेशाब भी भर जा। या भैया कई बार आपने देखा होगा कि हम पशु को पानी पिला रहे हैं और उसने पानी पीते हुए भैया बाल्टी उधा दी
1: हाँ
0: और पानी जो गड्ढों भर गया।
1: तो देखो इससे भी गंदगी हुआ और
0: हाँ
1: भैया पशु के जो स्वास्थ्य है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, और भैया पशुओं के साथ साथ तुम्हारे स्वास्थ्य पे भी उस गंदगी का प्रभाव पड़ा है।
0: तो भाई देखो, हमें इस बात का ध्यान ये रखना कि भैया अगर हमारी जो पशुशाला है उसका फर्श अगर भैया बैठ गया है या ऊबड़ खाबड़ हो गया है या भाई उसमें गड्ढे हो गए हैं,
1: जी जी
0: तो भैया
1: जी
0: हमें उसकी मरम्मत करवानी है और अपना फर्श भैया हम जो है बाहर की तरफ को भैया ढालदार करना।
1: देखो भाई, कहने का मतलब यू है कि हमें सही तरीके से पशुशाला का यू ध्यान रखना है कि भाई उसमें साफ सफाई है कि नहीं है, उसमें कोई गड्ढा तो नहीं है,
0: बिल्कुल
1: उसमें कहीं पानी तो नहीं भर रहा, उसमें कोई गंदगी तो नहीं इकट्ठी हो रही। यो ध्यान रखना हमारा ही काम है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो पशुशाला साफ सुथरी रहेगी।
0: और भाई एक बात का ध्यान और भी रखना है
1: हाँ भैया
0: भाई, आपने देखा होगा कि भैया कुछ तो हमारी जो पशुशाला है जो उनकी छत है
1: जी
0: भैया कुछ की तो पक्की रहे हैं,
1: हाँ हाँ
0: कुछ हमारे बहन भाई ने भाई टीन डलवा रखी हैं और कुछ की भैया ऐसी है जो कि भैया अभी भी
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: जो पहले हमारे मकान रहते ना भैया
1: हाँ जी जी कच्ची।
0: कच्ची छत वाले, तो भैया कई बार हम देखा हो जैसे भाई टीन है या भैया जो कच्ची छत हमारी है
1: जी
0: मिट्टी वाली,
1: हाँ
0: तो वो उसमें पानी आने लगता
1: जी
0: जब ज्यादा बारिश होती लगातार वो चून लगा है और पानी आने लगता है। तो भैया हम इस बात का भी ध्यान रखना कि भैया जो हमारी छत है वो टपक तो नहीं रही है, उसमें पानी तो नहीं आ रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो भैया
1: बिल्कुल
0: हम कई बार ऊपर जाकर यानी कि छत पर जाकर जो देखना चाहिए कि भैया कहाँ से पानी आ रहा है, किस वजह से आ रहा है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: क्या काम करके भैया हम इस टपकते पानी को रोक सकते हैं।
1: देखो भाई यो काम तो बरसात से पहले हमारे सब भाइयों को कर लेना चाहिए, उन्होंने कर भी लिया होगा। भाई ये सारे ऐसे ऐसे काम हैं कि हमें समय की महत्ता को समझते हो भैया ये काम करने चाहिए।
0: और भैया देखो एक और जरूरी काम है जो कि भैया हम अपनी पशुशाला में करना है,
1: हाँ भैया
0: और भाई वो काम ये हो कि भाई जो हमारे पशुओं की चूर होती है भैया
1: जी।
0: नांद
1: हाँ
0: निदोली,
1: हाँ
0: जिसमें भैया हमारे जो पशु भैया वो अपना चारा खाते हैं,
1: जी
0: तो भैया आपने देखा होगा जब हम लगातार नांद मो निंदोली में या चूर हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसमें
1: हाँ
0: चारा
1: हाँ
0: डालते हैं,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: कुछ चारा भैया हमारा उसमें नीचे रह जाता है और वो इस तरीके से उसमें बैठ जाता है, उसकी तहसी लग
1: उसी
0: जा,
1: में जमा रह जाए
0: उसमें
1: वो
0: जम जा भैया और
1: जी।
0: उसमें फफूंद बन जा।
1: और भैया वो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ी खतरनाक बन जा। हम तो कहें भाई हमने तो अपने पशु को ताजा चारा खिलाया था,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमने तो भैया हर मिनरल का, हर उसके जो विटामिन्स हैं उनका सबका ध्यान रखा था, पर भैया हमने यो तो देखा ही ना कि जो पशुओं की चूर है वो साफ है या ना है, उससे तो पशु बीमार हो गए गई।
0: बिल्कुल। तो भैया हमें एक काम ये भी करना है कि 2-4 दिन बाद भैया अपनी जो चूर हमारे पशुओं की
1: जी जी
0: उसे
1: जी
0: खुरपे से या किसी धारदार चीज से खुरच तो हो भैया अच्छे तरीके से साफ कर दो,
1: हाँ
0: और जो भी उसमें से नीचे भैया चारा हमारा बचा होया है तो भैया उसे हम बाहर निकाल दें, साफ कर दें, तो भैया फफूंद नहीं लगने की है और बीमारी हमारे पशुओं को नहीं लगने की
1: और
0: है।
1: भैया उसके जो वो ऊपर की कन्नी सी होए करे ना हूं भी लग जाए भैया वो फफूंद जैसी, उसकी भी सफाई ढंग से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस
1: हाँ
0: बात का हमें ध्यान रखना है और ये छोटी छोटी बातें भैया, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और अपने पशुओं की जो हमारी पशुशाला है वो साफ और स्वच्छ रखनी
1: अरे
0: है।
1: भैया देखो इन सब बातों का ध्यान तुम्हारे सब पशुपालक भाई किसान भाई रखे ही हैं। भाई अब हमें एक ध्यान रखना।
0: कौन सा भैया?
1: अरे भैया ये कुछ संदेश है, इन्हें सुनो ले
0: तो
1: हैं।
0: ठीक है भैया, आओ सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: पुलिस
3: मिस सीमा,
2: जी
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस

0: बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
5: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
4: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
5: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
4: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
5: 0134123015
4: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
5: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
4: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
5: सजीव फोन इन कार्यक्रम
6: हेलो बासमती।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिए।
3: हाँ भैया, संदेश हमने सुन लिए। अरे एक बात बताओ भैया।
2: पूछो भैया।
3: हम भैया अपने पशुओं के स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं, फसलों की बात भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल
3: भैया, जब हम ठीक होंगे तभी तो हम अपने पशुओं का और भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान ठीक तरीके से रख पाएंगे।
2: भाई देखो, हम कुछ कुछ आपका इशारा समझ रहे हैं।
3: भैया क्या इशारा तुमने समझा, जरा बताओ तो सही।
2: भाई देखो, बात यह हो कि हम अपने कार्यक्रम में
3: हाँ
2: लगातार भैया जो विभिन्न प्रकार की भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं,
3: हाँ
2: भैया उनकी जानकारी अपने कार्यक्रम में देते रहते हैं।
3: बिल्कुल देते रहते हैं।
2: और भाई आज हम इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और बीमा सुरक्षा योजना के बारे में।
3: भैया देखो, ये जो दोनों योजनाएं हैं ये हमारी सरकार ने इसलिए चलाई हैं कि भैया हमारे देश के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो।
2: भाई देखो, इन दोनों ही योजनाओं की शुरुआत
3: हाँ हाँ हाँ
2: 9 मई 2015 को की गई थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और भारत सरकार का उद्देश्य था कि भैया हर वर्ग के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
3: देखो भैया, यो तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। पहले हम बात करो ले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में।
2: भाई देखो, ये बहुत ही बढ़िया योजना है भाई। इसमें किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर,
3: अच्छा
2: अगर हमने भैया यो जीवन ज्योति बीमा योजना ले लिया है तो भैया जिसने भी यो लिया है,
3: अच्छा
2: तो भाई जब भी देखो भैया जाना तो सबको,
3: बिल्कुल
2: है ना भैया, एक दिन तो सभी को शरीर हमारा छोड़ना ही है। तो भैया मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपए तक का बीमा कवर बीमित के परिवार को मिलेगा।
3: और भैया देखो, इसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम भी ना देना पड़ता भाई। इसमें तो 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल भाई देखो, 18 से लेकर 50 वर्ष तक का कोई भी नागरिक भाई इस योजना का लाभ उठा सकता है।
3: जी जी जी।
2: और भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए भैया बैंक या डाकघर जहां भी भैया हमारा खाता हो तो भैया वहां हम आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: देखो भैया, बहुत आसान है इस योजना का लाभ उठाना। और ऐसी योजना भैया प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है।
2: बिल्कुल। और भैया देखो, यो एक दुर्घटना बीमा योजना है, यानी कि अगर हम योजना ले लेते हैं
3: जी जी जी
2: और दुर्घटना के माध्यम से भैया अगर बीमित की मृत्यु होती है तो बीमित के परिवार को 2,00,000 रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा।
3: और देखो भैया, इस योजना का लाभ उठाने के लिए भाई उम्र की जहां तक बात है तो 18 से 70 साल का नागरिक इसमें शामिल हो सके।
2: और भाई वार्षिक प्रीमियम बहुत ही कम है भैया, केवल 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम के आधार पर हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और भाई बात योगी देखो भैया, इसमें भी बैंक या डाकघर में जहां भी हमारा खाता है हम वहां जो है इस योजना का आवेदन कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। और देखो भैया, वो कहा गया कि भैया अनहोनी
3: जी
2: भाई कह के नहीं आती।
3: सही कह रहे हो भैया, देखो कभी भी किसी भी समय भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और जहां तक भैया दुर्घटना से बचने की बात है तो हमें जो यातायात के नियम है उनका भी पालन करना चाहिए।

0: और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए।
1: और भाई इसकी एक खासियत ये होगी भैया, जो ये हमारा वार्षिक प्रीमियम हो
0: जी,
1: ये भैया बैंक खाते से स्वतः ही कट जाता है। और ये वार्षिक प्रीमियम है तो भैया कहने का मतलब ये कि साल में एक बार ही इसका प्रीमियम कटता है। और भैया इसकी एक और सुविधा,
0: अच्छा वो कौन सी भैया?
1: भाई वो ये है कि चाहे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो, अगर हम इच्छुक हैं और आयु के हिसाब से पात्र हैं
0: जी,
1: तो हम दोनों योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
0: वाह, तो भैया देखो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे सभी जो भैया सुनने वाले हैं वो बड़े समझदार हैं और भैया इन योजनाओं का लाभ उठा कर वो अपने भविष्य को और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सके हैं।
1: बिल्कुल, और देखो भैया ये तो बात हो गई है हमारी सामाजिक सुरक्षा की,
0: जी,
1: हमारे
0: जी,
1: परिवार की सुरक्षा की।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और देखो भैया अब थोड़ी सी बात हम करते हैं भैया अपनी खेती बाड़ी की, क्योंकि भैया खेती बाड़ी है तो ये सब कुछ है।
0: हाँ भैया देखो खेती बाड़ी में भी देखो हमें बहुत सारे काम करने पड़े कर रहे हैं। अब भाई खेती बाड़ी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें भैया खाद दवाई पानी इन सब की व्यवस्था टाइम पर करनी पड़े करे।
1: भाई देखो बात यह हो कि अपनी फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हम गोबर की कंपोस्ट खाद अपने खेतों में डालते हैं,
0: वो तो सबसे बढ़िया रहे।
1: वो सबसे बढ़िया खाद है।
0: हाँ।
1: और भाई उसे हम तैयार करते हैं कि भैया जो हमारी गोबर है उसे भैया हम एक स्थान पर ढेर लगाकर इकट्ठा करते रहते हैं।
0: जी जी
1: और जब वो गल सड़ जा
0: हाँ हाँ
1: तो भैया
0: हाँ।
1: उसे हम अपने खेत में डाल देते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और फिर मिट्टी में मिला दें तो भैया खाद हमारे खेत में चली जा। लेकिन भैया पारंपरिक रूप से भी तो हम तैयार करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक नई विधि और भी आई है।
0: वो कौन सी
1: भैया वो ये है कि गोबर की हमारे किसान भाई तरल और ठोस खाद तैयार कर सकते हैं।
0: अच्छा, लिक्विड और सॉलिड।
1: हाँ जी, लिक्विड
0: अच्छा
1: और सॉलिड यो खाद तैयार करके भैया हम जो है बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं, अच्छी आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा रहती है।
0: अब भैया झुमरू, हमने अभी पिछले दिनों तुम्हें एक बात करते हुए सुना था भैया, वो तुमने गोबर की लिक्विड और सॉलिड खाद के महत्व के बारे में भाई एक युवा किसान से बातचीत करी थी।
1: भाई सुनील कुमार सिंह से हमने बातचीत करी थी पिछले
0: हाँ,
1: दिनों,
0: वो बुलंदशहर के किसान।
1: भाई गुलाबटी बुलंदशहर के रहने वाले हैं वो।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: भाई तुम कहो तो ये बातचीत सुन ले मैं।
0: अरे भैया बिल्कुल सुनवाओ, हमने तो देखो थारी ये बात सुनी।
1: हाँ।
0: भाई हमारे भाई जो हैं किसान भाई बहन वो भी सुन लेंगे इस बात को।
1: तो भाई जब ऐसी बात हो तो आओ सुनते हैं ये बातचीत।
0: ठीक है भैया।
1: भाइयों हम खेती बाड़ी करते हैं और अपनी फसलों से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हम गोबर की कंपोस्ट खाद उसमें डालते हैं। तो किसान भाई देखिए, हम सामान्य तरीके से तो गोबर की खाद तैयार करते हैं, गोबर का हम ढेर लगा लेते हैं और फिर जब वो गल सड़कर कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है तो उस तरीके से हम अपने खेतों में ये गोबर की कंपोस्ट खाद डालते हैं। लेकिन इसको हम एक नया रूप देकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गोबर की हम नए तरीके से खाद तैयार कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के रूप में। और ऐसे ही एक युवा हैं सुनील कुमार सिंह जो हमारे साथ हैं, और आपका परिचय?
2: मेरा नाम सर सुनील कुमार सिंह है
1: जी,
2: और हमारे एफपीओ का नाम है गुलाबटी फ्रूट एंड वेजिटेबल, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है
1: जी। बिल्कुल, देखिए आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं तो सुनील कुमार जी हम जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं
2: जी,
1: और अक्सर एक युवा की इच्छा होती है कि मैं पढ़ूं लिखूं और कोई अच्छी सी नौकरी मुझे मिले, लेकिन आपने एक अलग रास्ता चुना है, क्या कारण है इसका?
2: सर देखिए एक्चुअली क्या है कि पढ़ लिखते तो सभी हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो है एक अच्छी नौकरी पाना सभी चाहते हैं, लेकिन उससे हट के कोई काम किया जाए जिसमें ऊपर से ऊपर लेवल तक पहुंचा जाए ताकि हम हमारे साथ साथ बाकी किसानों को उसका लाभ मिल सके। हमारे क्षेत्र में जितने भी किसान हैं या आसपास के क्षेत्र में जो भी किसान हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ उनका भी लाभ हो किसी तरह और उनकी आय दोगुनी की जाए। इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम उनके किसानों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।
1: तो देखिए आपने एफपीओ तैयार किया है और एफपीओ के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि गोबर की खाद तो हम सामान्य रूप से भी तैयार करते हैं कि हमने ढेर लगा दिया है उसका और जब वो 3-4 महीने बाद में गल सड़ जाती है उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप नए तरीके से खाद तैयार कर रहे हैं तो ये कितनी अलग है जो हमारी सामान्य खाद है उससे?
2: देखिए सर, जो हमारी सामान्य खाद होती है, जो किसान मतलब अपने खेत पे गोबर घेर के आ जाते हैं या किसी के घेर वगैरह होते हैं उनमें गोबर घेर के आ जाते हैं, तो हमारी खाद उससे काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरीके से है क्योंकि हमारी खाद दो रूप में पाई जाती है, एक लिक्विड रूप में और एक सॉलिड रूप में
1: जी।
2: हाँ, तो लिक्विड रूप में भी हम उसको ढककर तैयार करते हैं, जैसे बड़े बड़े टैंक होते हैं तो 2-4 महीने उसको उसमें रखा जाता है, जितने भी कीटाणु जीवाणु जीवाश्म है उसमें एज इट इज ऐसे के ऐसे रहते हैं। सामान्य खाद में क्या होता है कि मतलब कैसे खुले में छोड़ दी या तेज़ धूप आ गई उससे न्यूट्रिएंट्स मतलब धूप में उड़ गए या बारिश तेज आ गई

0: नाली में बहकर चले गए, तो उस चीज का जो है इसमें जो बनाई हुई हमारी खाद है उस चीज में उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है किसान को।
1: बिल्कुल, देखिए इस तरीके से हमें नए तरीके से ये खाद तैयार करनी है, क्योंकि खुले में जो हम खाद तैयार कर सकते हैं धूप में, उसके जो हमारे पोषक तत्व हैं वो उनकी क्षति होती रहती है, नुकसान होता रहता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप नए तरीके से खाद तैयार कर सकते हैं, जो आप खाद तैयार करते हैं जैसे कि सॉलिड के रूप में या लिक्विड के रूप में, तो ये तरीका आपको कैसे पता चला?
0: तरीका ये है कि हमारे पास जो है, जैसे हमारा 2021 से अब तक का FPO 2026 में है, तो काफ़ी कृषि वैज्ञानिक हमारे पास आते रहते हैं, उनसे भी जानकारी हमको मिलती रहती है और बाकी किसानों को भी जानकारी वो देते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ वैज्ञानिक थे जो ऐसे मतलब उन्होंने जानकारी दी कि खाद को इस तरह से तैयार किया जाए तो उसके पोषक तत्व ज़्यादा के ज़्यादा मात्रा में उस खाद में मौजूद रहें।
1: तो देखिए, आपको जानकारी मिली है FPO के माध्यम से कि किस तरीके से हम ये खाद तैयार कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में, ठोस के रूप में, जो तरल है उसके रूप में। अब बात ये आती है कि जो नया तरीका आपने ढूंढा है कि हम उस तरीके से खाद अगर तैयार करते हैं तो उसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं, पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होता है, तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि किस तरीके से हम ये नए तरीके से गोबर की खाद तैयार कर सकते हैं।
0: देखिए, किसानों को देखे जाए तो पहली बात तो किसान अपने यहाँ भी इसको तैयार कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो गोबर गैस, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गोबर गैस हुआ करते थे, अभी भी काफ़ी जगह मौजूद है, गोबर गैस में गोबर बिल्कुल एज इट इज टैंक से ढका रहता है, तो उसके पोषक तत्व ज़्यादातर मात्रा में उसी में मौजूद होते हैं, वो बारिश में बहते भी नहीं है और धूप में ज़्यादा उड़ते भी नहीं है। अगर मतलब ज़्यादातर खेत क्षेत्र में छोटे किसान होते हैं, छोटे से मेरा मतलब है किसी के पास 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे धरती है, तो वो जो है इतना बड़ा खर्चा करने के लायक बहुत ही मुश्किल हो जाता है
1: जी।
0: तो हम चाहते हैं कि वो लोग FPO से जुड़े हैं, FPO इस प्रोसेस को खुद तैयार करता है और किसानों को लाभ देता है।
1: बिल्कुल, देखिए FPO से हमारे किसान भाई जुड़ रहे हैं, ये एक अलग हमारा विषय है, लेकिन यहाँ पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप खाद तैयार करते हैं उसकी क्या विधि है, कैसे आप तैयार करते हैं, थोड़ा बताइए किसान भाइयों को।
0: देखिए, जो कूड़ा कचरा गाँवों से निकल के जाता है, गोबर सड़ा हुआ जाता है, तो उसके बहुत बड़े टैंक में उसको डाला जाता है और फिर उसको मतलब जो है काफ़ी समय तक छोड़ दिया जाता है, कई महीने तक, तो उसके बाद में वो सड़ गल के बिल्कुल ऐसे लिक्विड के रूप में पाइप से निकलता रहता है और सॉलिड के रूप में एज ए टैंक में रह जाता है।
1: अच्छा
0: जी, और जो लिक्विड के रूप में निकलता है उसकी पैकिंग हम लोग बनाते हैं, उसमें 1 लीटर की पैकिंग भी है, 2 लीटर की पैकिंग भी है, और सॉलिड खाद की अगर बात करें तो उसमें 50 किलो से लेके 2 ही पैकिंग उसमें मिलेंगी, हमारे पास में 30 किलो की पैकिंग है और 50 किलो की पैकिंग है।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपने बताया कि 30 किलो की पैकिंग है और 50 किलो की पैकिंग है, तो अब बात यह आती है कि जो हमारे किसान में खेती कर रहे हैं और छोटे स्तर पर खेती करते हैं, तो हम उसमें कितनी मात्रा 1 बीघे में डालेंगे, ये बताइए आप।
0: जी, मैं किसानों को बता देता हूँ। देखिए, जो आम किसान जो है, जो आम खाद तैयार करते हैं किसान अपने खेत में गोबर की
1: जी,
0: जो खुले में डाल देते हैं, वो 1 बीघे में कम से कम 1 ट्रॉली ज़्यादातर डालते हैं
1: जी जी,
0: तो हमारी जो है आधी ट्रॉली उसी में काम करेगी, क्योंकि पोषक तत्व उसमें पूरी मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा खाद भी मतलब वेस्ट नहीं होगी, तो इसलिए आधी ट्रॉली 1 बीघे में डाली जाती है।
1: अच्छा, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा खुला खाद होता है
0: जी,
1: वो लगभग 20 से 25 कुंटल हम 1 बीघे में इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो अगर हम ये वाला खाद इस्तेमाल करते हैं तो कितना इस्तेमाल करेंगे?
0: तो 15 कुंटल आप इसमें 1 बीघे में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी जी जी
0: जी।
1: तो आप ये बताइए कि जैसे आपका 50 किलो का जो आपका पैकिंग है, जो आपका कट्टा है, उसकी कीमत क्या है?
0: ये 200 रुपये का हमने उसकी स्टार्टिंग में कीमत रखी है, और अभी हम इसको कीमत को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, तो जिस तरह से किसानों को उस चीज़ का लाभ दिया जा सकता है, तो कम रेट में ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा पोषक तत्वों के रूप में उनको खाद ये दिया जा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छी बात है, आप इस तरीके से अपना रोज़गार स्थापित कर रहे हैं और जो हमारे युवा हैं वो भी इस ओर अग्रसर हो सकते हैं और ये नए तरीके से हम खाद तैयार कर सकते हैं लिक्विड के रूप में, और जो तरल है, ठोस है, उसके रूप में हम ये गोबर की खाद तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे छोटे घर पर जैसे कि हम फूल पत्तियाँ लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं
0: जी,
1: हमारी वाटिकाएँ होती हैं, गृह वाटिकाएँ होती हैं, उसमें भी हमें इस्तेमाल करना होता है गोबर की खाद, ये तो क्या छोटे पैकिंग में भी आप इसको तैयार करते हैं?
0: देखिए, छोटे पैकिंग में तो अभी नहीं है, लेकिन स्पेशली जो लिक्विड खाद हमने तैयार किया हुआ है 1 लीटर का 2 लीटर का, वो स्पेशली इसी लिए तैयार किया था, क्योंकि गाँवों में ज़्यादातर देख लेते भाई घिया की बेल अगर किसी बिटोड़े पे बो दी या किसी अपने घेर में बो दी, तो उस चीज़ के लिक्विड खाद तैयार किया गया है, वो उसको उस चीज़ को अपने गमले में भी लगा सकते हैं या किसी बेल में भी दे सकते हैं, करेले की बेल हुई, लौकी

0: सफाई नहीं होती है, केवल जो पॉलीथीन होती है पिन्नी वगैरह उनको अलग कर लिया जाता है, बाकी एज इट इज कूड़ा कचरा उसमें डाल दिया जाता है, वो सड़ गल के जो है बिल्कुल ऐसे खाद के रूप में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है।
1: अच्छा, मान लीजिए उसमें कोई और ठोस हमारा ठोस कचरा है जैसे प्लास्टिक के टुकड़े हैं या कोई दूसरा ईंट पत्थर अगर जैसे आ जाते हैं तो उसको कैसे अलग करते हैं?
0: देखिए, जब हम जो है कूड़ा कचरा गाँव से इकट्ठा करके लेके आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में, जो हमारी लेबर होती है तो हम उसको पहले ही बोल देते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है जैसे पॉलीथीन बैग हुआ या प्लास्टिक हुआ या कोई ठोस चीज़ हुई तो उसको वो आसानी से अलग कर लेते हैं भरते समय।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इस तरीके से जो हमारा कूड़ा कचरा होता है इसके माध्यम से हमारी कंपोस्ट खाद तैयार होती है और उसका खेती बाड़ी में या जो हमारी बागवानी है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो संयंत्र लगता है कूड़ा करकट को खाद बनाने का, इसमें देखिए काफ़ी लागत भी आती है, तो कितनी लागत आ जाती है?
0: ये देखिए, हमारा प्लांट है जो जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये कम से कम 14 करोड़ रुपए का प्लांट लगा हुआ है।
1: अच्छा,
0: और आप डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में लोहगले में इसका बुलंद बायोगैस के नाम से बहुत बड़ा प्लांट है जिसमें हम लोग ये दो चीज़ की खाद तैयार करते हैं।
1: तो देखिए, 14 करोड़ अगर हम ये धनराशि, तो बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी धनराशि है, और एक किसान के लिए, एक युवा के लिए तो देखिए बहुत ही नामुमकिन है। तो किस तरीके से आपने इसकी व्यवस्था की है इन पैसों की?
0: ये है कि जो AIF के थ्रू जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको देखा जाता है किस तरह से ज़्यादातर किसानों को लाभ दिया जाता है। उसमें जो है CNG गैस का भी प्रावधान रखा गया तैयार करने का गोबर के साथ साथ में, तो उसमें खाद भी और गैस भी CNG भी तैयार होती रहती हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट की कीमत काफ़ी इसलिए महंगी भी है कि हाँ भाई, जो गाड़ियों में चलने वाली CNG उसमें उसको तैयार किया जाता है।
1: तो देखिए, आपने जो ये प्रोजेक्ट लगाया है, आपने जो संयंत्र लगाया है जिसमें खाद तैयार होती है, आपने बताया कि CNG भी तैयार होती है, तो क्या इस पर कुछ अनुदान वगैरह भी मिलता है?
0: हाँ, अनुदान है उसमें, लेकिन जो है इतना भी जो है अनुदान ये मुझे क्लियरली पता नहीं है कि कितना अनुदान है। बाकी हमारा स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो धीरे धीरे हम किसानों को इसका लाभ देते रहेंगे और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ेंगे तो और ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा।
1: अच्छा, किसी गांव के युवा अगर इकट्ठे होकर FPO अपना तैयार करते हैं, संगठन अपना तैयार करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा हम भी गोबर की खाद बनाने का प्लांट तैयार करें, कूड़े कचरे से खाद बनाने का ये संयंत्र स्थापित करें, तो इसकी क्या विधि है, कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं?
0: देखिए, इसका एक प्रोसीजर है जिसके लिए बैंक से लोन भी लिया जा सकता है और वो लोन इंडिविजुअल किसी किसान को नहीं मिलता है। जो संस्थाएँ होती हैं या जैसे FPO हुआ, जो कमेटी वगैरह होती हैं, वो उस कमेटी के थ्रू उनको लोन मिल जाता है और उस लोन के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो देखिए, हमें संगठित होना है, FPO तैयार करना है और फिर FPO के माध्यम से ही ये जो हमारा संयंत्र है, जो कूड़ा करकट को खाद में बदलने का संयंत्र है, इसको हम स्थापित कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से युवाओं को गाँव में ही रोज़गार इससे मिल सकता है, कितना रोज़गार मिल सकता है?
0: देखिए, FPO बने ही इसलिए हैं कि जो हमारे लोकल किसान हैं या युवा हैं उनको बहुत से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें एक ही स्कीम्स नहीं है, FPO में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे अपने घर पे मशरूम तैयार करना या किसी कच्चे फल को पकाना या फिर FPO से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे प्रावधान FPO में रखे गए हैं।
1: बिल्कुल, तो देखिए, हम आपसे एक बार फिर ये पूछना चाहेंगे कि जो ये इस तरीके से हम खाद तैयार करते हैं, जो हमारा गोबर की खाद तैयार होती है या कूड़े कचरे से खाद तैयार होती है, ये कितनी हमारी खेतीबाड़ी के लिए कारगर है, कितनी ये हमारी कामयाब है?
0: देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो साधारण आम खाद होती है उससे कम से कम, ये मान लिए अगर आम साधारण खाद में 50% पोषक तत्व हैं तो उसमें 90% पोषक तत्व आपको सभी रूप में मिल जाएंगे।
1: तो किसान भाइयों, 90% तक ये पोषक तत्व इस खाद में विद्यमान रहते हैं और ये काफ़ी उपयोगी है हमारी खेतीबाड़ी के लिए, हमारी फसलों के लिए। तो इस तरीके से हम खाद तैयार कर सकते हैं और एक रोज़गार अपना तैयार कर सकते हैं। तो गांव के युवाओं को आप चलते चलते क्या राय मशवरा आप देना चाहेंगे, किस तरीके से वे इसको स्थापित करें, कैसे अपना रोज़गार गाँव में ही चला सकते हैं?
0: देखिए, मैं गाँव के युवाओं के साथ साथ जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको ये सलाह देना चाहते हैं कि आप कुछ भी काम कीजिए, आप पढ़िए लिखिए, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप पढ़ाई बंद कीजिए, इसी में लग जाइए। पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी देखिए कि हमारे क्षेत्र में कौन से नए काम हो रहे हैं, क्या क्या इनकम कहाँ से स्रोत उसका मिल सकता है हमें, तो FPO से जुड़ के युवा भाई उसको एक छोटे से छोटे बिजनेस के रूप में लगा सकते हैं जिससे उनको लाभ मिल सके।
1: तो इस तरीके से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो

0: ग्रुपों में रहकर ही ये संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और हम कूड़े कचरे से या जो हमारा गोबर है उससे हम लिक्विड और ठोस मात्रा में हम ये खाद तैयार कर सकते हैं, गोबर की खाद हम तैयार कर सकते हैं, इससे एक अच्छी कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं जो कि हमारी खेतीबाड़ी के लिए बहुत उपयोगी होती है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हमारे रहते हैं और जो खुले में हम गोबर का ढेर लगाकर कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो उसकी क्षति हो जाती है, धूप में वो उड़ जाते हैं, तो ये नुकसान भी हमारा नहीं होगा। तो सुनील कुमार जी, आपने हमसे बातचीत की और गोबर के नई विधि से ये ठोस और तरल खाद बनाने के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: गोबर की लिक्विड व सॉलिड खाद का महत्व, देखो भैया इस बारे में तो तुमने सुनील कुमार सिंह से बहुत अच्छी बातचीत करी और अब हम ये समझ गए कि लिक्विड और सॉलिड खाद गोबर की हम कैसे तैयार कर सकें और ये हुआ है क्या।
0: भाई देखो, इस तरीके से हम यो सॉलिड और लिक्विड भैया गोबर की खाद तैयार करनी है
2: जी।
0: और साथ ही भाई इन्होंने ये भी बताया कि भाई जो कूड़ा करकट गांव में या भैया शहर में इकट्ठा होता है तो भाई उसे अलग करके जो प्लास्टिक की चीज होती है भैया हम जो है कूड़ा करकट से भी कंपोस्ट तैयार करते हैं और वो भी हमारी खेती बाड़ी में काम आती है भाई।
2: तो देखो ये तो बहुत काम की बात बताइए भाई, इसके लिए तो देखो हमें कुछ बस ये समझो कि एक ट्रेनिंग सी लेनी पड़ेगी कि भैया इसको हम कैसे तैयार कर सकें और हम तैयार करके इसका लाभ उठा सकें।
0: और भाई ट्रेनिंग लेने से पहले भैया हमें एक एफपीओ अपना तैयार करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल, ये तो जरूर,
0: यानी कि एक संगठन हमें बनाना होगा।
2: हाँ।
0: और जब हम संगठित हो जाएंगे तो भैया फिर हम अपना एफपीओ तैयार करके यो काम हम भैया शुरू कर सके।
2: तो देखो भैया यो काम करके हमारे किसान भैया आमदनी बढ़ाएंगे, अपनी खुशियों को बढ़ाएंगे और भैया देखो इस टाइम तो किसान भाई यूं कह रहे हैं कि भैया हमारी खुशी बढ़ाने के लिए तो एक लोकगीत या रागनी होनी चाहिए।
0: भाई देखो जहां तक लोकगीत की बात है, रागनी की बात है भैया, तो देखो भाई आज सावन का आखिरी सोमवार है।
2: हाँ,
0: है ना भाई?
2: भैया यू बात तो ठीक कह रहे तुम।
0: और भैया देखो सावन का महीना चल रहा है, भोले की धूम है। तो भाई आओ सुनते हैं यो रागनी।
2: ठीक है भैया।

0: आगे आगे भोला चाल्या पीछे
1: पार्वती।
0: तो भाइयों ने रागनी सुनी कुलदीप आर्य वे साथी से, और वह किस्सा था शिव पार्वती का।
1: और भैया देखो, तुमने इतनी बढ़िया रागनी सुनाई है, हमारे सब सुनने वालों को बहुत पसंद आई होगी, हमें तो बड़ी पसंद आई भैया।
0: तो भाई देखो, रागनी पसंद आ गई है भैया, और अब बारी आ गई है मौसम की चिट्ठी की। भाई
1: भैया मौसम की चिट्ठी है क्या? क्या लिखा भैया, जल्दी से पढ़ो।
0: भाई मौसम की चिट्ठी में मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भैया यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है
1: जी
0: कि भैया अगले दो दिन यानी कि भैया 26 अगस्त 2026 तक के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि भैया बादल बदली छाए रहने और भैया हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है।
1: अच्छा देखो भैया, हल्की बारिश तो हो ही रही है, और भैया हम तो यूं ही कहेंगे किसान भाइयों से कि भैया अपनी फसल का ध्यान रखें, और भाई अगर कहीं पानी जमा हो रहा है फसलों में तो भैया नांधे काट कर रखें, जल भराव बिल्कुल ना होने दें।
0: और भाई जो किसान भाई अपनी फसलों की निगरानी करते रहे और कोई रोग या बीमारी लगती है तो भैया उसमें हमारे किसान भाई उसका प्रबंधन करें।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है भैया। देखो समय के हिसाब से हमें

0: सारे काम करने चाहिए, मौसम का ध्यान रखना चाहिए, और भाई घर से भी बाहर निकलें तो भाई अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और जंगल बाहर को अगर जा रहे हैं तो भैया हम यो भी ध्यान रखें कि कोई कीड़ा कांटा ना हो, उसके लिए भी हमें भैया ध्यान रखना चाहिए।
1: और भाई ध्यान हमें इस बात का भी रखना कि भैया देखो हमारा जो कार्यक्रम हमारे भाई सुनते हैं और उन्हें कैसा लगता है,
0: जी
1: तो भाई चिट्ठी भी हमारे बहन भाइयों को लिखनी है। और भाई चिट्ठी लिखने के लिए भैया आप पता बता दो जल्दी से।
0: बिल्कुल भैया, देखो चिट्ठी तो लिखनी चाहिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467।
1: तो भाई इस पते पर हमें थारी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और भाई किसी वजह से भैया आप चिट्ठी ना लिख सको तो भाई इसकी भी व्यवस्था। और हमारे किसान भाई जो हमारा मोबाइल का नंबर है 94 57 07 82 88,
0: जी
1: भाई इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं।
0: हाँ, तो देखो भैया ये दोनों काम किसान भाई जरूर करें, हमारे पास में मैसेज भी भेजें, और साथ ही साथ भैया देखो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: भैया हमारा आकाशवाणी नजीबाबाद का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है, और भैया इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, तो आकाशवाणी नजीबाबाद को फॉलो करके हमसे जुड़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भैया हमारे जो ये सोशल मीडिया पे भैया चैनल हैं, जो हमारी आइडिया इन्हें भैया वो फॉलो करें, और भैया हमारे जो मुख्य मुख्य कार्यक्रम भैया उन्हें वहाँ पे सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखो हमें तो भैया अपने सभी किसान भाई और बहनों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, उन्हें महाराज का कार्यक्रम कैसा लगा वो हमें जरूर लिख के बताएंगे, ऐसी तो हमें उम्मीद है भाई।
1: और भैया देखो अब हमारे कार्यक्रम का समय धीरे धीरे संपन्न होने वाला है,
0: हाँ भैया,
1: तो भैया आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं और दोनों भैया अब बहन भाइयों से कर लेते हैं राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी हमारे एक किसान भाई बहन सुन रहे थे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है विविधा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अंजू बंसल की वार्ता, जिसका विषय है समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका।
1: औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। साहित्य समाज की अन्यतम विभूति है और समाज है उसका महान संरक्षक। समाज व्यक्तियों से बना है और साहित्य उन्हीं व्यक्तियों की श्रेष्ठ सृष्टि है। आज जैसा कि हम समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले साहित्य शब्द सहित शब्द से भाव अर्थ में व्युत्पन्न हुआ है। सहित का अर्थ है हित से युक्त होना। प्रश्न उठता है कि साहित्य में किसका हित या कल्याण भावना निहित है। उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, समाज की और उस व्यक्ति की जिससे समाज बनता है। महाकवि रविंद्र ने अपने साहित्य शीर्षक ग्रंथ में साहित्य का अर्थ मनुष्य से मिलाने वाला, उनमें परस्पर सद्भाव उत्पन्न करने वाला वांग्मय माना है। अपनी इसी विशेषता के कारण साहित्य समाज की कल्याण विधायनी शक्ति माना जाता है। साहित्य जहाँ युग का प्रतिबिंब होता है, वहीं वह लड़खड़ाते हुए युग को पुनर्जीवन प्रदान करने वाला माना जाता है। जब जब समाज में विभिन्न विकृतियों के कारण कुंठित होने लगता है, उसकी चेतना निष्क्रिय होने लगती है, उसकी आत्मा कलुषित हो उठती है, तब तब साहित्य ही उसकी नई चेतना और नया जीवन प्रदान करता है, साथ ही वह उसका कायाकल्प कर देता है। इसलिए साहित्य समाज की जीवनदायिनी शक्ति भी है। समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका पर विचार करें तो समाज राष्ट्र का शरीर है, तो साहित्य उसकी आत्मा है। तब आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं। अतः निर्माण और नव निर्माण में साहित्य की भूमिका स्वतः सिद्ध हो रही है। साहित्य समाज का दर्पण है। यह सिद्धांत शाश्वत और परम सत्य है। इस सत्य की उपेक्षा आज तक कोई भी विद्वान नहीं कर सका। साहित्य समाज का निष्क्रिय दर्पण मात्र नहीं है, वह उसके नव निर्माण में जीवन शक्ति है, साथ ही उसकी प्राणदायिनी चेतना भी। गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब मैं अवतार लेकर पाप का विनाश करके मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। कुछ ऐसी बात साहित्य के संबंध में भी कही जा सकती है। जब जब समाज में कुरीतियों कुविचारों का बोलबाला होने लगता है,

तब तब साहित्य समाज में नवयुग का निर्माण करता है और समाज का परिष्करण करता है, व्यक्ति में पूत चेतना भरता है। तुलसी साहित्य में हमें कलयुग के विनाश के लिए राम राज्य की स्थापना मिलती है। पृथ्वीराज रासो और आलयखंड में निष्क्रिय होती हुई क्षत्रिय जाति के लिए नई प्रेरणा पाई जाती है। बिहारी के श्रृंगार में जो विराग भावना मिली हुई है, वह रीति युग में जो घुटन पैदा हो गई थी उसका संदेश दे रही थी। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही आगे चलकर साहित्य में भी हम देखते हैं कि रूसो और वोल्टेयर के ग्रंथों ने ही फ्रांस राज्य की क्रांति करवाई थी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने पूंजीवाद का मूलोच्छेदन कर दिया। चाहे कोई देश हो, कोई राष्ट्र हो, उसका साहित्य उसके समाज से कभी अलग नहीं हो सकता। वह एक ओर उस समाज का प्रतिबिंब होता है और दूसरी ओर उस समाज का संरक्षक, निर्माता और प्राण प्रदाता भी होता है। साहित्य में कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिसके काव्य में किसी न किसी रूप में समाज के नव निर्माण की बात ना कही गई हो। नई कविता को देखें तो समाज की समस्याओं को उठाया गया है। इन कविताओं में दलित मानवता के प्रति असीम संवेदना भाव। आज का नया कवि नव निर्माण की मांग करता हुआ शपथ देता है। सुनते हैं, हे शपथ तुम्हें करुणा कर की, हे शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो इसने भीख की मांग मांग मर गया कि उस भिकमंगे की। और दूसरी ओर देखें तो नेताओं पर कटाक्ष करती हुई ये कविता कैसे समाज बोध का दृश्यांकन कर रही है। होली की बधाई स्वीकार करें नेता, मध्यावधि चुनाव संग्राम के विजेता, बैंक बैलेंस बढ़े स्वर्ग दोल झूले, वादे आश्वासन जो दिए गए भूले, भाषण के दौर में विदेशी के दौरे, देश जाए भाड़ में आप फले फूले। ऐसी सच्चाई समाज के नव निर्माण में केवल साहित्य ही कर सकता है। अतः साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है। यह समाज का वह परिधान है जो समाज के सुख दुख हर्ष विषाद आकर्षण विकर्षण के ताने बाने से बुना जाता है। इसमें विशाल मानव जाति की आत्मा का स्पंदन ध्वनित होता है। वह जीवन की व्याख्या करता है। इसी से उसमें जीवन देने की शक्ति आती है। वह मानव को उसके जीवन को लेकर ही जीवित है। इसीलिए वह पूर्णतः मानव केंद्रित है और मानव ही समाज का निर्माण करता है। साहित्य उसी मानव की अनुभूतियों, भावनाओं और कलाओं का साकार रूप है। सामाजिक समस्याओं, विचारों तथा भावनाओं का जहां वह सृष्टा होता है, वहीं वह स्वयं भी प्रमाणित होता है। इसी प्रभाव का मुखर रूप साहित्य है। इसी से विद्वानों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है, समाज का नव निर्माता कहा है। कवि का सत्य हमारे जीवन का सत्य है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए समाज के उन्नयन में, नव निर्माण में साहित्य का महत्व सर्वोपरि है और सर्व प्रमुख भी है। साहित्य समाज में प्रचलित गलत, भ्रांतिपूर्ण तथा अन्याय, अत्याचार का समर्थन करने वाली रूढ़ियों, मान्यताओं आदि का वास्तविक ग्रहित रूप अंकित कर उसके विरोध में आवाज उठाता है। समाज के नव निर्माण का यह एक रूप है। सही मानिए साहित्य माता के समान हमारा पालन करता है, पिता के समान रक्षा और वृद्धि करता है, गुरु के समान शिक्षा देता है, सुहृद के समान मार्ग दिखाता है और प्रिया के समान मधुर स्नेह की साकार मूर्ति बनकर सामने आता है। ऐसे साहित्य का हमारे जीवन में व सामाजिक जीवन के निर्माण में अटूट संबंध है। साहित्य की तीन विशेषताएं मानी गई हैं, जैसे हित सन्निहितम तत्साहित्यम, अर्थात हित साधन करना, सहितम रसेन युक्तम तस्य भाव है साहित्यम, अर्थात मानव मनोवृत्तियों को तृप्त करना, अवहितम मनसाम महर्षि भी तथा साहित्यम, अर्थात मानव मनोवृत्तियों का उन्नयन करना। साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानव मात्र का हित साधन करना है और मानव मात्र का हित ही समाज के नव निर्माण की नींव है। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का चित्रण कर समाज के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्र देशों की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित साहित्य की भूमिका रही। फ्रांस की प्रसिद्ध राज्य क्रांति के मूल में वोल्टेयर और रूस के क्रांतिकारी विचार कार्य कर रहे थे। रूस की राज्य क्रांति भी रूसी लेखकों के उग्र विचारों का ही प्रतिफल थी। समर्थ गुरु रामदास और महाराष्ट्रीय संतों के उपदेश तथा भूषण आदि कवियों की उत्साह प्रदायनी रचनाओं ने महाराष्ट्र के उत्थान में कितनी सहायता प्रदान की थी। प्रेमचंद का साहित्य आज तक समाज के विकृत ढांचे के नव निर्माण में संलग्न नजर

0: जाता है। वहीं दूसरी ओर टूटे हुए मानव को मानस अर्थात रामचरित मानस कार्यक्षेत्र में अवतरित होकर नव निर्माण की गंगा में अवगाहन कराना सिखा रहा है। साहित्य के प्रभाव के सम्मुख शास्त्रों का आतंक फीका पड़ जाता है। साहित्यिक विजय शाश्वत होती है और शास्त्रों की विजय क्षणिक। वास्तव में हमारे विचार ही साहित्य का आवरण पहनकर समाज का नेतृत्व करते हैं। साहित्य हमारे विचारों की गुप्त शक्ति को केंद्रस्थ करके उसे कार्यरत बनाता है। शेक्सपियर और मिल्टन पर अंग्रेजों को गर्व है, वाल्मीकि कबीरदास सूर और तुलसी पर हमें गर्व है, क्योंकि उनका साहित्य हमें एक संस्कृति और समाज के दायरों को समझने की शक्ति देता है। इस प्रकार साहित्य दर्पण मात्र न रहकर उसका नियामक है। सामाजिक जीवन की धारा अक्षुण है, साहित्य में उसकी प्राणदायिनी और रमणीय बूंदे एकत्रित होने लगती है। इसीलिए साहित्य नियामक और मार्गदर्शक है। सत्यता यह है कि साहित्य आनंद का स्रोत मात्र नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि शस्त्रों का आतंक फीका पड़ जाता है जब हम देखते हैं कि साहित्यिक विजय शाश्वत होती है और शस्त्रों की विजय क्षणिक। ऐसी ही कुछ पंक्तियां हम देखते हैं, किसी का सत्य था मैंने संदर्भ से जोड़ दिया, कोई मधुकोश काट लाया था मैंने निचोड़ लिया। यूं तो मैं एक कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, चाहता हूँ आप मुझे यह एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें, पर प्रतिमा जैसी आपको रुचे आप स्वयं गढ़ें। ये पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की समाज के नव निर्माण और पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा कर रही हैं। इसी प्रकार अंत में हम कह सकते हैं, साहित्य वो दीप जो राह दिखाता, अंधकार में डूबे मन की ज्ञान ज्योति जलाता, समाज का दर्पण है सच्चाई दिखाता, कुरीतियों पर प्रहार कर नवयुग वो लाता, नवयुग वो लाता।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अंजू बंसल की वार्ता, जिसका विषय था समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6:55 हो रहे हैं। अब सुनिएगा छाया गीत। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं इस गर्मी सर्दी के मौसम में बरसात का आनंद ले रहे होंगे और नज़रों से इस मौसम को देख भी रहे होंगे, है ना श्रोता? ये जो नज़रें होती हैं ना, ये बड़ी कीमती होती हैं। इनसे जो नज़ारे दिखते हैं वो शायद हम कभी ना देख पाते। तो ये निगाहें तो बड़ी कीमती होती हैं, है ना? कि निगाहें फेर ली उसने यूं अचानक राह चलते चलते, लगा जैसे हमें पहचानने से इनकार हो गया हो। जी हाँ श्रोताओं, जब हमारे अपने थोड़े से हमसे खफा हो जाते हैं, या यूं कहें कि उनकी नज़र हमसे जो खफा हो जाती है, तो हमारा दिल भी कहीं नहीं लगता है, है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दिल लगाना है और आकाशवाणी नजीबाबाद सुनते रहना है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दो कलियां से। इसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीत में पिरोया है रवि ने।

जी हाँ श्रोताओं, अगर मैं सिंगर होती तो मैं भी गाती, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप जुड़े हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ, कार्यक्रम है गीत छाया गीत। तो श्रोताओं, ये जो निगाहें होती है ना, ये हमारे जो अपने होते हैं उनको कभी कभी चुपके चुपके भी देखती हैं, या यूं कहें झरोकों से देखती हैं, और उनको देखकर ना खुश हो जाती हैं। कि तुम्हारी आंखों में हमने जो देखा है वह किसी और नजारे में कहां, उनकी आंखों में कोई बात ऐसी है कि वो किसी और चेहरे में कहां। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपनों की आंखें तो हमें बेइंतहा खूबसूरत लगती हैं, उससे भी ज्यादा खूबसूरत तब हो जाती हैं जब किसी झरोखे से हम उनको देखते हैं, और वो आंखियां हो तो बात ही क्या है ना। तो चलिए ले चलते हैं आपको अखियों के झरोखों में इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म अखियों के झरोखे से। इसे प्यारी सी आवाज दी है हेमलता ने, संगीत में पिरोया है रविंद्र जैन ने, और शब्द रचना भी इन्हीं की है। तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा संगीत।

श्रोता, ये जो नज़रें होती हैं ना, जब किसी से मिलती हैं तो प्यार और इकरार दोनों ही हो जाता है ना, कि उनसे नज़र क्या मिली, दिल का हाल बदल गया, एक पल में ज़िंदगी का सारा अंदाज़ बदल गया। जी हाँ श्रोता, ये जो नज़रें होती हैं ना, ये बहुत कुछ करवा जाती हैं, लेकिन जिनसे नज़रें मिली हैं और वो आज तक हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हैं, तो इससे खूबसूरत कोई बात नहीं। जैसे अब हम आपको सुनवाने वाले हैं ये कार्यक्रम का अंतिम खूबसूरत गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म झुक गया आसमान से। इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत है शंकर जयकिशन का, और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हो रहे हैं। अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले विवरण आज के शेष कार्यक्रमों का। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत सुनेंगे आप आज शाम 7:32 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे सुनील मुखर्जी के गाए भजन। आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनेंगे आप आज रात 10:30 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा भूले बिसरे गीत। एक ही फिल्म से सुनेंगे आप आज रात 8:30 पर, जिसमें आज की हमारी फिल्म होगी टशन। और गीत संध्या का समय रहेगा आज रात्रि 8:00। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको जानकारी दे दें हमारे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल रात 10:00 सुनिएगा राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी मथुरा की और प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे आप कल शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। परिचर्चा ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। इसका विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मातृ शक्ति वंदन अधिनियम। इसके प्रतिभागी कलाकार होंगे डॉक्टर अभय कुमार मित्तल, डॉक्टर अंजना राजपूत और डॉक्टर मृदुला त्यागी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे एजाज अहमद। कल संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। और कल शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप सुनेंगे वासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो वासमती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे वासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब

उत्पन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:18 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: जे कॉलेज का टाइम याद है?
6: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूं। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
5: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
6: कहाँ से पता चलेगा?
5: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
7: आज ही सर्च करूंगा।
5: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1,500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। श्री योगी ने कहा कि इसी फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
10: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2,156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
9: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अवध केसरी राणा

0: बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति सभागार का लोकार्पण किया, साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
1: मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता साक्षरता क्लब और ईसीआई के नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पारंपरिक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को मतदाता जागरूकता और चुनावी शिक्षा के लिए एक मजबूत मंच में बदलने के लिए एक सशक्त और ये पहल की है। श्री कुमार ने कहा कि आज के संवाद ने इस बात की पुष्टि की है कि छात्रों को चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता की अच्छी समझ है और वे लोकतंत्र में भाग लेने पर गर्व महसूस करते हैं।
2: 20 जिलों से आए हुए प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और छात्राओं के साथ संवाद से इस बात की आश्वासना मिलती है कि हमारे छात्र और छात्राओं को चुनावी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान भी है और उसकी पारदर्शिता और उसमें उनकी सहभागिता के ऊपर उनको नाज भी है। भारत के चुनाव संविधान, कानून और निर्देशों के तहत ही होते हैं। इसी पारदर्शी प्रक्रिया को छात्रों ने स्वयं देखा।
0: लखनऊ के क्षेत्रीय सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, अमेठी समेत 20 जनपदों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार्स कॉलेज में देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ संवाद किया। ईवीएम को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीनें इंटरनेट या किसी भी वायरलेस तकनीक से नहीं जुड़ी होती हैं। उन्होंने छात्रों को फेक न्यूज से सतर्क रहने की सलाह दी। श्री कुमार ने छात्रों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित ये क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल लखनऊ और आसपास के जनपदों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में आज 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पेश एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

0: का सिलसिला जारी है। उधर वाराणसी में तड़के मंगला आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को काशी हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों भक्त रविवार रात से ही गंगा स्नान कर कतार में लग गए, जबकि कांवरिये बोलबम का जयघोष करते बाबा के दरबार की ओर बढ़ते रहे। भीड़ को देखते हुए धाम में जिग जग बैरिकेडिंग, छाया, पेयजल, मेडिकल कैंप और खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई थी। रात्रि में भोग सिंगार आरती से पूर्व बाबा की रजत चल प्रतिमा गर्भगृह में विराज मानकर भव्य सिंगार किया जाएगा। आरती के बाद श्रद्धालु बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील मुखर्जी के गाए भजन।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुनील मुखर्जी के गाए भजन। कार्यक्रम है सुगम संगीत और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो लीजिए, पेश है ये भजन।

श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील मुखर्जी के गाए भजन। कार्यक्रम है सुगम संगीत और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो लीजिए, प्रस्तुत है सुनील मुखर्जी का ही गाया ये अगला भजन।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भजन और गायक कलाकार हैं सुनील मुखर्जी। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम भजन, स्वर सुनील मुखर्जी का है। छोड़ जाते हैं आपको इस अंतिम भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे सुनील मुखर्जी के गाए भजन। कार्यक्रम था सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीत संध्या। गीत संध्या सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आकाशवाणी नजीबाबाद सुनते हुए मगन भी होंगे कि हमें आपसे प्यार है तो है, ये दिल बेकरार है तो है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपनों के साथ जब हमारा दिल मिल जाता है तो फिर ये इजहार हो ही जाता है। और जब कभी दिल मिलना शुरू होता है तो हमें लगता है कि कहीं हमें प्यार तो नहीं हो गया है, ऐसी फीलिंग सभी को आती है। और ज़िंदगी में बेहद खूबसूरत होती है और उन्हीं के साथ हम अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आप सभी को कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे युगल आवाजों से सजाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। फिल्म है रंग। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत में पिरोया है नदीम श्रवण ने।

होता हूँ। ये जो हमारे अपनों से हमारा मिलना मिलाना होता है ना, इसमें एक अलग ही खुशी होती है। अपनों के साथ समय बिताना, उनके साथ बातें करना, और इन सब में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। लेकिन उस सब में ना हम बहुत कसमें वादे कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना। कि इरादा मिलने का रखना पर कोई कसम ना खाना। मोहब्बत आज़ाद ही अच्छी लगती है। जी हाँ श्रोताओं, जो हमारे अपने होंगे वो कसम वादों के बिना भी हमारे साथ रहेंगे, और जो नहीं होंगे वो कसम वादों के बाद भी हमसे दूर चले जाएंगे, है ना। और अपनों को बांध कर ही क्यों रखना है, अपनों को तो आज़ाद पंछी की तरह उड़ने देना चाहिए ताकि वो दिल से खुश होकर फिर से हमारे पास आए, है ना।

प्यार कोई अपनों को बांधने की चीज थोड़ी है। प्यार तो अपनों के साथ खुश होकर उड़ने की चीज है। तो वादा नहीं करना, लेकिन मिलना जरूर, कोशिश जरूर करना, और वो हमारे हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है मदन पाल ने, इसे आवाज दी है कुमार सानू और आशा भोसले ने, और फिल्म है दिल का क्या कसूर।

आता है। जी हाँ श्रोताओ, अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म दिल का क्या कसूर है से। आवाजें थी कुमार सानू और आशा भोसले की, संगीतकार थे नदीम श्रवण और गीत लिखा था मदन पाल ने। जी हाँ श्रोताओ, हमारे अपने जो होते हैं ना, वो कहीं भी हमसे दूर चले जाए, नाराज हो जाए या खफा हो जाए, लेकिन लौट कर हमारे पास आ ही जाते हैं। जो हमारे अपने होते हैं वो गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमसे खफा होकर दूर नहीं जा सकते। कि मंजिल तुम्हारी मैं ही हूं ये जान लो, थक कर ही सही आखिर तुम्हें आना है ये मान लो। जी हाँ श्रोताओं, जब हम हर जगह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें समेट लेते हैं और हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो आएंगे तो ज़रूर वो लौट कर हमारे ही पास, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको उदित नारायण और सपना मुखर्जी की युगल आवाजों में। चन्नी सिंह का संगीत में पिरोया ये गीत, जिसे लिखा है सुदर्शन फाकिर ने और ये फिल्म है यलगार।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म यलगार का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने। गीत लिखा था सुदर्शन फकीर ने और संगीत था चन्नी सिंह का। श्रोताओ, हमारे अपने हमसे रूठ सकते हैं लेकिन खफा होकर दूर नहीं जा सकते। जाएंगे तो फिर आ जाएंगे लेकिन हमारे पास ही रहेंगे। और कहते हैं ना कि जब एंडिंग हैप्पी हो जाए तो फिर वो जो गिले शिकवे होते हैं वो भी कहीं भुला दिए जाते हैं, है ना। यही तो होता है, गुस्सा नाराज़गी चाहे हमारे अपनों से कितनी भी हो लेकिन उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर रिश्तों में दरार पड़ जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनों से नाराज़गी है तो उसे दूर कीजिए और फिर से उन्हें गले लगा लीजिए। कलम उठाता है तू तो अल्फाज मेरे होते हैं, तू शायर है पर उसमें जज्बात मेरे होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपने जो होते हैं ना उनके रूबरू कहीं ना कहीं हमारी बातें हमारी यादें घूमती ही रहती हैं और उसमें हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितना हम उन्हें चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें उतना ही चाहते हैं। बस जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो रिश्तों को ख़राब कर देती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपकी आपके किसी अपने से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको

दादी से बात करके दूर कर लीजिए, है ना? क्योंकि वो शायर हैं तो शायरी तो आप ही हो उन्हीं की, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म साजन से। इसके संगीतकार हैं नदीम श्रवण, गीत लिखा है समीर ने और इसे अपनी प्यारी सी आवाज से सजाया है अलका याग्निक ने।

अभी आप सुन रहे थे गीत संध्या। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अलका सिंह। और श्रोताओं, आज की हमारी फिल्म है टशन। फिल्म टशन 25 अप्रैल वर्ष 2008 को रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी हिंदी फिल्म है जिसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने निर्मित किया था। श्रोताओं, इसका निर्देशन किया था विजय कृष्ण आचार्य यानी विक्टर ने। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत फिल्म टशन से, जिसे आवाजें दी हैं सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह और साथियों ने।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है टशन। फिल्म टशन में मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं अक्षय कुमार, सैफ अली खान, करीना कपूर और अनिल कपूर। श्रोताओ, अक्षय कुमार के किरदार बच्चन पांडे को लोगों ने उस समय बेहद पसंद किया। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे आवाजें दी हैं सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा ने।
1: नसीला, नसीला तेरा नैना, चुराइले हमरा चैना।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म टशन की और कार्यक्रम है एक ही फिल्म से। फिल्म टशन के गीत लिखे हैं पीयूष मिश्रा, विशाल ददलानी और अन्विता दत्त ने। और श्रोताओं, फिल्म के सभी गीतों को संगीत दिया है विशाल शेखर की जोड़ी ने। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म टशन है और इसे आवाज दी है महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण ने।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से, जिसमें आज की हमारी फिल्म थी टशन। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

0: भारत को 70 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले चार वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
2: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक, परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news.ai

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है।

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Beijing for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Orissa. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकिरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर ख्वा बैनुल अक्वामी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में लगातार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग में दोतरफा तिजारत, इक्तसादी ताउन और आने वाले आला सतही समिट्स पर तवज्जो मरकूज की गई। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी ईआरएस मयंक सिंह भी वफद में शामिल थे। मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलखसूस इक्तसादी ताउन, तिजारत और तवानाई के शोबे में भारत और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और वज़ीर-ए-आज़म का जाती पैगाम जनाब पुतिन तक पहुंचाया। डॉक्टर जयशंकर ने बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग को मुस्बत करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई, फर्टिलाइजर और तवानाई न्यूक्लियाई ताउन समेत मुतअद्दिद शोबों में नुमाया तौर पर मजबूत हुए हैं। वजीर खारजा ने जनाब पुतिन से कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की बिश्केक में चोटी कॉन्फ्रेंस के शिरकत के मुंतजिर हैं और वो भारत में ब्रिक्स समिट में जनाब पुतिन का इस्तकबाल करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं के जरिए बाहमी तौर पर किसी मौजूद तारीख पर अपनी सालाना समिट मुनक़िद करने की तवक्को है। मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए रूस के सदर जनाब पुतिन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की और कहा कि रूस भारतीय किसानों और मुल्क के ज़रई शोबे में ताउन करने के लिए इकदाम कर रहा है। उन्होंने इस साल भारत और रूस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ्त को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक हकीकी तौर पर सभी शोबों में ताउन कर रहे हैं जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा शराकतदारी की नौयत में वसत की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोजा दौरे पर कल मॉस्को पहुंचे। दौरे के दौरान जनाब जयशंकर का रूस के अपने हमनसब सरगेई लेवरोव के साथ इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात के तबादले के मकसद से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल चीन के दो रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। जनाब डोवाल भारत चीन सरहदी मुजाकिरात पर कल चीन में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर में चीन के अपने हमनसब और वजीर खारजा वेंग यी से बातचीत करेंगे। आज मीडिया को खसूसी नुमाइंदों के मुजाकिरात के बारे में तफसीलात बताते हुए चीन की वजारत खारजा के तर्जमान लिन जियान ने कहा कि जनाब डोवाल और जनाब वेंग सरहदी मामले समेत दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। 2020 गलवान वादी कशीदगी और मशरकी लद्दाख में लंबे अरसे तक फौजी तातुल के बाद भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में रखना पड़ा था, लेकिन दोनों मुल्कों ने उस वक्त से अब तक बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। वजीर आज़म

मोदी ने नौजवान सिफारतकारों को नसीहत की है कि वो तैनाती की अपने अपने मुल्कों में बुनियादी सतह पर मसरूफ अमल रहें और मुकामी बिरादरियों के साथ भारत के ताल्लुकात को वसत दें। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के 2025 बैच के 50 IFS ऑफिसर ट्रेनीज से आज सेवा तीर्थ में बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को फरोग दें और लोगों के साथ अपनी मसरूफियात को बढ़ाएं। वजीर आजम ने भारत की तहजीबी कुव्वत को टेक्नोलॉजी, इख्तरा और मौसर बातचीत से मरबूत करते हुए भारत की आलमी मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भी ऑफिसर ट्रेनीज की हौसला अफजाई की। वजीर आजम ने ऑफिसर ट्रेनीज से कहा कि वो दुनिया के साथ भारत की इक्तसादी मसरूफियात में तामुली अनासिर के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज से दरख्वास्त की कि वो भारत की सकाफती, तहजीबी और जोग्राफियाई कुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को ज्यादा पुरकशिश आलमी सियाहती मकाम बनाने के लिए काम करें। वजीर आजम ने दुनिया भर के नौजवान अफराद की भारत में दिलचस्पी जगाने के लिए भारत को जानिए क्विज को फरोग देने का भी मशवरा दिया। वजीर आजम ने इस तरह की पहल को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए मस्नूई जहानत AI और गेमिंग के इस्तेमाल की भी हौसला अफजाई की। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज ने अपनी तरबियत और भारत दर्शन के तजुर्बात बयान किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को असातिज़ा के कौमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में असातिज़ा और तदरीसी अमले को कौमी अवार्ड अता करेंगी। इन असातिज़ा में आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक के असातिज़ा शामिल होंगे। ये इनामात असातिज़ा और तदरीसी अमले को मौसर दरसो तदरीस, आउटरीच सरगर्मियों, तहकीक और जिदत तराजी और स्पॉन्सर्ड रिसर्च, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्रामों और कंसल्टेंसी टीचिंग जैसे शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर दिए जाते हैं। असातिज़ा के कौमी इनामात 2026 के लिए इस साल 26 मई से 20 जुलाई के दरमियान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन तर्ज पर दरख्वास्तें तलब की गई थीं। इनमें जन भागीदारी के हिस्से के तौर पर बजाते खुद, इदारा जाति और साथी असातिज़ा की नामजदगी जैसे जुमरे शामिल रहे। भारत ने कैद साली के खिलाफ मजाहमत को मुस्तहकम करने और जमीन की बहाली में मदद के लिए मुतनव्वे खातिर खा काबिल पेशगोई और पायदार बैनुल अक्वामी फाइनेंसिंग की जरूरत पर जोर दिया है। मंगोलिया के उलान बातार में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP17 के 17वें इजलास के दौरान वजारती मुकालमे से खिताब करते हुए माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने यह बात कही। वजारती मुकालमे का उनवान था, सेहतमंद जमीन और कहत साली के तई मजाहमत के लिए इख्तराई माशी मैकेनिज्म। इस दौरान वजीर मौसूफ ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत से मुतालिक भारत के इख्तराई और मुतनव्वे मालियाती निज़ाम को नुमाया किया। जनाब यादव ने जमीन की बहाली के लिए पायदार सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जमीन की बहाली सिर्फ अदा की गई कीमत नहीं है बल्कि ये खुराक, पानी, हयातियाती तनव्व, गुजर बसर और तवील मुद्दती लचक में सरमायाकारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खित्ते अराजी का वीरान होना, जमीन की जरखेजी और मेयार में गिरावट और कैद साली जिस पैमाने पर हो रही है उससे निमटने के लिए फाइनेंस के ऐसे मुतनव्वे, काबिले पेशगोई और पायदार ज़राए की ज़रूरत है जो अवामी बजट से अलाहिदा हों और मजबूत पब्लिक प्राइवेट साझेदारी पर मबनी हों। अपने खिताब के अख्ताम में जनाब यादव ने मकसद के हसूल की राह में अपने तजुर्बात, इकदामात, इदारा जाती इंतजाम और हासिल शुदा मालूम साझा करने की भारत की अहद बस्तगी की तौसीक की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कायम करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों की तशवीश के इजाले की खातिर अगले 2 महीने के दौरान मौजूदा जवाबित में तरमीम करने के नए जाब्ते मुतारिफ कराएगा। टोक्यो में एक प्रोग्राम के दौरान जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने दिन के आगाज में 2 बड़े कॉरपोरेशन से मुलाकात की जिनमें से एक भारत में सेमीकंडक्टर से मुतालिक साजो सामान तैयार करने का मंसूबा बना रही है और दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों से मुतालिक शोबों में कारोबार करना चाहती है। जनाब गोयल ने जापान में 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों के एक बड़े वक्त से मुलाकात की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद फरोग दिया जा सके। अपने दौरे में टोक्यो, नागोया और ओसाका के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, स्टील, ऑटोमोबाइल, मालियाती खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप समेत अहम शोबों के नुमाइंदों से मुलाकात शामिल है। यकसा अदायगी निज़ाम UPI ने डिजिटल अदायगियों के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत की डिजिटल अदायगियों के इको निज़ाम में रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभरा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए UPI लेनदेन का हजम बढ़कर तकरीबन 13,000 गुना हो गया है।
وزارت خزانہ نے کہا کہ سالانہ لین دین کا

0: तनासुब साल 2016-17 के 1.78 करोड़ लेन देन से बढ़कर साल 2025-26 में 24,162 करोड़ लेन देन से तजावुज कर गया है। लेन देन की मालियत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जो इसी मुद्दत के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मवासिलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब के दौरान नए डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप का आगाज किया। जनाब सिंधिया ने 10 रियासतों में वाक 14 डाक दफातर की 9 तामीरशुदा इमारतों का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान जनाब सिंधिया ने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: इस दौरान मवासिलात के वजीर मुमलकत डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने भी डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप के फवायद पर रोशनी डाली। भारतीय महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने शुमाल मशरकी भारत, बिहार, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और वस्ती महाराष्ट्र में भी बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा मौसमियात ने जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, हिमालय के तराई वाले मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में आज औसत से तेज बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर पानी भर जाने के सबब गाड़ियों की आमदोरफ्त में रखना पड़ा और ट्रैफिक जाम के वाकयात दरपेश आए। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर गुरुग्राम के सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। पानी भरने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कॉरपोरेट और प्राइवेट दफातर को भी घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। तेज बारिश के सबब दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों में रखना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 2 बैनुल अक्वामी परवाजों समेत 14 परवाजों के रास्ते बदलने पड़े। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में कल भी औसत दर्जे की बारिश और बादल छाए रहने की पेशगोई की है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: इधर ओडिशा में शदीद मानसून की सूरत हाल के जेर असर मुसलसल बारिश के सबब कई जिलों में पानी भर गया है। पानी की सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। खासतौर पर जुनूबी और शुमाली ओडिशा में सूरत हाल तश्वीशनाक है, जहां पानी की सतह बढ़ने और मिट्टी के तोदे खिसकने से आम जिंदगी मुतासिर हुई है और कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: ओडिशा के कोरापुट में पानी भर गया है, मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंद्रावती और भस्किल दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। नवरंगपुर के दरिया के किनारे वाले गांवों में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। केवंझर में कौमी शाहरा नंबर 520 पर बाराबंका घाट पर मिट्टी के तोदे खिसकने से सड़क राबता मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और सैलाब के खतरे का अलर्ट बरकरार रखा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ईरान ने खबरदार किया है कि आज रात ऐलान की जाने वाली मुमकिन पाबंदियों से खित्ते में अमन नहीं आएगा। साथ ही ईरान ने किसी भी इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब देने का इंतबाह दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान तौसी अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ सख्त रद्द अमल जाहिर करेगा, जिनमें वाशिंगटन के साथ तआवुन करने वाले ममालिक को निशाना बनाने वाले इकदाम भी शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी के सख्त नतायज भुगतने होंगे और कहा कि ईरान के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर मुजाकिरात पर तातुल के हफ्तों बाद ईरान की जानिब से यह इंतबाह दिया गया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया से नौजवान नस्ल को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने बारिश से मुतासिर मैच में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से ध्रुव जुरेल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे।

0: मत पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। श्रोताओं, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हर तीसरा युवा भारतीय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीख कर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
0: और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। नंबर है 0112317171 0112317171 06 और 0112314444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
1: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल, जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रहे हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम लोग 3 से 6 महीने के। साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने जिंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाए या कुछ पैसे कमा पाए। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिसपे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत से हमारी योजनाएं भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके जरूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
0: जी। आज प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन से स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि कौन से सेक्टर में नौकरियां ज्यादा मिल सकती है। इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ

0: सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल एस्टेट है, बाकी जगह भी है, तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर, ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियाँ फिर हैं, हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज़ का किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा।
1: जी, और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते
2: सर। मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास?
0: भूपेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है, तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं, जहां क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह के नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं।
1: साथ में मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो आईटीआई इकोसिस्टम है, इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है। मानसी जी, आपने आईटीआई की बात करी है, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है पीएम सेतु का आ जाता है, तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो आईटीआई इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
3: जी, पीएम सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो आईटीआईज हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे आईटीआईज बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने आईटीआईज में प्रदान कर रहे हैं क्या वो रोजगार योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो इसी सोच के द्वारा पीएम सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर, उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग आईटीआईज में प्रदान करें, तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक हमारे देश में 1000 आईटीआईज का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा, इंडस्ट्री, स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा व्यय किया जाएगा, एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 आईटीआई होते हैं उसमें 241 करोड़ तक की का बजट वहां प्रावधान किया गया है, और ऐसे पूरे स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है, इट इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ऑलरेडी

0: हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं. वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं. तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा. बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है? इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है. कोर्सेज क्या हैं? क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं? तो हमारे आईटीआईज को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब पीएमसी तो लाता है.
1: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है. और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं. जी राकेश जी.
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला. और मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और हम ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न.
0: जी राकेश जी धन्यवाद. कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ तो मुझे पता है. देखिए सर्वप्रथम तो हमारी जो आईटीआईज हैं हर जिले के स्तर पर भी आइडिया ये है कि उन आईटीआईज के द्वारा जो है वहाँ बहुत से आईटीआईज में हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं, तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं. साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे, पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं. मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की, जैसे शिमला में एक सेंटर है, पर जरूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप्स के लिए जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं. तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे, प्लीज बताने.
3: जी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं, और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा. खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है. तो जैसे मैम ने बोला, जन शिक्षण संस्थान भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है. बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज में होते हैं. हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है, और बाकी उसके 7 सेंटर्स हैं. आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पे मेसनरी, टेलरी, फॉरेस्ट्री, इस तरह के स्किल्स पे फोकस है, और ये भी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है. तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं.
1: प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं. यहाँ पर तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं, तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
3: मैम
0: जी, सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया, ये हमारे मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट, हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. जन शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाए. वैसे ही डीडीयू जीकेवाई स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है. जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83 से 84% जो है वो महिलाएं ही हैं. तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज, ठीक है उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं ब्यूटिशियन वाला. पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही हैं. आप देखिए हमारी कुछ आईटीआईज हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं. एक आईटीआई जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जा रहा है,
1: ई रिक्शा तक चला रही हैं,
0: पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं. तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बढ़ा है. अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि तो अब हमारे एनरोलमेंट

0: इतने बढ़ गए हैं, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है, तो मनोबल तो पड़ रहा है। अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नीशियन सब में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं।
1: चलिए मानसी जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार।
2: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आईटी से प्रशिक्षित एम्प्लॉयमेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ। खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ, मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है मैम, ये जानना चाहता हूँ मैं।
0: जी रवि जी, आपने आईटीआई से प्रशिक्षण ले लिया है ये मैंने समझा आपके प्रश्न में, तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आप आपके पास बहुत से चीजें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिन्होंने आईटीआई से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है वो यदि पढ़ाना चाहते हैं आईटीआई इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप एनएसटीआईज या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो, और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीजें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
1: प्रशांत जी, मानसिक चीज बता दें कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो एनएसडीसी प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
3: देखिए, प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है। जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप आईटीआई से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि आईटीआई करने के बाद बहुत सारे बच्चे नैप्स में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पर इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी इक्विपमेंट पे उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं, तो उससे नौकरियां काफी या तो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल हब। अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं, काफी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहां पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं, अभी बेलूर घाट बंगाल में काफी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने किया, काफी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आप उस पर नजर रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
1: जी प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो है आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
3: जी अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउजर के द्वारा, और आप वहां जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है
1: जी।
3: इसमें 8800055555 ये नंबर है जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें वहां पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
1: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
4: धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह से अप्रेंटिस

0: शिक्षित नहीं है, क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का मापदंड?
1: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
0: जी,
1: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
2: जी, तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज आप सिद्ध वाला ऐप जरूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपकी आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी बात जो मैं बताना चाहूंगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर साथ में लेकर, टाइप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज के साथ, और वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं, तो दो चीजें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में है तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
1: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं मानसी जी, आपसे ये चीज पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
2: जी, आजकल बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें डिमांड हमारा नेशनली नहीं, इंटरनेशनल भी है काफी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं, तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं जहां पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं, तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी एक पहल है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है प्रशांत जी।
3: जी, इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं, जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेजी से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और एक बहुत ही डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ केयर में ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहां पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे, तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि

0: एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाए, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज्यादा सुनिश्चित करते हैं
1: जी। और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, संजीव जी। जी संजीव जी।
2: जी नमस्कार सभी को।
1: नमस्कार
2: जी। मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUGKY में यहाँ यमुनानगर से, और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जी? तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला जी। बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया और ड्रोन।
1: संजीव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है
2: जी? DDUGKY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया।
1: बैटरी रिपेयरिंग?
2: हाँ जी। और
1: ठीक है,
2: ड्रोन का भी कोर्स किया।
1: ड्रोन का भी किया आपने जी?
2: हाँ जी। तो अभी तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम हुआ और मेरी एज 44 इयर्स होगी। तो ये बोलते हैं कई जगह कि भाई आपकी एज ज्यादा है, तो अब क्या कर सकते हैं मैडम?
1: इन्होंने ड्रोन का कोर्स किया है और बैटरी का रिपेयरिंग का कोर्स किया है, और एज जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है कि एज ज्यादा है, तो कैसे होगा?
0: जी संजीव जी, नौकरियों का अपनी एक रियलिटी होती है। मुझे पता नहीं आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, पर ड्रोन में ज्यादातर आप अपना काम कर सकते हैं। हमारी अगर आप ड्रोन दीदी टाइप के स्कीम्स देखें तो उसमें एग्रीकल्चर में ड्रोन का एप्लीकेशन है, उसमें आप अपनी थोड़ी कमाई कर सकते हैं। शादियों में ड्रोन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब ड्रोन में नौकरियां दे रही हैं क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार जरूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहां ड्रोन का एप्लीकेशन है।
1: प्रशांत जी आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है?
0: जी इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है, जैसे कि आप सबसे पीएम विश्वकर्मा योजना जो एमएसएमई की स्कीम है उसकी स्किलिंग एमएसडी के थ्रू हम एनएसडीसी में करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है
1: जी।
0: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनको लोन देने का प्रोविजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविजन रहता है
1: जी। और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी।
3: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा। सभी आपकी टीम को नमस्कार, आपने मेरी बातों को सुना। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई स्किल है? और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
1: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दीजिए।
0: जी इसमें कुछ दिनों पहले जैसे मैं बता रहा था, मैं एक CII का सेंटर है बॉम्बे में, वो लोग एक करियर काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, और पूरा का पूरा सेंटर का जो मैनेजमेंट है 3 या 4 दृष्टिबाधित व्यक्ति उसको पूरा का संचालन करते हैं। मैं खुद उनसे मिला हूँ और बहुत ही सक्षम रूप से वो काउंसलिंग सेंटर वहाँ ऑपरेट कर रहा है, जो ये दृष्टिबाधित 3-4 लोगों की टीम है जो उसको बहुत सक्षमता से चला रही है। तो मैं ही बोलूंगा कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसकी लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगे?
4: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इसका फायदा उठाएं, प्लीज रजिस्टर करें और प्लीज अपने हुनर को आजमाएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप में भी जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो टीम की संघाई होने वाली है
4: 15 सितंबर तक हमारे

0: रजिस्ट्रेशन खुले हैं तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें। तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए फरहतनाथ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्ते दोस्तों।
2: नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अलका सिंह और आज हम निकल पड़े हैं पुराने गीतों के सुहाने सफर पर। श्रोताओं, इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन सच्चा संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। दौर बदलता रहा मगर इन गीतों की चमक फीकी ना हुई, इनकी सादगी कभी भी किसी फैशन की मोहताज नहीं हुई। शब्दों की तराश ऐसी कि हर दिल को अपनी दास्तान लगे, तभी तो उन पुराने धुनों की कभी विदाई नहीं हुई। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत जिसे आवाज दी है तलत महमूद ने। इसे हमने लिया है फिल्म छाया से। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतकार है शलील चौधरी।

श्रोताओं, ये भूले बिसरे गीत सिर्फ यादें नहीं होती, वो गुजरे हुए वक्त से एक मुलाकात होती है। चाय की प्याली से उठते धुएं में एक कहानी दिखती है। पुराने गीतों की धुन में कोई खोई हुई जवानी दिखती है। भले ही वक्त ने बदल दिए हों जीने के तौर तरीके, मगर इन सदाबहार गीतों में आज ये दुनिया दीवानी दिखती है। जी हाँ श्रोताओं, ऐसे ही तो होते हैं ये गीत जो जब भी सुने मन खुश हो जाता है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म है असली नकली।

श्रोताओं, तो भी आपने सुना फिल्म असली नकली का ये गीत, जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, ये गीत सिर्फ एहसास नहीं होता।

इन गीतों में हर बदलते मौसम और उनका जज्बा छुपा हुआ है। बंद कमरा, हल्की बारिश और वो बीता हुआ जमाना, कितना सुकून देता है रेडियो पर कोई पुराना गाना। ना बनावट थी लफ्जों में, ना बनावट थी सुरों में, दिल जीत लेता है बस एक सीधा साधा ताना। जी हाँ श्रोताओं, ऐसे ही तो बुने होते हैं ये ताने, प्रेम से और सादगी से। इसे जो भी सुनता है वो इनका आदी हो जाता है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत में पिरोया है रवि ने, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म है दिल्ली का ठग।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। पुराने समय के गीतकारों जैसे आनंद बख्शी, हसरत जयपुरी और साहिल लुधियानवी के लिखे शब्द आज भी जिंदा है श्रोताओ। कागज पे उतरी हुई मोहब्बत की वो कहानी है, पुराने गीत हमारी बीती हुई जवानी की निशानी है। आज की पीढ़ी भले ही रील्स के पीछे भागती रहे, मगर दिल को छूने

के लिए आज भी वही धुनें सुहानी हैं। जी हाँ श्रोताओं, जब इन धुन को सुनते हैं तो उसमें ऐसे खो जाते हैं जैसे ये हमारे ही बीते हुए वक्त को बयां कर रहे हों। इन गीतों की सादगी मन में उतर जाती है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे युगल आवाजों से संजोया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और शब्द रचना है हसरत जयपुरी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म चोरी चोरी का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। सच्चे संगीत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जितनी पुरानी ये धुनें होती हैं उतनी ही कीमती लगती हैं। वक्त बदल गया मगर इन गीतों का अंदाज नहीं बदला, आज के नए दौर में भी इनका साज नहीं बदला। ढलती शाम और हाथ में चाय का प्याला हो, पुराने गानों से बढ़कर फिर कोई हमराज नहीं मिलता। जी हाँ श्रोताओं, इनके शब्दों में जो चहचहाट और दिल को अंदर तक सुकून देने वाली गहराई होती है ना, वो आजकल के फास्ट ट्रैक सॉन्ग्स में नहीं मिल सकती। सुकून तो इन भूले बिसरे गीतों में ही कहीं नजर आता है। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने। संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म है हीर रांझा और इस गीत को अपनी प्यारी सी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

शोधों ये पुराने तराने बीते हुए सुनहरे वक्त की याद दिला देते हैं। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आज भी कानों में गूंजने लगती हैं। एक दौर था जब लफ्ज़ दिल से निकलते थे, संगीत के साए में जज्बात धीरे धीरे ढलते थे। सुनो जो आज वो किशोर, रफ़ी और लता के तराने, लगता है जैसे थम गए हों वो खूबसूरत ज़माने। तो चलिए श्रोताओं, छोड़ जाते हैं एक ऐसे ही तराने के साथ आप सभी को, इस अंतिम गीत के साथ, जिसे अपनी मधुर आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म है उम्मीद, शब्द रचना शकील बदायूं की है और संगीत में पिरोया है रवि ने।

आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और बड़ी खुशी हंसी से सुन रहे होंगे आकाशवाणी नजीबाबाद। तो जल्दी से बता देते हैं हमारे श्रोताओं को हमारा नंबर, जिस पर लिखकर भेज देना है उन्हें अपना नाम, पता और पसंद का गीत। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 9457078288। तो जल्दी से देख लेते हैं हमारे श्रोताओं के मैसेज जो हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। पहले गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सदस्य, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना खर्चे, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू चौधरी और देविका चौधरी। अगले इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है जो हमें लिखकर भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभूदयाल खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की। अगला मैसेज हमें मिला है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का, बुलंदशहर से MS अब्बासी और इनका पूरा आबासी परिवार। अगले इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रयम थांदी और बेबी वामिका वाणी थांदी की, गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब से। अगली फरमाइश हमारे पास आई है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, गुरु महाराज और नरेंद्र राजपूत की, महोवा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे हमें लिखकर भेज रहे हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गौंड से, अर्चना ताईगौड़ से, हीरामणि शेणे जी और प्रयाण प्रसिद्धि साथ में प्रतिभा गौंड से। जो गीत हम सुनवाने वाले हैं उसी गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, जगदीश राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है फाजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार की, लिखने वाले हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, आरबी खेड़ा, वाणी खेड़ा, जीवन सिंह, भूख समस्त और इनके पूरा समस्त परिवार। अगली फरमाइश हमारे पास आई है चोटाला हरियाणा से, लिखने वाले हैं दारा सिंह पंडित, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। तेलंगाना कोठा गोदाम डिस्ट्रिक्ट येलांदू से लिखने वाले हैं राजेश कहाना, चेन्नई पासी अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और इनकी अम्मी की। अगली फरमाइश जो हमें मिली है वो है एनी सॉन्ग जो ये प्ले करवाना चाहते हैं और पसंद करता है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म नाम से। इसे आवाज दी है कविता कृष्णपुर मूर्ति ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। तो देख लेते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है जिन्होंने लिखकर भेजी है फरमाइश, और ये फरमाइशी गीत है फिल्म जीत का। इसे आवाजें दी हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। और इस गीत के लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है वो है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अरमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिहा नवोदा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और परांजल राय की। इसी गीत के लिए फरमाइश हमें लिखकर भेजी है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। अगली फरमाइश जो हमें मिली है वो है जनकपुरी सहारनपुर से, लिख रहे हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है सियेरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान की। इसी गीत के लिए फरमाइश हमें लिखकर भेज रहे हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार। इसी गीत को जो सुनना चाहते हैं वो है हमारे अगले श्रोता बठिंडा रोड मंडी डडवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अबिरल सिंह। अगली फरमाइश हमारे पास आई है नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इनके साथ जुड़ रहे हैं सोहन जोशी जी। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है आकोट से विनायक बेड़े, श्रीमती मंगला बेड़े, विजय शुभम बेड़े, पवन जरिए और के संजीव डावेरा। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक।

और वी के पुरी के साथ विनोद। पुरी भी इस गीत को सुनना चाहते हैं और ये इस गीत के लिए अंतिम मैसेज हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से। मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से इनके साथ जुड़ रहे हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। तो चलिए इन सब की फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको फिल्म जीत का ये गीत।

एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और जल्द इसे देख लेते हैं हमारे श्रोताओं की अगली फरमाइश। पहली फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। इस गीत के लिए जो लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पीजना मुरादाबाद से है राजवीर सिंह यादव, कुनाल।

यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड और अंकित कांगड़ा की। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे भेजी है नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता, सिमरन मेहता और प्रेमलता मेहता ने, योगनगर बुढ़ा लडा से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य। जतोपुर कुंदरकी से मोहम्मद मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा और गोसिका बी। अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव फारसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की। जो गीत हम सुनवाने वाले हैं, इस गीत के लिए फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवा नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुहिरकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है कृष्णा नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी और नंदनी के साथ अंजलि ने। झज्जर हरियाणा से लिखकर भेज रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा की। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है मंसूर कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी की। और इस गीत के लिए अंतिम फरमाइश हमारे पास भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। इनके साथ जुड़ रहे हैं जामा मस्जिद रोड गोंगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। तो इन सब की फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको फिल्म दिलवाले का ये गीत, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और अंतरा मिश्रा ने। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

भेजे श्रोताओ, एक बार फिर से हाजिर है लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और देख लेते हैं इस अंतिम गीत के लिए फरमाइश हमारे पास किन श्रोताओं की है। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा, मानवी, तन्वी, काजल, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगली फरमाइश हमारे पास आई है शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अनु खान की। इन्होंने अपना ढूंढवारा से लिख रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है बरली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मासर अजहर खान और अजीम खान की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटियाल शिफा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफान सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, लाडली निशा और सभी घर के सदस्य। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम उत्तर दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा। ये मैसेज हमारे पास पुनः आ चुका है तो कृपया ऐसा ना करें। एमएलबी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्य, आरव खुराना और एस के पप्पी। अगली फरमाइश हमारे पास आई है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिदा सैफी और आदाब खान की। अगली फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। ये फरमाइश हमारे पास है गोविंदगढ़ मांझी बाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टूटेजा, खुर्शदिल, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिवसेठी, करणपुरी और इस्माइल टूटेजा की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। अगली फरमाइश हमारे पास है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीर सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरूनिशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव वडागपुर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर की। अगली फरमाइश हमें मिली है मोहल्ला पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। ये फरमाइश हमें लिखकर भेजी है कस्बा उदयती बदायूं देवेंद्र से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता की। ये फरमाइश हमें भेजी है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगपाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जी एस नायक, शोभा नायक और इनका परिवार। अगली फरमाइश हमारे पास आई अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना की लदा वली जिला मुरादाबाद से। ये फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं नई बस्ती गंजडुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तोसीन हादमी, तैमूर हाशमी।

और कलीम अंसारी की। अगली मैसेज जो हमारे पास आया है वो है लक्सर रोड गांव सुवाहिड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जामिर मोहम्मद हुसैफा मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद शोएब कहकशा और पूरा परिवार। और ये देख लेते हैं अगली मैसेज तो हमारे पास है, ये लिख रहा है दिल्ली साहर मोरी गेट से कन्हैया लाल रीता देवी सीता रानी और आकाश कुमार। अगली फरमाइश हमारे पास है शाही मार्ग के सोहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी बेगम रेहाना अराफा चौधरी आदिब चौधरी और कादी चौधरी की। तो इन सब की फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे आवाज दी है फहीम अब्दुल्ला ने, फिल्म है तेरे इश्क में, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है ए आर रहमान का। तो छोड़ जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

इसी गीत के लिए श्रोताओं ये फरमाइश हमारे पास आई है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहार कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से बीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्य

0: एम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: यंग कंट्री,
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
3: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट,
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian